103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है समाचार। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में

0: एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: .4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

इस संसार में जो मनुष्य अपने भीतर के शोर को शांत कर लेता है, वही उस ईश्वर के स्वर को सुन पाता है। संसार की भीड़ तुम्हें भटका सकती है, पर ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हें केवल तुम्हारे मौन से ही मिल सकता है। जब हम मौन अवस्था में होते हैं और हमारा चित्त शांत रहता है, उस समय मनुष्य सबसे अधिक ऊर्जावान होता है। हमारे भीतर की यही सकारात्मक ऊर्जा हमें जीवन का असल सार समझाती है और हमें ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाती है, जहां पहुंचकर हमारी इच्छाएं शांत हो जाती है और हमारा उद्देश्य मात्र मोक्ष प्राप्ति ही रह जाता है।

भोलेनाथ शिव शंकर को सावन मास सबसे अधिक प्रिय है। इस दौरान जो कोई भी मनुष्य महादेव शिव शंकर का जलाभिषेक कर दूध घी दही बेलपत्र चढ़ाकर उनकी उपासना करता है, महादेव शीघ्र ही उन पर प्रसन्न होते हैं।

ये संसार शक्ति के अधीन है। संसार का कल्याण करने वाली जगत जननी माँ जगदम्बा की शरण में जाकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए हम सब मिलकर भी उनका सुमिरन करें।

श्रोतो, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नरनारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को ना पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

श्रोताओ, अभी आपने सुना मानस गान। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम और 7:40 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान पाएंगे सुबह 8 बजे समाचार प्रभात में। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, दिन में 1 बजे, शाम 5 बजे, शाम 7 बजे, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11 बजे ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर आज आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 8:45 पर होगा कानून की बात कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9 बजे आज आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि, जिसमें आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी रहेगी musicmaildshala@gmail.com। प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं सुबह 9:20 पर, सुबह 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे और 10:30 पर होगा पहाड़ों के सुर कार्यक्रम। 11:05 पर आज आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी और 11:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे सैनिकों के लिए कार्यक्रम और 12:30 पर हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे सुनो सखी कार्यक्रम। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5 बजे आप तक आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का। शाम 5:10 पर सुनिएगा सायंकालीन भजन और 5:25 पर आप सुनेंगे युवा मंच कार्यक्रम। छह बजकर 5 मिनट पर आनंद लीजिए सुरमई सांझ कार्यक्रम का और 6:30 पर होगा मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम। 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे खेतीबाड़ी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा और 8:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सबरस कार्यक्रम। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम और 9:30 पर सुनना न भूलिए हिमाचली लोक संगीत का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे मॉनसून के दौरान संसद के प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही पर आधारित रेडियो कार्यक्रम। श्रोता, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: गीता त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नंदन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानां अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दंड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षा मंत्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मंत्रालयैः सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्त राष्ट्र संघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्ण पदकं विजितवती। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

0: 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम।
1: सुबह सुहानी।

सुबह सुहानी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सुहानी में, जहां पर जानकारियां हैं, मनोरंजन है, कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स है और जानेंगे बनते बिगड़ते मौसम के मिजाज को। जी हाँ, इन सब पर बात होने वाली है आज के सुबह सुहानी प्रोग्राम में, जिसे लेकर आ गई है आपकी अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस सुविचार से। संकल्प वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जी हाँ, जब आप किसी चीज को करने के लिए अपना मन बना लेते हैं और उसे पूरा करने के लिए अपना 100% देते हैं ना, तो उस काम को, उस सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत होती है तो अपनी बात पर, अपने फैसले पर अड़े रहने की। फिर देखिए, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपका साथ निभाने के लिए आकर खड़ी हो जाती है। वेल, सुबह सुहानी प्रोग्राम में आपका साथ निभाने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपका बेहद ही प्यारा सा गीत, और इसे एंजॉय करने के लिए आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ आज के सफर को और भी सुहाना सा बनाने के लिए।

जी हाँ श्रोता, सुबह सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। तो चलिए अब डालते हैं नजर इतिहास के पन्नों पर और बात करते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की जो आज के इस दिन को विशेष बनाती है। बात करें 27 जुलाई 1921 में, तो आज के दिन टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इंसुलिन की खोज की। वहीं साल 1939 में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई। 27 जुलाई 1994 में भारतीय संसद द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चों के लिंग की जांच पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया। वहीं साल 2012 में लंदन में आधिकारिक तौर पर 30वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत आज ही से हुई। श्रोता, आपको बता दें कि 27 जुलाई 2015 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की हृदय गति रुकने के कारण आज के दिन वो हमारे बीच नहीं रहे। वहीं भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज जी ने आज ही के दिन वर्ष 2016 में इस संसार को अलविदा कहा। सुबह सुहानी प्रोग्राम में अब बात करते हैं उन खास व्यक्तियों की जिनका आज जन्म हुआ। 27 जुलाई 1963 में भारत की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर के एस चित्रा का जन्म हुआ। वहीं साल 1983 में डिस्क थ्रोअर एथलीट सीमा पुनिया का भी जन्म हुआ। प्रोग्राम में इसी तरह से ढेर सारी जानकारियां आपसे साझा करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए प्ले करते रहेंगे कुछ प्यारे प्यारे से गीत, और इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। सुनते रहिए प्रोग्राम सुबह सुहानी।

0: सावन।
1: जी हाँ श्रोताओ, बने हुए हैं आप आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम। श्रोताओ, आप सभी को बता दें कि आज हम मना रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि, जो हर साल 27 जुलाई को मनाई जाती है। आपको बता दें कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में उनके योगदान के लिए उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साल 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2015 में 27 जुलाई के दिन शिलोंग में एक व्याख्यान देते समय उनका निधन हो गया। उनकी पुण्यतिथि देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाई जाती है और उनके शिक्षा, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों को याद किया जाता है। उन्होंने सभी को सिखाया कि जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं, और उनकी यही सीख आज की यंग जनरेशन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलिए भाई, हम भी उनकी इन्हीं उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बस यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह सुहानी प्रोग्राम में।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
2: सुबह सुहानी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। और देखिए, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है 7:30 और इस वक्त हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स। जी हां, जानते हैं आज के इस सेगमेंट में क्या कुछ है खास और नया आप सभी के लिए। श्रोता, आपको बता दें कि आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जा रहा है। जी हां, सरकार और प्रशासन द्वारा पेपर लीक मामले पर सख्ती से निपटते हुए नए विधेयक और कानूनों पर विचार और कार्रवाई तेज कर दी गई है।

बात करें अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई तो खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने वाली ये यात्रा जम्मू से 6,000 से अधिक यात्रियों के जो है वो जत्थे के साथ ये यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। बात करें खेल जगत की तो आप सभी को बता दें कि मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों की 60 किलोग्राम भारोत्तोलक स्पर्धा में 121 किलोग्राम स्नैच के साथ रजत पदक हासिल कर लिया है। जी हाँ, कुछ ही पलों में लौटेंगे मौसम के हाल के साथ। फिलहाल आप सभी के लिए प्ले करने जा रहे हैं ये गीत, आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर और सुनते रहिए प्रोग्राम सुबह सुहानी।

जी हाँ, सुबह सुहानी प्रोग्राम में चलते चलते जानते हैं मौसम का हाल। तो भाई, मौसम ने तो जो है वो इन दिनों बेहाल कर रखा है। पूरे देश में मॉनसून की झमाझम बारिश से कई प्रदेश बाढ़ से जूझ रहे हैं, तो कई पहाड़ी प्रदेश बादल फटने जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। देखिए, प्रकृति के आगे भला किसकी चलती है। ऐसे में हमें खुद ही हिम्मत रखकर इन परिस्थितियों का सामना करने की ज़रूरत है। वहीं मौसम विभाग द्वारा मिली हुई जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक भारी से अधिक बारिश का जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते प्रदेश में कई इलाकों पर भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ एंजॉय करते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला पर सुबह सुहानी प्रोग्राम।

0: जी हाँ, इसी बेहद प्यारे से गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।
1: सुबह सुहानी,
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग।

133.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं ये देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने का है देश और दुनिया का ताजा हाल। समाचारों से जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संदिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत

0: की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
0: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
0: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
1: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49

0: गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed

0: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। मारुति सुजुकी एरिना, खुशियों की चाबी।
2: जी हाँ, आप बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। प्रोग्राम में अगला सॉन्ग हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म है कर्ज़।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
4: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
5: फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म से ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

श्रोता, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में मैं हुकुम शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में आज हमारे साथ हैं श्री प्रवीण गर्ग जी। आप अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। प्रवीण गर्ग जी, आकाशवाणी स्टूडियोज में हम आपका स्वागत करते हैं। ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये है क्या?
1: धन्यवाद। सबसे पहले मुझे यहाँ आकाशवाणी में आमंत्रित

0: करने के लिए मैं आपका और आकाशवाणी का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या है ये?
0: देखिए, मुझे लगता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है।
1: जी
0: नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी भी ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कि जो भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट किसी और को भी ट्रांसफर किया जाए। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट, हुंडी। पुराने समय के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग हुंडी दिया करते थे, या प्रोमिसरी नोट, कि जहां पर एक प्रोमिस किया जाता है कि मैं फलाना फलाना तारीख को फलाना फलाना सर्टेन सम की आपको अदा करूंगा, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। तथा जो मुख्यतः हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, यूज होता है, वो चेक, वो भी
1: जी
0: अपने आप में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है। देखिए, आपने कभी ध्यान दिया होगा, चेक के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को
1: जी
0: अदा करने का आदेश देता हूं। तो अगर उसे हम कानून की भाषा में समझे तो बैंक क्या होता है, इसे लीगल लैंग्वेज में देखें तो वो एजेंट होता है, जिसका खाता होता है, जो खाता धारक होता है वो मालिक होता है, और उसके ऊपर
1: जी
0: लिखा होता है कि मैं आदेश देता हूं
1: जी जी
0: धारक को इतना इतना अमाउंट अदा किया जाए। में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक, जिसके द्वारा वो जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाता है।
1: जी तो प्रवीण जी, एक तरह से ये बात हुई कि एक जो पुराने समय में किसी भी वस्तु का आदान प्रदान होता था, यानी हम किसी से प्रॉमिस करते हैं कि अब मैं आपको ये वस्तु दे दूंगा, तो एक तरह का वही एक जो चेक हम देते हैं कि इतनी रकम मैं अदा करूंगा,
0: जी
1: तो वो बैंक जो है उसके लिए हम उसको एक तरह से ऑथोराइज कर देते हैं कि आप जो है इतने पेमेंट्स जो है मेरे अकाउंट में से किसी व्यक्ति को जिसके पास जो चेक
0: धारक
1: धारक
0: को।
1: है
0: जी,
1: उसको दिया जाए।
0: बेसिकली मैं यहां पे यही समझाना चाहूंगा कि मैंने कहा ना कि ट्रांसफरेबल क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट होता है वो।
1: जी
0: ट्रांसफरेबल क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट का मतलब यह है कि आपने भी देखा होगा कि जब हम कई बार तो जो चेक के ऊपर अकाउंट पे ही चेक होता है, खाताधारक का नाम लिख देते हैं, और कई बार जो सेल्फ का चेक होता है ऊपर सेल्फ लिख के सिग्नेचर, जो भी धारक होता है वो अपने सिग्नेचर करता है, तो
1: जी
0: उससे वो ऑथराइज हो जाता है कि बैंक को जिसके सिग्नेचर है उसको सिग्नेचर देके वो उसको रकम अदा कर देता है।
1: जी जी
0: जी
1: तो इसकी जो अलग अलग धाराएं या जो सेक्शंस हैं वो क्या हैं?
0: देखिए, इसमें वैसे तो 148 सेक्शन है अगर इस सारे एक्ट को पढ़ा जाए, पर मुख्यतः जो आम प्रचलन में 138 से 148 ए तक ही आते हैं।
1: जी तो जैसे मान लीजिए जो चेक के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि मुख्य तौर पर आज की तारीख में तो यही है, चेक के आदान प्रदान में ही
0: चेक। जी, बिल्कुल,
1: इसमें ज़्यादातर ये केसेस आपके पास आते होंगे।
0: जी,
1: तो इसमें चेक अगर कोई किसी का डिसऑनर हो जाता है तो इसमें क्या रहता है आगे प्रावधान फिर?
0: देखिए, जो ये मुख्यतः प्रावधान 138 जो सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वहाँ पे प्रदान किया गया है। इसका अगर देखा जाए, इसका उद्देश्य, क्योंकि डिसओनर ऑफ चेक को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है, जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर प्रगति करने के लिए, लोगों का चेक में और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में विश्वास बहाल करने के लिए इसे ऑफेंस बनाया गया था।
1: जी
0: अगर आसान भाषा में हम इसे समझें, जो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर आप आज यहां से किसी और दूसरे बड़े शहर के अंदर खरीदारी करने के लिए चले जाते हैं, आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं चले गए,
1: जी
0: अब आपके पास कैश तो नहीं होगा, साधारणतः आप रखेंगे भी नहीं। अब आपने वहां पर खरीदारी करी और आपने उनको कैश पेमेंट की बजाय चेक,
1: चेक दे दिया।
0: अब जब तक उस चेक के प्रति लोगों का, आम जन का विश्वास नहीं बढ़ेगा कि हाँ, कि जब ये चेक मैं बैंक में लगाऊंगा वो ओनर हो जाएगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर प्रगति नहीं हो सकती। इसी वजह से इसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि अगर आपने किसी को अपने खाते से चेक दिया है और वो चेक अगर डिसओनर कर देता है बैंक ड्यू टू इनसफिशियंट बैलेंस इन हिज अकाउंट, उसके दो ही तरीके होंगे, या तो उसके खाते के अंदर आपने चेक किसी को दे दिया 1 लाख का, लेकिन जब लगाया और उसके खाते के अंदर अगर 90 हज़ार भी हैं तो वो चेक एन कैश नहीं
1: जी
0: होगा।
1: जी
0: दूसरा एक और तरीका, जो कि मुख्यतः व्यापारी वर्ग उसे अभिन्न है, कई बार ऐसा नहीं होता कि मेरे खाते के अंदर पैसे ही होने चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि व्यापार के अंदर बैंक लिमिट भी बनाते हैं,
1: जी
0: क्रेडिट लिमिट्स भी बना सकते
1: एक तरह
0: हैं।
1: से हम कहें साधारण शब्दों में उधार की।
0: हाँ, उधार के लिए जो बैंक लिमिट्स बना देते हैं कि फलाना व्यापारी की बैंक ने 10 लाख की लिमिट बनाई हुई है, अगर उस
1: जी
0: खाते से कोई चेक होता है कि अगर वो चेक जितनी उसकी लिमिट है, जितनी उसकी क्षमता बैंक ने उसके साथ एग्रीड की हुई है, अगर उससे ऊपर होगी तब भी वो इनसफिशियंट बैंक और एक्सीड लिमिट की वजह से डिसओनर हो जाएगा।
1: जी
0: अब अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप के अंदर अपराध की श्रेणी में आता है।
1: जी तो अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को चेक दिया है और उसकी लिमिट, जैसे आपने उदाहरण दिया कि 10 लाख है और 15 लाख रुपए का चेक है, 5 लाख रुपए वैसे नहीं मतलब बैंक देगा फिर।

0: तो अब देखिए, अब वो आदमी तो चाहेगा कि अब मैं कोर्ट में जाता हूँ,
1: जी
0: तो उसके लिए जैसे मान लीजिए निर्धारित तिथि को उसने 22 जुलाई का चेक दिया था,
1: जी
0: लेकिन 22 जुलाई को पैसे नहीं थे।
1: जी
0: अब वो कुछ दिन तो इंतज़ार करता है, कोई समय सीमा होगी कि अगर वो मान लीजिए अब 2-4 महीने वो नहीं करवाता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अब 4 महीने बाद मैं कोर्ट में जाता हूँ और मुझे कोर्ट कहे कि आप 4 महीने तक कहाँ सोए हुए थे, इसके लिए कोई समय सीमा है
1: नहीं,
0: क्या?
1: बिल्कुल है। बाकी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मुख्यतः ऐसा होता भी है कि चेक डिसोनर हो गया तो उसने जारीकर्ता को बोला कि भी आपका चेक डिसोनर हो गया, और उसने एक आश्वासन दे दिया कि भाई कोई बात नहीं, मैं महीने 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आपकी ये पेमेंट है जो अदा कर दूंगा और आप केस मत करो।
0: जी
1: अब उसे कानूनी जानकारी नहीं है कंप्लेनेंट को, और पता चले कि उसने इसी आश्वासन के अंदर 6 महीने 7 महीने निकाल दिए, तो उस चेक का कोई यूज़ नहीं रहेगा।
0: जी जी
1: क्योंकि इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है चेक की हमेशा एक वैलिडिटी होती है
0: जी
1: कि
0: जी
1: वो कब तक वैलिड है,
0: जी
1: उसकी वैलिडिटी या 6 महीने के भीतर भीतर जो वाद दायर करना पड़ेगा। दूसरा, यह भले ही अपराध है लेकिन विधायिका ने एक सेफ गार्ड के लिए एक और इसके अंदर प्रावधान किया है कि जब तक यह अपराध नहीं माना जाएगा कि जब व्यक्ति को डिसोनर का मीमो बैंक से मिलता है उसके 30 दिन के भीतर भीतर उसे एक रिटर्न नोटिस अक्यूज को देना होता है, और आप
0: जी
1: मुझे 15 दिन के अंदर अंदर ये जो निर्धारित जो चेक की अमाउंट की राशि है ये मुझे अदा कर दो। फिर अगर वो उस 15 दिन के अंदर वो अदा नहीं करता, उसके 30 दिन के भीतर भीतर ही कंप्लेंट न्यायालय के अंदर दायर की जाएगी।
0: जी तो जो एक प्री मेच्योर कंप्लेंट की भी बात करते हैं कभी कभी, तो ये
1: जी
0: क्या होती है?
1: जी प्री मेच्योर कंप्लेंट उस कंप्लेंट को बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि टोटल जो प्रोसेस है 75 दिन का है अगर इसे आम भाषा में समझे तो। जैसे कि चेक डिसोनर हुआ, उसके 30 दिन के भीतर भीतर मुझे 15 दिन का नोटिस देना है। वो जरूरी नहीं है कि 30 दिन के अंदर ही, वो भले ही वो अगले दिन ही दे दे,
0: जी
1: उसने एक हफ्ते के बाद उसको रिटर्न नोटिस दिया 15 दिन के अंदर पैसा वापस करने का। अब 15 दिन जब वो खत्म होंगे उस दिन से ये माना जाएगा कि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड।
0: जी जी
1: उसके बाद 30 दिन का लिमिटेशन पीरियड है कि कोर्ट के अंदर उसको कंप्लेंट लेके आनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर यह उन केस के अंदर होता है जहां पर मैंने जो नोटिस दिया है उसे पोस्ट कर दिया उसके करेक्ट एड्रेस के ऊपर। जब पोस्ट किया तो अब उसकी कोई पावती नहीं आती, एक्नोलेजमेंट रिसीट नहीं आती, या कंप्लेनेंट ट्रैक रिकॉर्ड की रिपोर्ट नहीं लगाता कि इस तारीख को ये उसको रिसीव हो गया। अगर तो उसकी पावती लग जाती है कि हाँ इस तारीख को नोटिस रिसीव हो गया, फिर तो ठीक है कि उस तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर उसे जो कंप्लेंट कोर्ट में दायर करनी है। पर जिन केसेस के अंदर एक्नोलेजमेंट रिसीट वापस नहीं आती तो जनरल क्लॉज एक्ट की सेक्शन 27 की अवधारणा है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि वो जो उसको 30 दिन के भीतर भीतर वो नोटिस प्राप्त हो गया और उसके बाद वो कंप्लेंट दायर करेगा। तो जो ज़्यादा दिक्कत वाला इस टाइम प्री मेच्योर कंप्लेंट में यही है कि अभी हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया है कि जो अवधारणा मानी जाएगी उसको 30वें दिन मानी जाएगी, कि 30वें दिन तक नहीं मानी जाएगी, जो लास्ट डे है ये मानी जाएगी इस तारीख को उसको नोटिस रिसीव हुआ है और उसके 15 दिन के बाद कंप्लेंट दायर करनी है। अमूमन आम जन क्या कर रहा है कि मैंने आज नोटिस कर दिया और अपनी ही अवधारणा मान ली कि भाई यहां से शिमला से ठोक का एड्रेस था, 3 दिन के अंदर हो गया होगा, और उसने 3 दिन के हिसाब से 15 दिन का इंतजार करने के बाद 19वें दिन कंप्लेंट दायर कर दी। उसे कोर्ट ये मानती है कि नहीं, वो प्री मेच्योर कंप्लेंट है और वो लायबल टू बी रिजेक्टेड है।
0: जी तो प्रवीण जी, ये तो एक विश्वास की बात है कि किसी विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति ने एक दूसरे को चेक दिया, एक डिसऑनर हो जाता है चेक जैसे, तो अब उसमें जिस व्यक्ति का चेक डिसऑनर हुआ है उसके लिए कुछ सजा का भी तो प्रावधान होगा?
1: बिल्कुल है जी, इसमें 2 साल की सजा का और 2 गुना जो चेक अमाउंट है उसका डबल जुर्माने का प्रावधान है।
0: जी तो अगर 2 साल की सजा उसको हो भी गई, अब मुझे तो उसने 10 लाख का चेक दिया था, तो मुझे तो, मैं तो रह गया ना, मेरा तो 10 लाख डूब जाएगा क्या, या क्या क्या होगा
1: नहीं
0: फिर
1: नहीं नहीं
0: उसका?
1: इसमें मैंने अभी आपको बताया कि 2 साल की सजा
0: जी
1: या जितना चेक अमाउंट है उससे 2 गुना का जुर्माना या कंपनसेशन या दोनों न्यायालय कर सकता है। हाँ, मुख्यतः मैं ये बता दूं कि जो ये एक्ट है या जो ऑफेंस है वो ज़्यादा कंपनसेटरी नेचर का है।
0: जी
1: जैसे अभी आपने बताया का आपका जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य अपना पैसा प्राप्त करना है ना कि उसको सजा दिलाना।
0: जी जी
1: आर विजयन वर्सेस बेबी की एक जजमेंट थी, उसमें यह निर्धारित किया था कि जो चेक अमाउंट है और उसके ऊपर 9% का जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से एक तरह से जो भी कंपनसेशन है वो निर्धारित किया जाना चाहिए।
0: आमतौर पर इस तरह के जो केसेस जो है ना जी प्रवीण जी, वो अक्सर ये देखा गया है कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक मालिक अपने नौकर को चेक दे देता है,
1: जी जी
0: कोई ठेकेदार है उनके पास, कोई लेबर है उनको चेक दे देते हैं,
1: जी
0: और आमतौर पर ये वो वर्ग रहता है जो गरीब लोग रहते
1: जी
0: हैं, तो उनको तो ये भी मालूम नहीं होता है कि अब
1: जी
0: अगर चेक डिसऑनर हो गया है तो मैं
1: जी
0: कहाँ जाऊँ, मैं
1: जी
0: किस कहाँ

0: शिकायत करूं,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये बता दें हमारे श्रोताओं को कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहाँ अपील की जा सकती है इसके बारे में।
1: देखिए, सबसे बढ़िया तो बात आपने भी यही कही कि ये जो आपके आकाशवाणी के ऊपर इस तरीके के जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है उन्हीं लोगों को कानून के बारे में जानकारी देना होता है, और उसके लिए आप लोग लगभग हमेशा न्यायपालिका से बुलाते हैं और हम लोग आते हैं और कानून की बात करते हैं,
0: जी
1: तो मैजिस्ट्रेट के यहाँ पे कंप्लेंट दायर होगी। रही बात अभी अगर आपका ये है कि उसके बाद अगर वो अपील उसकी खारिज हो जाती है या उसकी कंप्लेंट खारिज हो जाती है या मुलजिम को सजा हो जाती है, तो उसकी अपील,
0: जी जी
1: इसमें भी दोनों अलग अलग बात है कि अगर कंप्लेंट के अंदर सजा हो जाती है, जो अभियुक्त होगा उसकी अपील दायर होगी, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने सजा करी है तो सेशंस कोर्ट के अंदर होगी।
0: जी
1: जहां तक की बात है कि अगर उसकी दावा खारिज हो जाता है या उसकी कंप्लेंट ही खारिज हो जाती है, कोर्ट मान लेती है कि नहीं कोई ऑफेंस नहीं हुआ, तो जो ऑर्डर अगेंस्ट एक्विटल है, अभी तक का जो कानून था वो ये था कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन आएगी सेशंस कोर्ट में, लेकिन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एक्विटल जाएगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। पर
0: जी
1: अभी रिसेंटली ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है कि वो जो वादी होगा, जो शिकायतकर्ता होगा, वो 372 सीआरपीसी के हिसाब से विक्टिम की कैटेगरी में आएगा, उसे भी अधिकार होगा कि वो अपनी जो अपील है वो सेशंस कोर्ट में ही दायर कर सकता है।
0: जी तो जैसे अब कोई केस दायर हो गया और उसके बाद दोनों में समझौता हो जाता है कि चले यार अब को
1: जी
0: अपना केस
1: जी
0: वापस ले ले,
1: जी जी जी
0: और
1: जी
0: मैं जो जितना भी तेरा पेमेंट है, जो मैंने पेमेंट करनी है वो मैं तुझे दे देता हूँ,
1: जी
0: तो इस परिस्थिति में क्या ये दोनों लोग आपस में समझौता कर सकते
1: जी
0: हैं?
1: बिल्कुल। देखिए, सीआरपीसी में भी तीन तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। एक ऑफेंस कंपाउंडेबल होते हैं, एक ऑफेंस कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होते हैं, और एक ऑफेंस होते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पार्टी अपनी मर्जी से जब चाहे ऑफेंस को कंपाउंड कर सकती है, कि जो कि गंभीर प्रकृति के नहीं होते। कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जहां पर कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी होता है कि कंपाउंड तो कर सकता है, बट कोर्ट देखेगी कि कंपाउंड किया जाना चाहिए, कि क्या ऐसा अपराध तो नहीं जिसका ना कि प्रभाव अकेले कंप्लेनेंट के ऊपर पड़ा पर समाज के ऊपर तो नहीं पड़ा। और तीसरी कैटेगरी के जो गंभीर श्रेणी के अपराध होते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर वगैरह, वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। वहां पर अगर पार्टी भी आकर कोर्ट को बोलेगी कि मुझे कंपाउंड करना है, कि
0: जी
1: मतलब मान लीजिए कि किसी का अगर मर्डर हो जाता है, अगर उसके माता पिता ने शिकायत करी शुरू के अंदर कि ये हो गया, और बीच में उनकी कोई बातचीत हो जाती है मुलजिम के साथ, अक्यूज के साथ, और वो कहते हैं कि जी हमें नहीं आगे ये चलाना, लेकिन वहां पर क्योंकि गंभीर प्रकृति का अपराध है और अपराध समाज के खिलाफ है, तो उस दिशा के अंदर कंपाउंड नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये ऑफेंस जो एनआई एक्ट के अंदर है तो है ही कंपनसेटरी नेचर का, इसका
0: जी
1: मुख्य उद्देश्य ही उसकी क्षतिपूर्ति कराना है, किया जा सकता
0: कोई
1: है।
0: विशेष बात इसके बारे में आप जो हमारे श्रोताओं को कहना चाहेंगे?
1: हाँ, एक विशेष बात मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने दामोदर एस प्रभु की एक लैंडमार्क जजमेंट थी, उसमें सिर्फ इस उद्देश्य से कि अगर किसी को कंपाउंड करना है कि कोर्ट का कीमती समय भी बचे और कंप्लेनेंट को क्षतिपूर्ति भी शीघ्र ही मिल जाए, यह अवधारित किया था। इवन ये भी बोला था, कोर्ट्स को भी बोला था कि जब कोर्ट्स नोटिस समन्स इशू करेंगी अक्यूज को, उसके ऊपर लिखा जाएगा कि अगर आप इसको कंपाउंड करना चाहते हैं तो ये
0: जी
1: फलाना फलाना अमाउंट, जो सच चेक अमाउंट है और जो कोर्ट को लगे कि जो उसकी क्षतिपूर्ति और साथ में है, कि ये आके कोर्ट में जमा करा दें और ऑफेंस कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन अभी भी उन्होंने बोला कि अगर शुरुआती स्टेज के ऊपर जब तक ट्रायल चल रहा है, एविडेंस नहीं हुई, अगर वो कराता है वो चेक अमाउंट जो भी है वो देता है कोर्ट में, वो कंपाउंडेबल माना जाएगा, लेकिन अगर कंपाउंडेबल में के अंदर शिकायत करता है वो सहमत हो।
0: जी
1: लेकिन माननीय सर्वोच्च अदालत ने ये कहा कि अगर वो देरी करता है और लेट स्टेज के ऊपर करता है, क्योंकि कोर्ट का समय एक तरह से जनता का ही कीमती समय है, तो फिर उसे 10% जो चेक का अमाउंट है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कॉस्ट के बतौर जमा कराना पड़ेगा। और अगर वो अपीलेट स्टेज के ऊपर अगर सेशंस कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट में कंपाउंड करता है तो 15% जमा कराना पड़ेगा, और अगर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में करता है तो 20% शुल्क जमा कराना पड़ेगा।
0: जी प्रवीण गर्ग जी, आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात। इसमें आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विषय पर विशेषज्ञ श्री प्रवीण गर्ग, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भेंट कर रहे थे डॉक्टर हुकुम शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: जी हाँ, ट्यूनिंग है आप इस वक्त 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गए हैं हम आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम गीतांजलि। जी हाँ, आज का गीतांजलि प्रोग्राम रहने वाला

है आपकी ईमेल पर आधारित। जी हाँ श्रोता, आप सभी जानते हैं कि आज है सोमवार का दिन और आज का ये खास प्रोग्राम रहता है आप सभी की प्यारी प्यारी सी ईमेल्स पर बेस्ड, जहां आप सभी अपना प्यार हम तक पहुंचाते हैं अपने मैसेजेस के जरिए। और हमारी भी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके तमाम जो मैसेजेस है वो इस प्रोग्राम में शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फरमाइश को पूरी कर पाएँ। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से हम सफ़र बन जाइए इस खूबसूरत सफ़र के जो चलने वाला है अब से लेकर ठीक 10 बजे तक। प्रोग्राम में मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी रहता है musicmaildshala@gmail.com। जी हाँ, जल्दी से मेल कीजिए, अपने नाम, अपनी लोकेशन, अपनी फरमाइश के साथ सेंड कर दीजिए musicmaildshala@gmail.com पर। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी। तो जल्दी कीजिए भाई, इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए और सुनिए अपनी पसंद के गीत एकदम लाइव आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। तो इससे पहले कि हम आपकी मेल्स का प्रोग्राम में शामिल करने का सिलसिला शुरू करें, आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत और तब तक आपकी फरमाइशों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।

जी हाँ, प्यारे प्यारे से गीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है गीतांजलि, जो कि है आपकी ईमेल पर आधारित। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइए अपनी मेल्स के साथ और सुनिए अपनी पसंद के गीत। तो चलिए भाई, प्रोग्राम में मेल्स को शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं और बताते हैं कि पहली मेल हमें किन की पहुंची है। जी हाँ, ललिता देवी और शिवेन हमें मेल कर रहे हैं लंच डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, और ये सुनना चाहते हैं कोई सा भी गीत हमारे इस प्रोग्राम में। और अगली मेल जो हम तक पहुंची है वो है मोहाली चंडीगढ़ से। मेल करने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, और इनके साथ ही है अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, शुभचंद्र बजाज और बिट्टू बजाज हमें मेल कर रहे हैं कालका से। ये सुनना चाहते हैं दबंग फिल्म से कोई सा भी गीत। और प्रोग्राम में जो अगली मेल हम शामिल करने वाले हैं वो हमें मिली है, मेल किया है बक्सर बिहार से, और मेल करने वाले हैं शफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, और इनके साथ ही है सुरीत रमेश साहू। डमराओ बिहार से हमें मेल किया है डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, और इनके साथ है दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से हमें मेल किया है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य और परमानंद आर्य ने। इसके साथ ही सारीमपुर बक्सर से हमें मेल किया है राज एसडी अंसारी और आसमा खातून ने। तो चलिए भाई, इन सभी के लिए हम सुनवाते हैं दबंग फिल्म से ये गीत। आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला पर गीतांजलि प्रोग्राम।

जी हाँ, जब हमारी प्यारी प्यारे से लिसनर्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं ना, तो हमारा जिया भी वो इसी तरह से चुरा लेते हैं। बहरहाल प्रोग्राम में अगली मेल जो है वो शामिल करते हैं और आप सभी को बता देते हैं कि प्रोग्राम में नेक्स्ट मेल हमें किया है पराया धन फिल्म के लिए, और मेल करने वाले हैं नरगोंडा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। अगली मेल हम तक पहुंची है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। मेल करने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलेश बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ये सुना चाहते हैं कोई सा भी गीत हमारी पसंद से, और जो अगली मेल इस प्रोग्राम में हम शामिल करने वाले हैं वो हमें मिली है। जी हाँ, ये मेल हम तक पहुंची है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। मेल करने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बबलू और डब्लू। तो चलिए, इन सभी के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं पराया धन फिल्म का ये गीत। आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, सुनते रहिए प्रोग्राम गीतांजलि।

श्रोता, गीतांजलि कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा, और प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे गीतांजलि प्रोग्राम का शेष भाग।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने की घटना से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। क्षेत्र के लिए 8.5 लाख देने का किया ऐलान। सरकार लोकसभा में आज पेश करेगी लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 5 दिवसीय शिमला दौरे पर। और मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की

0: सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना और पेपर लीक तथा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कल शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह क्षेत्र में बादल फटने की घटना से प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोह में स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बोह क्षेत्र के बेघर परिवारों को गृह निर्माण और अन्य सामान के लिए 8.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय या भैंस आपदा के लिए 55,000 प्रति पशु और बकरियों के लिए 15,000 प्रति बकरी की सहायता राशि दी जाएगी। जिन घरों में बाढ़ या आपदा का पानी घुसने से नुकसान हुआ है उन्हें 1 लाख व क्षतिग्रस्त दुकानों के लिए नुकसान के आधार पर 50,000 रुपये से 1 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रिडकमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की।
2: फ्री राशन भी मिलेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये हमारी योजना है और मेरे आपको जो पैकेज दिया है उसकी पहली किस्त आपको आगे आने वाले समय में सब अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, जिसका भी अकाउंट है, जिसकी जितनी बकरी मरी है, पटवारी की रिपोर्ट आएगी, पार्सली डैमेज रिपोर्ट आएगी, जो मैंने घोषणा की है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान भारतीय विज्ञान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश भर के लाखों युवाओं में आत्मविश्वास, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की भावना को जागृत किया। रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और लोक संस्कृति की अनुपम छटा के बीच 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या का कल रात भव्य आगाज हुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों और हिमाचल के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान के नेतृत्व में आयोग का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल कल से 5 दिवसीय शिमला दौरे पर है। इस दौरान आयोग अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण, अधिकारों के संरक्षण व विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: अनुसूचित जाति आयोग आज 27 जुलाई को सफाई कर्मचारी कल्याण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों, सफाई कर्मचारियों व नगर निगम शिमला के अधिकारियों के साथ नगर निगम कार्यालय में बैठक करेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय IGMC, एम्स चमियाणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। स्तर पर संचालित योजनाओं व समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलोग्राम के रिकॉर्ड तोड़ भारोत्तोलन के साथ शानदार प्रदर्शन किया। 31 वर्षीय इस भारोत्तोलक ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में

0: 5 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नए रिकॉर्ड बनाए। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2018 और 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मीराबाई चानू को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने उनके समर्पण, दृढ़ता और निरंतर उत्कृष्टता की प्रशंसा की, जबकि प्रधानमंत्री ने इस जीत को भारतीय भारोत्तोलन के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय बताया। सिरमौर जिला में केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के अंतर्गत 194 करोड़ 42 लाख की राशि खर्च की जा रही है। ये परियोजना सिरमौर जिले की विद्युत व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। पेश है ये रिपोर्ट।
1: सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नाहन विधानसभा क्षेत्र में 86 करोड़ 75 लाख, पांवटा साहिब में 70 करोड़ 50 लाख, जबकि राजगढ़ क्षेत्र में 37 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जिससे बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: लाहौल आलू उत्पादक संघ का 60वां वार्षिक अधिवेशन कारगा में आयोजित किया गया। इसमें लाहौल घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर चौधरी राम ने बताया कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, कृषि विभाग की योजनाओं और बीज आलू उत्पादन को बढ़ावा देने बारे जानकारी प्रदान की गई। अधिवेशन में किसानों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, लाहौल में बादल फटा, पुल सड़क बहे, मनाली में नाले में बहने से ट्रैकर की मौत। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, किन्नर कैलाश यात्रा 30 जुलाई से, एक दिन में 375 श्रद्धालु ही जा सकेंगे। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, न्यू कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर शिक्षक दिवस से पहले होगा निर्णय। शाह तलाई में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 की मौत, कई घायल, पंजाब केसरी की एक खबर है। दिव्य हिमाचल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का भव्य आगाज, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया शुभारंभ, 8 दिन चलेगा मेला। केंद्र ने 94,805 क्विंटल दालों के आवंटन को दी मंजूरी, शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है, प्रदेश के डिपुओं में अब नहीं होगी दालों की किल्लत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने की घटना से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। क्षेत्र के लिए 8.5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। सरकार लोकसभा में आज पेश करेगी लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 5 दिवसीय शिमला दौरे पर। और मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोतो, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के गीतांजलि प्रोग्राम में। जी, आप सभी जानते हैं कि ये गीतांजलि प्रोग्राम है आपकी ईमेल पर आधारित, और आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी ईमेल्स के साथ भेज सकते हैं हमें संदेश और यहाँ से सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। इसके लिए आपको करना होगा बस एक मेल, और उसके लिए हमारा मेल आईडी रहता है musicmail@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम में अगली मेल जो हमें मिली है उसे शामिल करते हैं। ये हमें मेल किया है वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र शमशेर, मनोज, और ये सभी सुनना चाहते हैं एक्शन जैक्शन फिल्म से कोई सा भी गीत।

इसी फिल्म के लिए अगली रिक्वेस्ट हम तक मिली है संबलपुर कांकेर से, और मेल करने वाले हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। इसके साथ ही अगली मेल जो हम तक पहुंची है वो है जी हाँ, ये मेल हमें मिला है फरांसी हिसार से। मेल करने वाले हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और इनके साथ ही है पुष्पेंद्र कुमार डूडी। हमारी पसंद से कोई सभी गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, और ये सभी लिख रहे हैं नमस्कार जी और फरमाइश कर रहे हैं कि कोई सभी गीत हमारे लिए सुनवा दीजिए। तो चलिए, देर किस बात की है, हम आप सभी की फरमाइश पूरी करने के लिए यहाँ पर बैठे और आप सभी के इसलिए सुनवा रहे हैं एक्शन जैक्शन फिल्म से ये गीत।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
0: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
0: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: जी हाँ, जुड़े हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित प्रोग्राम गीतांजलि। चलिए प्रोग्राम में अगली मेल हमें मिली है उड़ता पंजाब फिल्म का गीत सुनने के लिए, और मेल करने वाले हैं रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जैशीन खान। इसके साथ ही अगली मेल जो हम तक पहुँची है वो है सुल्तान सिंह तरार, इनके साथ ही है कपिल देव और हिमानी। ये सभी सुनना चाहते हैं कोई सा भी गीत, और हमें इसके साथ ही अगली मेल जो हम प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं वो है जी हाँ शिवम, हमें शिवेन हमें मेल कर रहे हैं और ये भी सुनना चाहते हैं हमारी चॉइस का कोई सा भी गीत। तो चलिए भाई, आप तमाम सुनने वालों के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं उड़ता पंजाब फिल्म से ये गीत। आप यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ गीतांजलि प्रोग्राम में।

जी हाँ, हमारी पसंद से कोई सभी गीत सुनने के लिए अगली मेल हमें पहुंची है। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से मेल करने वाले हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत राहुल, और इनके साथ ही है गुरशब्द सिंह राहुल। अगली मेल प्रोग्राम में हमें मिली है कोल सिटी बरकाना से मेल करने वाले हैं अफजाल ताज, इनके साथ ही है शहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और निप्पी सहानी। इनके अलावा एक और मेल हमें मिली है मोहम्मद अफजल मलिक की। तो चलिए, इन तमाम सुनने वालों के लिए हम प्ले कर रहे हैं ये गीत। आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र पर।

जी हाँ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 9:48 हो चुके हैं और देखिए प्रोग्राम जो है वो समाप्ति की ओर है। तो अगर आप भी अपनी चॉइस से कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं अपनी नाम लोकेशन के साथ, आप भेज दीजिए इसे musicmaildshala@gmail.com पर। तो चलिए प्रोग्राम में अगली मेल हम शामिल करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि नेक्स्ट मेल हमें किया है गोल्डन श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। मेल करने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। प्रोग्राम में अगली मेल हमें मिली है बंटी और बबली फिल्म के लिए। मेल करने वाले हैं शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से। मेल किया है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। इसके साथ ही अगली मेल जो हम तक पहुंची है वो है रमेश चंद मखेजा की। इन्होंने अपनी लोकेशन हमें लिखकर नहीं भेजी है, कोई बात नहीं, जब आप अगली बार इस प्रोग्राम में शामिल हो अपनी मेल हमें भेजें तो कृपया अपनी लोकेशन ज़रूर भेजें, से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं ना वो हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं।

जी हाँ, एक और मेल हम तक पहुंची है और मेल किया है अनवर अंसारी ने। ये हमें मेल कर रहे हैं मंडी पंजाब, मोहम्मद अंसारी, और इनके साथ ही है रवनीश और जावेद अख्तर। ये सभी सुनना चाहते हैं कोई सा भी गीत। चलिए, आप सभी के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं बंटी और बबली फिल्म का ये गीत। आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

जी हाँ श्रोताओं, आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से ईमेल पर आधारित प्रोग्राम गीतांजलि। तो चलिए भाई, स्टूडियो की घड़ी तो हमें इशारा कर रही है कि प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त किया जाए। कार्यक्रम के आखिर में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी श्रोता इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े उनका सभी का दिल से शुक्रिया। और लास्ट में एक और बात ऐड करना चाहेंगे कि हम अपने जितने जो है वो लिसनर्स की फरमाइश को एक ही प्रोग्राम में कई बार जो है वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी इतनी सारी मेल्स हम तक पहुंच रही होती है, लेकिन हम उनके नाम के साथ जो है और लोकेशन के साथ उनकी फरमाइश को हम यानी कि इस प्रोग्राम में उनकी मेल्स को हम ज़रूर शामिल करते हैं। वेल, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपनी दोस्त नीमा शर्मा को कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, क्योंकि कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है गीतों का कारवां कार्यक्रम। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

गीतों का कारवां कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आज इस सफर में आपके साथ आपकी हमसफर एकता। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, संगीत वह जादू है जो दिलों को जोड़ता है, यादों को तरोताज़ा बना देता है और हर एहसास को सुरों में पिरो देता है। तो देर किस बात की, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: ये गीत सुना आपने फिल्म सरगम से, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरिया रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ। माइलेज का हीरो, स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां, और अब अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म खुद्दार से। गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू के मिले जुले स्वरों में अभी ये गीत सुना आपने फिल्म आरजू से। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीतों का कारवां, जहां हर गीत आपने साथ लेकर आता है यादों की महक और सुरों की मिठास। तो कार्यक्रम में एक और गीत आपके रेडियो सेट पर पेश है।

अभी ये गीत सुना आपने फिल्म चांदनी से। इस गीत को गाया था सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे ने। अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कयामत से क्यामत तक का ये गीत। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

0: श्रोताओं, ये लोकगीत सुना आपने चन्मा जय सिंह और साथियों का गाया हुआ। सच में आजकल मिंजर का मेला चंबा में लगा हुआ है और लोक संगीत जो है हमें जो है चंबा घुमाकर भी आ गया। श्रोताओं, लोक संगीत में वो जादू है जो हमें कहीं भी पहुंचा देता है, हमारी संस्कृति से हमें रूबरू करवाता है और हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लोक धरोहरों को, अपने लोक संगीत को, अपने मेलों को जो है संजो कर रखें।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं बलबीर सिंह का गाया ये लोकगीत।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: आपने ट्यून किया है FM धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की अगली पेशकश है संजीव कुमार द्वारा गाया ये लोकगीत।

अभी ये लोकगीत सुना आपने अंकुश संधल की आवाज में। अगला लोकगीत आपकी रेडियो सेट पर है लक्ष्मी और राजेश कुमार की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। प्रधानमंत्री ने मेरा युवा भारत मंच के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को देश के सीमावर्ती गांवों का दौरा करने, उन्हें समझने और उनसे जोड़ने के लिए प्रेरित करना है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि असाधारण साहस, अटूट समर्पण और उच्चतम मानकों के साथ सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ अटूट साहस, असाधारण कर्तव्यनिष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे नक्सलवाद का खात्मा हो या देश की शांति और प्रगति की रक्षा करना, बल ने हमेशा राष्ट्र की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कल शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने की घटना से प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोह में स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बोह क्षेत्र के बेघर परिवारों को गृह निर्माण और अन्य सामान के लिए 8.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के घर इस आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें मकान निर्माण के लिए 7.5 लाख की आर्थिक सहायता व अन्य आवश्यक घरेलू सामान की खरीद के लिए 1 लाख की सहायता भी दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रिटकमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की।
2: फ्री राशन भी मिलेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये हमारी योजना है और मेरे आपको जो पैकेज दिया है उसकी पहली किस्त आपको आगे आने वाले समय में सब अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, जिसका भी अकाउंट है, जिसकी जितनी बकरी मरी है, पटवारी की रिपोर्ट आएगी, पार्सली डैमेज रिपोर्ट आएगी, जो मैंने घोषणा की है।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना और पेपर लीक तथा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलोग्राम के रिकॉर्ड तोड़ भारोत्तोलन के साथ शानदार प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मीराबाई चानू को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादलों के बीच मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राज्य परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अब तक 135 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, वहीं 44 ट्रांसफार्मर और 38 पेयजल योजनाएं बाधित हैं। इधर विभाग ने कल से 30 जुलाई तक मॉनसून के फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई है, जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है महक पंजाब दी।
4: नमस्कार दोस्तों, महक पंजाब दी लेके मैं जतेंद्र हाजिर हाँ। मुलाकातों की मिठास होवे या सफरा की रौनक, पंजाबी गीत हर रंग नूं सुरां विच परो दिंदे हन। आओ इसे रंगीले सफर नूं शुरू करते हैं।

कदे दिल दियां गल्लां कदे स्टाइल दा जादू, यही तो है नौजवान पंजाब दी धड़कन। पेश है अगला गीत।

मुस्कुराहटां दी गल चले ते नाल कुछ शरारत भी बनती है। इन्ना ही हल्के फुलके अंदाज नाल पेश है अगला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हौली हौली वगदी हवा, मिठी यादा ते चेहरे ते मुस्कान, यही एहसास लेके हाजिर है अगला पेशकश।

अभी आप सुन रहे थे पंजाब दी महक कार्यक्रम FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 होने को हैं। अब समय है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो लीजिए सुनिए ये कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहेब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
3: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह

0: छह गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की, बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
1: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
0: जारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीत में प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।

0: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
1: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
2: तुमसे कह रहा हूँ, देखिए, रखो,
1: चलो मुझे छोड़ दो। साथ वाले कहने भी उतार, मुझे छोड़। ए, तुम भी मेरा बहुत बड़ी बात कर रहे हो। ये
2: मेरा, मेरी अंगूठी ले लो।
1: ना,
2: मुझे छोड़ दो।
0: वो उन्हें मार डालता था। वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
3: नाथ,
4: महात्मा,
3: प्रभु,
4: महात्मा,
3: प्रभु
4: अब जंगल में मत जाएं।
5: वहाँ अंगुलीमाल है।
4: हाँ प्रभु,
5: वो बहुत बड़ा डाकू है।
6: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
5: जाएं।
6: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
4: ना जाए प्रभु।
7: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: इन पत्तों को जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान।

0: शिष्य बन गया।
1: छत्तीस साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
2: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं और रोजाना की तरह लेकर आ गए हैं हम कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के सैनिकों के लिए कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन से चुनिंदा फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं सिलसिला फिल्म के इस गीत के साथ।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए आपकी कसम फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।
4: सुना

सैनी भाइयों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में हिना फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए मासूम फिल्म से, जिसे गाया है आरती मुखर्जी ने।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी एकता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम बात करेंगे हिमाचली संस्कृति की, पर पहले आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज है 27 जुलाई, और आप सब जानती हैं कि आज हम उस महान व्यक्तित्व को बड़ी श्रद्धा से याद कर रहे हैं। आप समझ ही गई होंगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिनकी आज पुण्यतिथि है और पूरा देश जो है उन्हें आज अपने श्रद्धा सुमन जो है अर्पित कर रहा है, जिन्हें पूरा देश प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानता है। जी हाँ सखियों, हम बात कर रहे हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। आज इनकी पुण्यतिथि है। इनकी पुण्यतिथि के दिन हम इनके जीवन से ये सीख लेंगे कि साधारण परिस्थितियां भी असाधारण सफलता की राह को नहीं रोक सकती हैं, तो हमें पूरे मन से अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने देश भारत को विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर कलाम का मानना था कि देश का भविष्य उस देश के युवाओं के हाथ में है। वे कहते थे कि सपने वे नहीं होते जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हम जागते हुए देखते हैं, और हमें अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत, लगन और परिश्रम से जो है जुट जाना है। सखियों, सच में देखा जाए तो ये प्रेरक वाक्य हम सब युवाओं के लिए अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चाहते थे कि हर युवा बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करे। सखियों, इनकी पुण्यतिथि हमें ये संकल्प लेने का अवसर देती है कि हमें जीवन में ज्ञान, अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच को अपनाकर अपने भारत को और अधिक सशक्त और विकसित बनाना है। हम युवाओं को अपने सपनों को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना है और एक विकसित, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। ये तो बात हुई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। कार्यक्रम में आगे बात करेंगे हिमाचली संस्कृति पर। जी हाँ सखियों, हमारी हिमाचली संस्कृति ही हमारी असली पहचान है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। कहते हैं जिस समाज की संस्कृति जीवांत रहती है उसकी पहचान भी सदियों तक जीवित रहती है।

संस्कृति केवल हमारी वेशभूषा, खान पान, भाषा, त्योहारों का नाम नहीं, बल्कि हमारे जीने का सलीका है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम कार्यक्रम में अपनी हिमाचली संस्कृति के बारे में बात करेंगे, पर पहले सुनेंगे ये प्यारा सा गीत। तो आइए आनंद लेते हैं मिलकर इस गीत का।

0: चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बरियारे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरियारे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के सन हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
4: एक बार फिर से सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी में स्वागत है। सखियों, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अपने हिमाचली संस्कृति के बारे में, और आज इसके अंतर्गत बात की जाएगी हिमाचली मेलों की और त्योहारों की। हमारे यहाँ साल भर किसी ना किसी क्षेत्र में मेले और उत्सव जो हैं मनाए जाते हैं। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं होते, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। जब बात आती है सखियों मेलों की, तो सबसे पहले हमारी आंखों के सामने रंग बिरंगे से झूले, जलेबी, पकोड़े, चाट पापड़ी, सिड्डू, कचौरी और सुंदर सुंदर हस्तशिल्प का सामान नज़र आने लगता है। और मेलों में कुश्ती प्रतियोगिताएं भी प्रमुख होती हैं। इन मेलों में हमारे लोक नृत्य, नाटी, लोक गायन, पारंपरिक वाद्य यंत्र, हिमाचली हस्तशिल्प और हमारे पारंपरिक व्यंजन सबका मन मोह लेते हैं। सखियों, हमारे हिमाचल के कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा, मंडी की शिवरात्रि, चंबा का मिंजर मेला, नवरात्रि मेले, सिरमौर का रेणुका मेला, लाहौल स्पीति का लोसर अपनी विशेषताओं को लिए हुए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे देश के लोग ही नहीं जाते हैं सखियों, विदेशों से भी हर वर्ष लाखों लोग इन मेलों का हिस्सा जो है बनते हैं। सखियों, सब पहले ज़माने की अगर हम बात करें तो साल भर इन मेलों के आने का हमें इंतज़ार रहता था कि इन मेलों में हम कब जाएंगे, कब अपना मनोरंजन करेंगे। मेलों में पहले ज़माने में ऐसा होता था कि हम सोचते थे कि जब मेले लगेंगे तो मेलों में जाकर हम अपने घर परिवार के लिए ज़रूरी सामान जो है ले लेंगे। पर आज देखा जाए तो इन मेलों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी जब हमारे यहाँ स्थानीय मेले लगते हैं तो हम सखियां पहले से ही तैयारी में जुट जाती हैं कि हमें मेले में जाकर क्या क्या लेना है। जैसे हमारे धर्मशाला के दाढ़ी में लगने वाले स्थानीय मेले की बात करें तो मेले के लगने से कई दिन पहले हम सखियां इसमें घूमने का, सामान लेने का और झूले झूलने की योजना जो है बना लेती हैं। जी सखियों, असलियत में देखा जाए तो मेलों में घूमने का असली आनंद अपनी सखियों के साथ, अपने अपनों के साथ ही आता है। हमें अपने बच्चों को भी इन मेलों में लेकर जाना है और इनका महत्व उन्हें बताना है। आजकल हमारे चंबा में मिंजर मेला लगा हुआ है सखियों, ये फसल की कटाई और ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष में लगता है। चंबा की रावी नदी पर मिंजर अर्पित की जाती है। मिंजर मक्के के पौधे पर निकलने वाले सुनहरी रेशमी फूल, जिसे टैसल कहा जाता है, उसे कहा जाता है। ये अच्छी फसल की समृद्धि, खुशहाली का प्रतीक जो है मानी जाती है। लोग रेशम से बनी इस मिंजर को अपने वस्त्रों पर धारण करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मिंजर मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हिमाचली संस्कृति, लोक कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन

व्यंजनों और लोक संगीत का भी भव्य उत्सव है। सखियों, हमारे मेले हमारी संस्कृति का आईना है, जहाँ हमें एक ही स्थान पर अपना खान पान, लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प देखने को मिल जाता है। भाई, मुझे तो मेलों में जाना बहुत पसंद है। अगर आप भी चाहती हैं मेलों में जाना, तो अभी चंबा में लगे मिंजर मेले में जाकर उसका आनंद उठा सकती हैं। सखियों, हमारे हिमाचल के मेले और त्यौहार हमारे गाँव की लोक कलाओं, लोक संगीत, लोक नृत्यों को जीवांत बनाए हुए हैं। इन मेलों और त्योहारों पर हम लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या से वक्त निकालकर एक दूसरे से मिलते हैं, खाते पीते हैं और आनंद उठाते हैं। अपनी संस्कृति से पुनः जुड़ते हैं, खुशियां बांटते हैं और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाते हैं। तो सखियों, अगर आप भी चाहते हैं इन मेलों में जाना, इनका आनंद उठाना, तो जब भी मेले लगे तो उसमें जाने का मौका ना छोड़ें। और अब हम आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखने के लिए प्ले कर रहे हैं आपके लिए ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक बार फिर से सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी में स्वागत है। सखियों, कार्यक्रम में बात हो रही है अपनी हिमाचली संस्कृति की, और अब हम कार्यक्रम में आगे बात करेंगे हमारे त्योहारों की। तो सखियों, त्योहार केवल कैलेंडर की तारीख ही नहीं है, बल्कि हमारी परंपराओं, हमारी आस्था, संस्कारों और आपसी प्रेम के जीवांत प्रतीक हैं। ये हमें अपने परिवार, मित्रों, समाज और प्रकृति से जोड़ते हैं और हमारे नीरस जीवन में नई ऊर्जा और

उदास का संचार करते हैं। जी बिल्कुल सही है ये बात कि जब हम उदास हो जाते हैं और जब त्यौहार पास आते हैं तो अपने आप हमारे दिल में ये उठता है कि हम बाहर जाएं, घर के लिए नया सामान लें, अपने लिए नए कपड़े खरीदें। तो जो त्यौहार हैं हमारे निरस होते जीवन में एक नई ताजगी जो है भर देते हैं। जब त्यौहार आने वाले होते हैं तो हम एक बार फिर से अपने जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। हम अपने अपनों से इन त्यौहारों पर मिलते हैं, घर पर नया सामान, नए वस्त्र और तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन जो हैं सखियाँ बनाती हैं। हमारे यहाँ सैर का पर्व, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दिवाली, लोहड़ी, होली का त्यौहार जो है बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। हमारे कांगड़ा में सैर का त्यौहार भी जो है बहुत ही धूमधाम से हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। सखियों, आज के आधुनिक दौर में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी इन परंपराओं को संजोए, अपने बच्चों को इन त्यौहारों और मेलों का महत्व समझाकर अपनी संस्कृति से जोड़ें और हर पर्व को अपने अपनों के साथ प्रेम, सद्भाव और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के साथ मनाएं। जी बिल्कुल, हमें त्यौहार और पर्व तो मनाने हैं लेकिन अपने पर्यावरण की स्वच्छता को भी बनाए रखना है। सखियों, कार्यक्रम में बात हो रही है अपनी हिमाचली संस्कृति की, तो अब हम अपने खान पान के पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए अपने हिमाचल की ही एक व्यंजन जो है उसको लेकर आए हैं कार्यक्रम में। जी हाँ, हम अपने मंडी में बनने वाली पारंपरिक जो कचौरी है उसकी विधि आपसे कार्यक्रम में साझा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। गीत के बाद हम बनाएंगे कचौरी आपके साथ इस कार्यक्रम में। तो सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी में फिर से स्वागत है। और सखियों, अब हम पहुंच चुके हैं खान पान के पड़ाव पर और आज हम आपके साथ मिलकर बनाने वाले हैं मंडी की कचौरी। तो सखियों, इसे बनाने के लिए जो सामान हमने लिया है, कृपया नोट करें। 1 कप आटा, 1 कप मैदा, आप चाहें तो आटे या फिर मैदे से भी बना सकती हैं, 4 बड़े चम्मच देसी घी या तेल, 1/2 छोटा चम्मच नमक और आवश्यकता अनुसार जो है हमें गुनगुना पानी लेना है। ये तो हमें आटा बनाने के लिए चाहिए। और कचौरी में भरने के लिए सखियों हमने लिया है 1/2 कप चने की दाल। पहले से ही धोकर साफ कर कर जो है 4 से 5 घंटे पहले भिगोकर जो है रखा हुआ है। सखियों, इस दाल को पीसने से पहले हमें फिर से 1 से 2 बार साफ पानी से धोना है, फिर दर्जा पीस कर रख लेना है। और इस दाल में जो मसाले डाले जाते हैं वे नोट करें। 1/2 छोटा चम्मच सौंफ दरदरी पीसी हुई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी भर हींग, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो हरी मिर्च भी जो है इसमें डाल सकती हैं, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वादानुसार। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकती हैं, क्योंकि चाट मसाला डालने से इसका स्वाद और भी बढ़िया आता है। सखियों, सबसे पहले हमें कचौरी के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो हमने एक बड़ी परात ले ली है और उसमें शुरू करते हैं मैदे और आटे को छानना। मैदा और आटा हमने छान लिया है, अब इसमें 2 चम्मच घी जो है पिघलाकर डालेंगे और अच्छे से हाथ से मस लेंगे। अब थोड़ा सा नमक मिलाकर फिर से इसे मस लिए, फिर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए सख्त आटा गूंद लेंगे। अब सखियों, आटे को ढककर हमें जो है लगभग 1/2 घंटा जो है रख देना है। तब तक ये आटा तैयार होता है, हम बनाते हैं कचौरी में डालने वाली दाल। तो दाल को हमने दरदरा पीस लिया था, अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। कढ़ाई को गैस ऑन करके गर्म करने रखेंगे। इसमें आप देसी घी या तेल जो भी आपको पसंद है वो डालकर गर्म करें। फिर जब ये गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, हींग, दरदरी, सौंफ और पीसी हुई दाल डालकर नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। दाल को हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए। जब ये दाल का पानी सूख जाए तो गैस बंद कर दें। सखियों, हमारा आटा भी तैयार है, तो आटे की गोल गोल सी लोइयां बना लेंगे और हाथ से चपाती का आकार देंगे। और जो ये मिश्रण जो है अब ठंडा हो चुका है, तो चम्मच की सहायता से जैसे चपाती परोंठी बनाते हैं, वैसे ही इस चपाती में हम ये दाल जो है भरेंगे और चारों किनारों से बंद करके फिर हाथ की सहायता से इसे चपटा करेंगे। आप चाहें तो चकला बेलन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पर जो पारंपरिक जो कचौरियाँ बनती हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं, तो हम इन्हें बनाएंगे। और अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करने रखेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो बारी बारी से सारी कचौरियों को मध्यम आँच पर तलेंगे। और सखियों, जब भी कचौरी तलें तो उसे सुनहरी भूरे होने तक तलना है। तो सखियों, ये गर्मा गर्म कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। तो आप भी इनका आनंद लीजिए, आप भी बनाइए और हम भी इनका आनंद लेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अपनी रेडियो सखी एकता को

0: कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी, नए विषय और नई जानकारी मधुर संगीत के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM धर्मशाला। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी एकता को दे कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह और कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए सहयोग दिया अंकित हिमा ने। इसी के साथ प्यारी बहनों नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 1 बजने वाले हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
1: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज

पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698 जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, आपके शहर में बूंदों का क्या हाल है, यानी बारिश का क्या हाल है? बारिश हुई कि नहीं? वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमारे वाराणसी में यानी बनारस में तो बारिश नहीं हुई, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि एक

छोटी सी बूंद जब आसमान से उतरकर सीप के भीतर समा जाती है तो समय के साथ वही बूंद एक अनमोल मोती बन जाती है। ये सफर हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष, इंतजार और धैर्य के बाद ही असली निखार आता है। बूंद से मोती तक का सफर दरअसल उम्मीद, मोहब्बत और जिंदगी के खूबसूरत बदलाव का सफर है, ऐसा ये लिखती हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सीप ने बूंद से उसकी मंजिल नहीं पूछी, बस उसे अपने भीतर जगह दे दी। शायद रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जहाँ अपनापन मिलता है वहीं रहकर वो अनमोल बन जाते हैं। जी हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है श्रोता। और हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि कौन से हैं कलाकार। जी हाँ, वैजंतीमाला और देवानंद साहब नजर आते हैं इस गीत में। ज्वेल थी फिल्म का गीत था मजरू सुल्तानपुरी का, लिखा हमारे श्रोताओं ने, ठीक लिखा है। और आरजू फिल्म के गीत में गीतकार थे हसरत जयपुरी, राजेंद्र कुमार और अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया गीत हमने आपको सुनवाया था। और एक सवाल और है आपसे कि आजकल बारिशों में एक फूल बड़ा नजर आता है श्रोताओं, और वो फूल क्या आपने देखा है? हमारे यहाँ तो इसे गुल मेहंदी का फूल कहा जाता था और हर जगह ये दिखाई दे जाएगा बारिशों के मौसम में। क्या आपने देखा है? वैसे कई रंग में खिलता है, आपको अगर पता हो, आपने अगर देखा हो या आपकी बगिया में अगर है तो आप बता सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि जब बूंद आसमान में है तो उसमें जिज्ञासा भी है और अनजाने का डर भी। दलदल पत्थर, निर्जन बसेरों पर गिरकर, यह हमारे जीवन की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम किसी नए मोड़ पर कदम रखने से डरते हैं, कहीं हम बर्बाद ना हो जाएं। जब हम अज्ञात के डर को छोड़कर अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो जीवन की चुनौतियाँ हमें नष्ट करने नहीं बल्कि हमें निखारने और मोती बनाने आती हैं। जी हाँ, कष्ट तो होता है, बहुत सारी जो रास्ते में अड़चने हैं वो भी आती हैं, लेकिन फिर भी आगे का रास्ता यानी सफ़र तो जारी ही रहता है। यही हाल बूंद का है और हम सब का भी। आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं और संगीतकार।

फिल्म का गीत आपने सुना, दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी, और इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और उन सभी श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो कार्यक्रम में नए जुड़े हैं। एक श्रोता ने हमारे लिखा है कि बनारस में छिटपुट बादल बरस रहे हैं और सुरीला सफर में फिर बारिश होने की संभावना है। जी हाँ, संभावना है, लेकिन देखते हैं कि बरसते हैं या नहीं। तो इन्होंने गीत भी पसंद किया है, दो सितारों का जमीन पर है मिलन, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिले बेताब को सीने से लगाना होगा जिंदगी का सफर, तमाम गीत। एक और हमारे और श्रोता लिखते हैं कि मैं एक शेर पेश करता हूँ अपने श्रोताओं की नजर करता हूँ। सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, दिल दिया आकाशवाणी मुंबई को घायल बना दिया। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सब यानी हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे अपने अपने शहरों में। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो से मुझे बहुत प्यार है, ये बचपन से ही रेडियो मैं सुनता हूँ। 30-35 मोबाइल को ख़राब कर दिया है, सुबह से चालू करते हैं तो रात के 12 के बाद ही बंद करते हैं। लव यू रेडियो, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब भाई 30-35 मोबाइल आपने ख़राब कर दिए हैं, क्या कह सकते हैं। रेडियो विविध भारती भी आप सभी के संग है श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमान की असीम गहराइयों से शुरू होकर धरती की प्यास गोद तक का बारिश की बूंदों का सफ़र प्रकृति का सबसे सुंदर और जीवंत काव्य है। गहरे कजरारे बादलों के झूलों में बूंदों का बचपन पलता है, जब बादलों का सब्र टूटता है तो ये नन्ही बूंदें अपनी अनंत यात्रा पर निकलती हैं। आसमान से नीचे आते हुए बूंदें हवा के अदृश्य हाथों में हाथ डाल कर थिरकती हैं। कभी कभी तो ये बूंदें आसमान में सूरज की किरण से सतरंगी इंद्रधनुष की खूबसूरत चुनर ओढ़ लेती हैं। वो पहाड़ों नदियों पौधों सीप और सागर की जड़ों में समाकर एक नए जीवन को जन्म देती हैं। आसमान का ये अनमोल उपहार धरती को समृद्धि का वरदान देकर उसी में लीन हो जाता है। दो बातें इसमें है शोदाओ, आप उसका जवाब दे दें तो क्या ही अच्छी बात है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बारिशों में क्या इंद्रधनुष आपने देखा है तो आप हमें बता सकते हैं। और एक और है बात ये कि सीप में मोती बंद होता है, लेकिन मोती क्या आपको पसंद है, और वो कौन सा पक्षी है जो बारिश की बूंदों के लिए तरसता है और बैठा रहता है कि कब बारिश होगी, कब पानी मिलेगा पीने को। कलाकार अगर आप पहचाने तो बता सकते हैं श्रोताओं।

मीनू मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे गबन फिल्म से। एक श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरती पानी की बूंदें पहाड़ों पेड़ पत्तियों से टकरा कर धरती में समा जाती हैं, प्रकृति का वातावरण खुशनुमा हो जाता है, सीप में गिरी बूंद चमकती मोती बन जाती है, हमें ये सिखाती है रास्ते में आए हर एक मुश्किलों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि बारिश की बूंदें हमें एक अनमोल सीख देती हैं, वे जितनी ऊंचाई से आती हैं उतनी ही विनम्रता से धरती में समा जाती हैं, न कोई अहंकार न कोई शोर, बस चुपचाप हर सूखी जिंदगी में हरियाली और उम्मीद बो जाती हैं। अगर ये बूंदें अपने बादलों से बिछड़ने का साहस न करती तो शायद धरती कभी इतनी हरी भरी न होती। कभी कभी जीवन में बिछड़ना भी नई शुरुआत का कारण बन जाता है, यही अनंत सफर बादल से धरती, धरती से नदी, नदी से सागर और फिर सागर से बादल, सफर चलता रहता है कभी थमता नहीं। मुझे एक बात बताइए श्रोताओ, क्या आपने ओस की बूंदें देखी हैं और क्या इन्हें पत्तों पर कभी छुआ है, तो ज़रूर बताइए। एक और श्रोता लिखती हैं कि बारिश के मौसम में बादल आसमान में छाए हों और बारिश न हो रही हो तब भी बूंदों का एहसास मन में बना रहता है, जादुई भी है बारिश, संगीत ले आती है, धुआं धुआं सा आसमां बना देती है, बादल भरे भरे गगरी सी छलकाते प्रतीत होते हैं और ऐसे में मन का हाल न पूछो, मन तरल हो उठता है, पिघलते आसमान धरती को कितने सुकून से भर देता है, ये तो हम चारों तरफ की हरियाली देखकर जान जाते हैं।

0: जो मोती हम पहनते हैं श्रोताओं, वो ये बूंद ही तो हैं। क्या आपको ये मोती पसंद आते हैं? अगर पसंद आते हैं तो क्यों पसंद आते हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। अनमोल मोती फिल्म का गीत आपने सुना, और तालाब में कौन सा फूल है ये आपको बताना है। बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया, महेंद्र कपूर की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम भोपाल में तो ज़रूर सुहाना है, लेकिन धूप निकली हुई है और उम्मीद है कि शाम तक बारिश हो, बाकी समय बिताने के लिए विविध भारती ही है। जी हाँ, बारिश तो होनी ही चाहिए, होगी, थोड़ा इंतज़ार तो करना होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पपीहा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से ही संतुष्ट होता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में अयोध्या सिंह हरिऔध की कविता पढ़ी थी, एक बूंद। क्या आपने भी कोई कविता लिखी है श्रोताओं, या बूंद पर कोई पैसेज, कोई इबारत, कोई बात आपने लिखी है तो आप ज़रूर हमसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेन लिली और जीनिया के फूल नज़र आते हैं। जी हाँ, ये वही फूल हैं जिन्हें हम गुलमेहंदी का फूल कहते हैं, और इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, यानी रंग जो होते हैं, कलर बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये किन किन कलर्स का होता है आप चाहें तो बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ज्वेल थे फिल्म का गीत था, देवानंद और वैजयंती माला जी पर फिल्माया गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में हमें सबसे अच्छी वो बूंद जो सीप में जाकर मोती बन गई, बूंद को ये नहीं पता कि उसका सफर कहाँ खत्म होगा, फिर भी वो चलती रही, शायद इसीलिए वो मोती बन गई। जिंदगी भी उन्हीं का साथ देती है जो मंजिल से पहले उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते। और एक और श्रोता ने लिखा है, इसमें बारिश, बूंद, फूल, आसमान, चांद, सितारे, जमीन, मोहब्बत, सीप, मोती, बदरा, आंचल, चेहरा, शीशा, सफर, जिंदगी, रात, पत्थर, दलदल, निर्जन, मिलन और इंतजार जैसे शब्द छुपे हुए हैं।
1: चेहरे से जरा

इस फिल्म का नाम आपको बताना है श्रोताओं, और कलाकार भी आप ही को बताने हैं। संगीतकार मैं बता देती हूँ, ओपी नैयर, और गीतकार SH बिहारी, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ओस की बूंदों को पत्तों पर छुओ तो पत्ता मखमल सा लगता है। जी हाँ, और बूंदें भी तो गायब हो जाती हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि अनमोल मोती फिल्म का लोकप्रिय गीत जितेंद्र और बबीता जी पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि सफर बूंद का अंजाम मत पूछें, सबके नसीब में सीप नहीं होते। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे पपीहे के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रातः बहुत बार पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदें रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल रहती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इंद्रधनुष का दूसरा नाम भी है मेघ धनुष। स्वाति नक्षत्र 22 तारीख से बैठा है, इनका पानी अमृत समान होता है। थोड़ा संचय कर सकते हैं तो करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो शीशे की बोतल में भर कर रखिए, ऐसा ये कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मीनू मुमताज़ पर फिल्माया गया गीत था। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वाति के पानी को पपीहरा पक्षी बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार करता रहता है कि एक बूंद पानी उसके मुंह में चली जाए। एक और श्रोता लिखते हैं कि पपीहा पानी की बूंदों के लिए तरसता है, जो स्वाति नक्षत्र में बरसती बूंदों के लिए चोंच खोले इंतज़ार करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोती दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कल्चर्ड, जो कि मोती की खेती करने पर मिलता है। चातक पक्षी होता है जो एक पावस की बूंद पानी का इंतज़ार करता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, चातक पक्षी की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल वर्षा का जल, विशेषकर स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही पीता है, ये माना जाता है। और इंद्रधनुष सतरंगी होता है। जी हाँ, सतरंगी तो होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से कलर होते हैं ये आपको बताना है। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है, इनके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। और चातक के बारे में कहा जाता है कि वो बारिश की प्रतीक्षा करता है, मोती किसी नहीं प्रिय है, ऐसा ये लिखते हैं। जी हाँ, मोती बहुत सुंदर। हमने आपसे ये भी पूछा था कि मोती आपको प्रिय तो लगता है, लेकिन इसका कोई रंग तो

नहीं होता। तो वैसे कहा जाता है कि काले और सफेद रंग के मोती होते हैं, तो मोती आपको क्यों पसंद आते हैं ये आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सात रंग होते हैं, बारिश में हल्की सी झलक आप इंद्रधनुष की देख सकते हैं और इन्हें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वो बूंद का ही भाग्य है जो सीप में गिरकर मोती बन जाया करती है।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे फिल्म पालकी में, और शकील बदायूं का लिखा ये गीत था राजेंद्र कुमार वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद सितारे गगन के साथ, चांद सितारे बिजली का लेकर हाथों में हाथ, बदली की आगोश से छूट कर पानी की बूंदें जब हैं गिरती, एक सा चेहरा पर तरह तरह के काम करती, सूखी प्यासी धरती पर नवगीत जागती, मिट्टी की सौंधे खुशबू बनकर फसलों की हरियाली लाती, कमल के कोमल पत्र पर बनकर मोती, कभी खोलते तवे पर भाप

बन जाती। स्वाति नक्षत्र की घड़ी में सागर की सीप में आती बनकर अनमोल मोती, एक ही जल के रूप अनेक, जैसे संगत वैसा काम, बदली की ये नन्ही बूंदें दे देती हैं जीवन का सच्चा पैगाम। और कुछ गीत भी इन्होंने पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि सृजन, समर्पण और पुनर्जन्म का शाश्वत उत्सव है। आसमान की असीम गहराइयों से आंचल फैलाई जब नन्ही वर्षा की बूंदें चली तो वो महज पानी का कतरा नहीं बल्कि ख्वाबों का एक समंदर थी। हवा की झोंकों से बातें करती, कभी चांद की चांदनी को सहलाती तो कभी सूरज की किरणों से सतरंगी ख्वाहिशें बुनती। और भी इन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है। आप ये गीत सुनिए श्रोता और बताइए किस फिल्म का है।

फिल्म मधुमति का ये गीत आप सुन रहे थे, जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरी बारिश की बूंदें और धरती का मिलन एक पवित्र प्रेम जैसा है, और सीप में पलने वाले मोती का बदन उसके सच्चे प्यार की अनमोल निशानी है। बारिश की बूंदें जब प्यासी धरती पर गिरती हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, और ये अनमोल और अनोखा मिलन आसमान और जमीन के प्यार को दिखाता है। बारिश की बूंदें और सीप का रिश्ता गहरे भरोसे और सच्ची मोहब्बत का प्रतीक माना गया है, इसलिए सीप उसे अपने दिल में बसा लेती है। सीप अपने दिल का दर्द सहकर भी वो बूंद एक चमकता हुआ सफेद और कठोर मोती बन जाती है, इसलिए बूंदें और सीप का मिलना सच्ची मोहब्बत, समर्पण और अनमोल प्रेम की एक सुंदर निशानी मानी जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बूंद जो बन गई मोती फूल आहिस्ता फेंको, और तमाम गीत इन्होंने

0: पसंद किए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अच्छी वो बूंद है जो सीप में जाकर मोती बन गई। बूंद को नहीं पता था कि उसका सफ़र कहाँ ख़त्म होगा, फिर वो चलती रही, शायद इसलिए वो मोती बन गई। एक और श्रोता ने लिखा है, प्यास लिए मनवा हमारा जो तरसे एक बूंद तेरी दया की, जो बरसे आसमान से आया फरिश्ता, धीरे धीरे से चलो मेरी बाकी हिरणियाँ। और तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर बने रहने की चाहत को त्याग बूंद धरती का रुख करती है, जो किसी भी देवदूत से कमतर नहीं होती, उन्हें भी ये ज्ञान भली भांति रहता है कि एक बार ऊंचाई से नीचे आते हैं उनका मौलिक अस्तित्व बदल जाएगा। कोई बूंद कहीं किसी छातक की प्यास बुझाएगी, किसी बूंद को सीप अपने में संजोकर अनमोल मोती के रूप में उस बूंद का कायाकल्प कर देगी। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, खेत है, वन है, उपवन, नदी, सागर, झरने, पोखर। क्या आपने बूंदों को ध्यान से देखा है श्रोताओं? तो ये बूंदें जो हैं, कई बार जब हम घूमने जाते हैं सफ़र पर, तो जो शीशे होते हैं गाड़ी के या ट्रेन के जो शीशे होते हैं, तो इनमें जब ये झरती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं? और क्या ऐसा सफ़र आपने किया है बारिशों का, या अब भी आप सफ़र पर हैं? ये कौन है कलाकार श्रोताओं जो सफर पर निकले हैं?
1: ना ये जमीन थी, ना आसमां था, ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच

विश्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। सगाई फिल्म से राजेंद्र कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अभी नेपाल के बॉर्डर पर हूँ, यहाँ तो बारिश जमकर हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। तो ये बताइए श्रोताओं, क्या आपको बारिशों का मौसम अच्छा लगता है क्या? एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत दिनों बाद ये गाना सुना, शायद मुस्करा दो। जी हाँ, उस गीत के बारे में ये कह रहे हैं, एक बार मुस्करा दो फिल्म का जो था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि एक बार मुस्कुरा दो फिल्म में तनुजा और देव मुखर्जी नज़र आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एक और श्रोता लिखते हैं कि FM पर सुन रहे हैं, लोगों के उत्तर हमें मोबाइल ऐप से जो है वो मिल रहे हैं, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और अब इन कलाकार को आप पहचानिए।

एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि मैंने देखी है ओस की बूंदें छत पर, जब मैं पत्तों पर बूंद रहती थी उसके उसे हाथ से छूने पर सरक कर नीचे गिर जाती, बहुत अच्छा लगता और इसे देखने के लिए बचपन में जल्दी सोकर उठ जाती थी।

0: मेहर और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा।
1: आखिरी खत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राजेश खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स के लिए, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, रहिए विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। हम यही सोचते हैं कि पिता बड़े कठोर होते हैं, माता बड़ी कोमल हृदय की होती हैं। सच मानिए तो पिता का हृदय बहुत कोमल होता है। ऊपर से वे कठोर दिखते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों की, परिवार की बड़ी चिंता होती है। वे अपने आंसू पी लेते हैं, दर्द छुपा लेते हैं, क्योंकि ये उनका अपना परिवार बनाया हुआ होता है। वे परिवार के वो स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मा होता है। वे अपनी खुशी से पहले बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में कम, कर्तव्यों में अधिक दिखाई देता है। पिता अपनी इच्छाओं का त्याग कर परिवार के लिए समर्पित रहते हैं, जिससे सब खुशी से रहें और होठों पर मुस्कुराहट बिखरती रहे।

दोस्तों, पिता अपने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। उनकी सुरक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन के मूल्यों का आधार बनते हैं। सही गलत का अंतर जीवन की हर समस्या का हल करने वाले होते हैं। उनकी छांव में बच्चे अपने को सुरक्षित पाते हैं। पिता का साथ हिम्मत हौसला देता है। उनके ना रहने पर उनकी कमी का एहसास दिल को झकझोर देता है। पिता विशाल वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी बाहों में शांति, सुकून और स्नेह का आभास होता है। कभी अपने पिता के पास दो घड़ी बैठकर उनके उस प्यार को महसूस कीजिए जिसे कभी उन्होंने आप पर लुटाया था। अपना बचपन अपने बेटी बेटी में जिया था। उनके कंधों पर बैठकर बाजार घूमा, मेला देखा। हर मौसम में वे ढाल बन जाया करते थे।

दोस्तों, पिता और संतान का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव का भी होता है। पिता का प्रेम अक्सर शांत नदी की जलधारा की तरह होता है, जो बिना शोर किए अपने बच्चों के जीवन को सींचता रहता है। पिता अपने पुत्र संग दोस्त की तरह रिश्ता रखता है। पिता अपने बेटे में अपने सपनों, संघर्षों और अनुभवों की झलक देखते हैं। बेटी के साथ पिता का रिश्ता बेहद कोमल, स्नेहमय और भावनाओं से भरा होता है। बेटी के लिए पिता उसका पहला नायक, पहला रक्षक और आदर्श होता है। बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, पिता की नज़रों में वो नन्ही सी परी ही रहती है। पिता का प्रेम दोनों के लिए समान होता है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
2: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य

0: AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @ AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
1: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे, बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मुकेश को आपने सुना, शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: असली नकली फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक तरह।
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म रंगोली का गीत आपने सुना। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार।

हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में छोटी सी मुलाकात फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, रहिए विविध भारती के संग।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने

0: परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्याधिक प्रयोग के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह पंचायत का दौरा कर हाल ही में आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करने का विश्वास दिलाया। विक्रमादित्य सिंह ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने और राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने बोह की सड़क के लिए विभाग के माध्यम से 1 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। विक्रमादित्य सिंह ने चंबी खड्ड पर क्षतिग्रस्त पुल की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से पुनर्निर्माण की प्रगति व प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की ओर से सभी 16 प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत सहायता भी प्रदान की। इस दौरान उप मुख्य सचेतक व स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया भी उनके साथ मौजूद रहे। हिमाचल के युवाओं और उद्योगों को स्वदेशी तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से शिमला सचिवालय में हिमकॉस्ट और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विज्ञान व तकनीकी विभाग द्वारा आत्मनिर्भर यात्रा क्षेत्रीय आउटरीच सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स, उद्योगों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन का शुभारंभ पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंगला ने किया। इस मौके पर सिंगला ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के स्टार्टअप्स, एमएसएमई, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों को टीडीबी की सहायता योजना से अवगत करवाना है। सम्मेलन नव प्रवर्तकों, शिक्षण संस्थानों, उद्योग जगत और सरकारी एजेंसियों के बीच संवाद का प्रभावी मंच भी है। पहल का उद्देश्य टीडीबी की योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, हिमाचल के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों से जोड़ना और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण से औद्योगिक विकास को गति देना है।
1: आत्मनिर्भर बनना हमको है, तो चाहे रिसर्च हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारी जो वर्कशॉप है उसी दिशा में एक कदम, रिसर्च के मामले में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते, तो इसलिए हम इसका रोडमैप भी बनाएंगे।
0: राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने नई दिल्ली संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की। हर्ष महाजन ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न हालात, वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में आई रुकावट और आपदा प्रबंधन की स्थिति से केंद्रीय गृह मंत्री को विस्तार से अवगत करवाया। हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से वित्तीय अनुशासन पूरी तरह समाप्त हो गया है और सरकार ने बिना किसी दूरदृष्टि के प्रदेश को भारी कर्ज के बोझ तले धकेल दिया है। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा को आदिवासी कांग्रेस की हिमाचल इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस नियुक्ति को जनजातीय क्षेत्रों के नेतृत्व और संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नाहन शहर में बरसात के दौरान पुराने और जर्जर पेड़ लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। नगर परिषद नाहन की अध्यक्ष उपमा धीमान ने बताया कि कई सूखे पेड़ों को कटवाने के लिए लोगों ने मांग की है और खतरा बन चुके पेड़ों को चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन व वन विभाग के साथ चर्चा कर आवश्यकता अनुसार पेड़ों की कटाई और ट्रिमिंग करवाई जाएगी ताकि बरसात के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
2: जो भी पेड़ गिरने वाले हैं या सूखे पेड़ हैं, प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि इन पेड़ों की छटनी की जाए और प्रशासन की अनुमति से उन्हें काटा जाएगा या जो भी कार्यवाही होगी उसके द्वारा की जाए।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
1: नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद देशभर में उपजे विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों को सौंपी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराई जा रही है। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कानून व सुरक्षा उपाय लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 आज सदन में पेश किया। इस विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों से जुड़े अपराधों के लिए सजा और जुर्माने को और कड़ा करने, संगठित परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई, फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा दोषी संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने जैसे प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। अब इस पर लोकसभा में चर्चा होगी, जिसके बाद सदन विधेयक को पारित करने पर निर्णय लेगा। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को सदन में पेश किया। ये संशोधन विधेयक वर्ष 2024 में लागू किए गए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कानून को और अधिक कठोर बनाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से जुड़े अपराधों के लिए सजा का दायरा बढ़ाया गया है। साधारण मामलों में न्यूनतम सजा 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है, जबकि गंभीर मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि कठोर दंड व्यवस्था से परीक्षा प्रणाली में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। विधेयक में संगठित परीक्षा माफिया और सिंडिकेट के खिलाफ भी कड़े आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी संस्था, संगठन या गिरोह की संलिप्तता सिद्ध होती है तो उसकी संपत्ति जब्त या कुर्क करने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सरकार का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना ही नहीं बल्कि परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े संगठित नेटवर्क की आर्थिक संरचना को भी समाप्त करना है। संशोधन विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव है। इन विशेष अदालतों में परीक्षा संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी और सरकार ने ऐसे मामलों का निस्तारण 3 महीने के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया लंबित रहने की समस्या कम होगी और दोषियों को शीघ्र दंड मिल सकेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कानून का उद्देश्य सामान्य और ईमानदार छात्रों को दंडित करना नहीं है। प्रस्तावित प्रावधानों में उन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा पर विशेष बल दिया गया है जो किसी प्रकार की धोखाधड़ी या पेपर लीक में शामिल नहीं होते। कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य वे व्यक्ति, गिरोह, संस्थान और संगठित नेटवर्क होंगे जो परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित कर लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह इस संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी। इसके बाद इसे संसद की मॉनसून सत्र के विधायी कार्यसूची में शामिल किया गया। सरकार का कहना है कि आधुनिक के लिए मौजूदा कानून में संशोधन आवश्यक हो गया था। हाल ही के वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं को प्रभावित किया है। इन घटनाओं के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, दोबारा आयोजित करनी पड़ी और अभ्यर्थियों को मानसिक व आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि नया संशोधन ऐसे अपराधों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करेगा और भविष्य में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को और मजबूत बनाएगा। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
2: FM वैड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजे

0: का 10 मिनट हुए हैं, लीजिए अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद उठाइए।
1: अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका पहला भाग।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी।
3: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय।
4: सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा। फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है, मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है।
5: 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं। ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे।
4: अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपए मैं दे ही दूंगा, यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं।
5: मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे?
4: अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा।
5: अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे?
4: अब एक सप्ताह में दे दूंगा।
5: अच्छा, स्वीकार है, 1 सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे।
4: अब नहीं, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं, इतनी बस इतनी प्रार्थना है आपसे।
5: खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार न रहेगा। हाँ,
6: मनोहर सिंह की आयु 55 के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है, वो संसार में अकेला है। गांव में 2-1 दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न कहीं जाता है, दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। 1 वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई, ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए, ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर

0: बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है। मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है। मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है। इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदायी प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला,
1: यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था। मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है, इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है। तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है।
0: उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा,
2: चाचा किससे बात करते हो, यहां तो कोई है भी नहीं।
1: क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं। तुझे तो बेटा मालूम ही है कि परसाल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं। वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते, मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या, बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं।
2: चाचा जाने भी दो।
1: पर बेटा समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूं पर अब भी 4-6 के लिए बहुत हूं। जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा 100 बात की एक बात तो ये है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है। चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं, ये भी एक लड़ाई ही है। अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा। उनका रुपया

0: गले बराबर है। भगवान जाने मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा लें और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं।
1: चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है? पेड़ कटवाने को कहते हैं काट लेने देना, इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है? पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं।
0: अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है। मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निबोलियां खाई हैं, इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है? दूसरे मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती।
1: चाचा बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता।
0: बेटा ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया, किसी ने उधार न दिया। क्या करूं क्या करूं बेटा तेजा? सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था, खाता था, ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा।
2: बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था।
1: चाचा बापू से ये हाल कहाँ है?
0: सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और दो दो तीन तीन दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है।
1: कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है?
0: 25 रुपए देने पड़ेंगे।
1: 25 रुपए तो बहुत है चाचा।
0: पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं, होते तो थोड़े थे।
1: 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता।
0: अरे बेटा भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे, तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर देखा जाएगा, पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा।
3: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी इस कहानी का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते।
4: जब कोई कहानी सुनते हैं दीपा और वो अधूरी सी रहती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है मन में कि आगे क्या होने वाला है।
5: बिल्कुल।
4: तो हमारे श्रोताओं के मन में भी ये उत्सुकता जरूर रहेगी। इसके लिए आप जरूर सुनिएगा कहानी का अगला भाग, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए।
5: चलिए।

हमें अपने श्रोताओं से लेकिन बहुत प्यार है, और अब कार्यक्रम में हम उनके संदेश पढ़ेंगे, आगे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: तो भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है दीपा.
1: यही बात हम कर रहे थे श्रोता, अभी हम दोनों सखियाँ यहाँ बैठे, कि अगर जीवन में भरोसा ना हो ना, या

0: कहें कि स्टूडियो में एक दूसरे पे भरोसा ना
1: हाँ,
0: तो ये अगला जो जो एक घंटा जो साथ हम रहते हैं और आप सबके साथ रहते हैं तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें, हम तो हमेशा यहाँ पे कोशिश होती है अपने इस परिवार की कि अच्छी साफ सुथरी और सकारात्मक बातें हों।
1: और हमें पूरा भरोसा होता है कि जब हम कोई विषय बता रहे हैं तो फेसबुक पर श्रोताओं के संदेश भी बहुत अच्छे आएंगे और वाकई बहुत अच्छे बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और दीपक बताएं तुम्हें कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिन पर हम भरोसा बहुत करते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी सामने आ जाती हैं कि भरोसे में दरार भी पड़ जाती है। और कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करता है तो सामने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस भरोसे को पूरी ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी से निभाए, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल यही। और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से दुख ना पहुँचे, तो ये एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है चंचल कि हम सबसे प्रेम करें लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और सभी रिश्ते फिर चाहे वो कारोबारी हो या पारिवारिक हो उनमें स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे।
1: हाँ।
0: और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ना ढेर सारा प्यार।
1: ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विश्वास, भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, ये केवल शब्द नहीं होते दीपा, लेकिन जीवन की नींव कह सकते हैं हम इन्हें, और हमारे रिश्तों की पूंजी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निजी तौर पर या व्यवसायिक तौर पर दोनों ही स्तरों पर अगर इसे हम देखें तो शब्द से ज़्यादा जोर शायद ही किसी और बात पर दिया जाता होगा। कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो लेकिन अगर वो किसी का भरोसा नहीं जीत पाता है तो उसकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं होता। और उसके करियर की बात करें या निजी जिंदगी तो उनमें भी मुश्किलें आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
0: बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ये भरोसा आता कहाँ से।
1: हाँ।
0: और किसी पर भरोसा किस तरह किया जा सकता है, तो कोई इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास भी शायद ना मिले। लेकिन इसके जवाब में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अचानक से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
1: ये तो बात सही
0: बल्कि
1: है।
0: कई बार तो किसी के साथ काफ़ी समय बिताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं आता।
1: और ये हम उस इंसान के व्यवहार से ही जानते हैं कि इतने समय से हैं, लेकिन हर बार हम उनकी ऐसी कोई बात देखते हैं उनके व्यवहार में कि हमने भरोसा किया था कि हाँ शायद ये चीज़ ठीक होगी, लेकिन हमें उसके विपरीत जब चीज़ें मिलती हैं तो वो भरोसा टूटता है। कस्में खाना, रस्में निभाना, ये वो चीज़ें नहीं जिनसे भरोसा जीत लेंगे किसी का, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कब कहाँ कितनी मुश्किलें आईं और किस तरह से आप इनसे बाहर निकले थे, और जब आप मुश्किल के समय में थे तो आपके भरोसे का साथ किसने दिया और आपका साथ किसने छोड़ दिया। ये बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: बिल्कुल। और क्या कभी हम में से किसी ने भी कभी ये सुना है कि दो जो अनजान व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के शत्रु बन गए?
1: हाँ।
0: ऐसा नहीं होता है ना।
1: बिल्कुल नहीं होता।
0: क्योंकि अपरिचित कभी शत्रु होते ही नहीं, शत्रु वो बनते हैं जो पहले कभी मित्र रह चुके हों।
1: बहुत सही बात कही
0: है ना।
1: तुमने,
0: या फिर उनके साथ किसी तरह का हमारा कोई संबंध जुड़ा हो।
1: हाँ।
0: इसलिए जब आपस के जो दो लोग के बीच में संबंध चाहे कोई भी हो उन्हें जोड़ने वाला पुल जो होता है वो होता है क्या?
1: भरोसा, यानी विश्वास।
0: हाँ,
1: बहुत सही बात।
0: और जिसकी देखभाल करना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये भरोसे का पुल टूट गया तो दोनों व्यक्ति दो अलग अलग छोर पर हमेशा के लिए रह जाते हैं।
1: दीपा बहुत सही बात बता रही तुम। भरोसा टूटने की बहुत बड़ी वजह हो ये ज़रूरी नहीं होता। बहुत छोटी छोटी सी बातों पर ही भरोसे टूट जाते हैं। इसीलिए जितना भरोसा हम दूसरे से चाहते हैं ना वैसा हमें दूसरों के प्रति रखना भी चाहिए। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए किसी रिश्ते को दाव पे लगा देना, किसी का भरोसा तोड़ देना, ये सच में बहुत गलत बात होती है। और केवल एक सॉरी जो शब्द है वो कह देने भर से या माफ़ी मांग लेने से आपको भरोसा वापस मिल जाएगा, माफ़ी मिलेगी, ये भी ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घाव भी बड़े गहरे लगते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चंचल। और हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमारा भरोसा बहुत पक्का बहुत गहरा होता है, जिनसे हमें ये उम्मीद कतई नहीं करते कि कभी वो हमारे विश्वास को कभी भी किसी भी जीवन के मोड़ पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो ही लोग विश्वास को चोट पहुँचाते हैं तो आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी भरोसा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब विश्वास को चोट पहुंचती है तब भावनाओं को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर मन में ये संशय या कभी शक जो होते हैं वो रिश्ते
1: हाँ,
0: को तोड़ देते
1: हैं।
0: इसलिए अगर भरोसा करें तो संशय कभी ना करें।
1: बिल्कुल। कई बार तो भरोसा टूटने के लिए जो हम बहुत ज़्यादा शक करते हैं ना किसी पर, ये भी वजह

0: बन जाता है।
1: और किसी का विश्वास शायद हम आसानी से जीत भी लें, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बरकरार रखना, हमेशा उसे निभाना।
0: तो बिल्कुल, हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी भरोसा है कि हम गीत भी सुनाएंगे, उनके संदेश भी पढ़ेंगे। तो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे।
1: और ये भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
0: हाँ।

0: भाई श्रोताओं का भरोसे पर जो उन्होंने लिखा है, बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मिले हैं। हमारे श्रोता का लिखना है कि भरोसा रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। अपने शब्दों को निभाएं, सच बोलें और मुश्किल समय में साथ दें। याद रखिए, भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बहुत सही बात है,
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश आया है, ये कहता है कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना किसी भी मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव है, यानी एक सिक्के के दो पहलू जैसा होना। हमेशा सत्य के साथ चलिए, सच का साथ दें, जो बात या वादा किया हो उसे निभाना पड़ेगा। और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोच विचारने का कि समय थोड़ा ले लीजिए और ये जान लीजिए कि वो आपके लिए उचित है या नहीं।
0: और जो इन्होंने लिखा ना कि वादा निभाना चाहिए, तो या तो आप वादा कीजिए ही मत, और अगर आपने कर दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वादा टूटे ना, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो बाकी दुख पहुंचता है।
1: और भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो उसको क्षण भर में भरोसा टूट जाता है, लेकिन बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है।
0: और उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करने के लिए शायद, मैं तो कहूँ कई बार होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसके लिए बहुत बहुत बहुत समय लगता है। तो ऐसा काम ही नहीं करें हम कि

0: सी नौबत आ जाए। अगले संदेश में हमारे श्रोता ने एक अच्छी सी बात लिखी है कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए, तो अपने तो आखिर अपने होते ही हैं, अपनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए और खुद का भी व्यवहार दूसरों से ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहे।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमें भरोसा है विविध भारती पर, क्योंकि वो हमें वो बहुत भरोसेमंद समर पर उठाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। इसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। भरोसा करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसेमंद बनिए। भरोसा दिया भी जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद बनने का सम्मान केवल कर्मों से मिलता है।
0: क्या बात है, चलिए भी गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: हम बात कर रहे थे चंचल
1: भरोसे की,
0: भरोसे की, और बहुत सारे संदेश आए हैं। आगे उसमें ये लिखा है हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज़ दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा।
1: क्या बात है।
0: और एक और संदेश कुछ इसी शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं, भरोसा टूटने पर बिखेरते हैं।
1: बहुत कहते हैं ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है।
0: बिल्कुल।

0: और एक और बड़ा अच्छा संदेश है इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पड़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए लेकिन अंततः इंसान इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनकर हत्या लेता है तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ पर ये बात किसी को बताना मत, लोगों को गरीब बेसहारा लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत अच्छा संदेश देती है ये कहानी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। दूसरों पर भरोसा करना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके।
0: इसी तरह से एक और संदेश है, इसमें हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं एक घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा, पर ना तो वो आया और अब उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो मेरा तो उस पर पक्का विश्वास था लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उत्सुकता जागी कि इनका अगर रेडियो नहीं बज रहा था तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किस माध्यम से इन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना और ये संदेश भी लिख पाए।
1: तो ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और हम ये उत्सुकता हमारी अगर पूर्ण हो जाए तो क्या ही बात है।
0: और बरसात की जब बात करते हैं तो हमें खुद पर ये भरोसा रखना होगा कि कोई और मदद करे ना करे, हम अगर अपनी मदद करेंगे तो जो बिजली से होने वाले नुकसान हैं, खासतौर पर बारिश में बिजली हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, उससे हम बच सकते हैं। तो
1: बिल्कुल, एक संदेश में बहुत सारे संदेश आए हैं बिजली को लेकर के। तो ये कहता है एक संदेश कि बारिश में बिजली से सावधानी रखना जरूरी है क्योंकि लगभग ये देखने में आता है कि बिजली या तो किसी पेड़ पर गिरती है या पशुओं पर भी गिर जाया करती है। पहले के समय में यह धारणा रही थी कि कांसे के बर्तनों में ज़्यादा गिरती है, पर यह एक पुरानी धारणा है। कुछ लोग आजकल ऐसी एक धारणा रही है कि बरसात होने के समय कई रिश्तेदारों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन वो सब चीज़ों को अलग छोड़ कर के ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कहीं आग के पत्ते कुछ घरों में रखते हैं वर्षा के दिनों में ताकि बिजली गिरने का बचाव हो सके। लेकिन हमारी ये श्रोता कहती है कि सारी पुरानी बातें हैं। और इसी तरह से हमारे एक और संदेश आया है, ये संदेश कहता है कि बारिश के मौसम में गीले हाथ से स्विच को न छुएं, टूटे हुए तारों से दूर रहें, यदि टूटे हुए तार आपके घर के नज़दीक पाए जाएं तो बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें और बारिश में भारी आंधी तूफान के दौरान संवेदनशील उपकरणों को तुरंत अनस्विच कर दें यानी बंद कर दें। और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो बिजली के खंभों से या स्टे वायर से उनको बांध के ना बांधें। यदि आप रेलवे या मेट्रो में सफ़र करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर फिसल न जाए इसका ख्याल रखें, बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें, कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े खड़े कभी भी सफ़र ना करें।
0: और घर में जो अर्थिंग के तार होते हैं कई बार देखते हैं हम तीन तार होते हैं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: नेगेटिव पॉजिटिव और एक अर्थिंग का तार होता है, तो अर्थिंग का तार ज़रूर होना चाहिए आपके घर में और उन वायर्स को खुला ना छोड़ें ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों में दीवारें गीली होती हैं और कई बार हम खुद भी भीगे हुए होते हैं, गीली ज़मीन पर खड़े हैं, स्विच केवल ऑन करने जाते हैं तब भी झटका सा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल,
0: एक संदेश में लिखा है कि बरसात में बिजली से बचने के लिए खुले तारों, खंभों और पानी से रास्तों से दूर रहें, गिरे हुए तारों के पास बिल्कुल ना जाएं, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और मेटल या ग्रिल की बैरिकेड को ना छुएं, रास्ते में टूटे हुए तारों को कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर रहें, जलभराव वाले रास्तों पर ना चलें क्योंकि इनमें करंट आ सकता है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं और अब हम एक गीत सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: हमारे बहुत श्रोताओं के बहुत सारे संदेश आ रहे हैं जिसमें सरसों का साग बनाने की विधि है, तो इसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार बताई गई है। हरी भाजियाँ, सरसों का साग एक गड्ढी, पालक एक गड्ढी, बथुआ एक गड्ढी, मेथी एक गड्ढी, मूली के पत्ते 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। और अन्य सब्जियाँ भी आप ले सकते हैं, इसमें मूली, छोटा सा शलगम, फूल गोभी के डंठल और कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 6-7 लहसुन की कलियाँ लेनी है, हरी मिर्च 4 से 5 लेनी है, नमक स्वाद अनुसार लेना है और थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा डालना है, वो 2 से 3 चम्मच होगा। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च 2 से 3 और परोसने के लिए थोड़ा सा सफ़ेद मक्खन। और इसे बनाना कैसे है?
1: सभी भाजियों और सब्जियों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें बारीक बारीक काट कर कुकर में इन सबको नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर 2-3 सीटी ले लें मध्यम आँच पर, और कुकर का जब प्रेशर ख़त्म हो जाए तो सब्जियों को ठंडा होने दें। अब मथनी के मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लें और घोटे हुए साग में मक्के का आटा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक लगातार पकाते रहें ताकि साग अच्छे से गाढ़ा हो जाए, मक्के के आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें, इसे इसमें आप हींग, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं, बचा हुआ बारीक कटा अदरक और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक तड़के में तैयार किया हुआ साग डालें और 2 मिनट के लिए और आप भी धीमी आंच में पका लीजिए ताकि मसालों की खुशबू साग में अच्छे से उसमें समा जाए।
0: जी, और बिल्कुल बस इसे गर्मा गर्म परोसिए तो जो खाने वालों का मन है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। साथ में मक्के की रोटी भी परोसनी है, उसे बताने का तरीका जो बताया गया है, ये पीले मक्के के आटे से बनी हुई एक चपटी पारंपरिक रोटी है और इसे थपथपाकर बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छी बनती है, ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। और

0: परोसने के तरीके में इन्होंने लिखा है कि थाली को अध पके गुड़, हरी मिर्च, सिरके वाले प्याज और सफ़ेद मक्खन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, तो आप अगर आप गर्म पानी में बनाते हैं तो इसे बेलना बड़ा आसान
1: हो जाता है। और अगर आप बेल ना पाए तो हाथ से छोटी छोटी थपके करके छोटी साइज में भी बनाएंगे तो भी बन जाता है।
0: और छोले भटूरे में हम काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोले कुलचे जब बनाते हैं तो सफ़ेद मटर से वो छोले बनाए जाते हैं, जिन्हें छोले कहा जाता है। और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में मैदे के जो कुलचे बनाए जाते हैं वो तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो वो जिस तरह से पिज्जा का बेस हमने देखा है ना, उस तरह के ब्रेड की कुछ शेप में होता है,
1: बिल्कुल
0: उन्हें कुलचे कहा जाता है, जो तैयार मिल जाते हैं बाजार में। तो इस तरह से आप छोले कुलचे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। और अब चलते चलते एक गाने की झलक सुन लेते हैं।

0: हम माफी चाहेंगे, आज समय कम होने के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सके हैं। चलते चलते आपसे विदा लेते समय बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और दीपा महेश्वरी का। नमस्कार, नमस्कार।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का।
2: नमस्कार।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
2: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
1: जी।
2: काफ़ी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीज़ें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने ज़माने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
1: जी जी।
2: तो अगर मैं ऐसी जगह पर सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफ़ी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज़ मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या बात,
2: शुक्रिया एक बार और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफ़र है, ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
2: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था।
1: ओके।
2: मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली।
1: हाँ हाँ।
2: और मैंने बीएससी भी लिया था और दो साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी।
1: ओके।
2: अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी। लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको ख़त्म करना है, वरना ना करें तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी।
1: बिल्कुल।
2: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ पहले साल तो काफ़ी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए
1: जी जी,
2: क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता
1: जी जी।
2: पहले साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको एक साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है। क्योंकि आप इंसानों के साथ बाद में, आप उनकी ज़िंदगी के साथ या किसी भी चीज़, उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए और आँख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए हैं
1: जी जी।
2: खुद की प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूँ अभी तक इसके अंदर।
1: ये जो आँखों के डॉक्टर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट,
2: जो टिपिकल टर्म है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है
1: जी।
2: ऑप्थेल यानी आए, तो आई सर्जन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है
1: जी। इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
2: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 5-7-8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं
1: जी। बिल्कुल।
2: जैसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए ना जगह है ना खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले ज़माने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज़्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आँख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविज़न तो शायद 70s-80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज़्यादा आँख का काम नहीं था। प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी

0: ज़्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम हैं, आँख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आँख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज़्यादा। पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने, तो वो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या
0: जी
1: आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है।
0: ड्राइनेस रूप है इसका। एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज़्यादा ध्यान दे के देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है। जो आँख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली अपने आँख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आँख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आँख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आँख का गीला रहना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो कीकी है आँख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठें और काम करते रहें तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है। जो आँख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आँख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है और आँख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आँख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूँ कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं, कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आँख, 1 मिनट के लिए आँख बंद कीजिए,
1: वो
0: कहीं
1: कोई
0: दूर देखिए।
1: फॉर्मूला बताया गया
0: ट्वेंटी
1: ना
0: ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्मूला है,
1: जी।
0: अब कौन फॉलो करता है भगवान जाने, कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन
1: जी
0: एक जनरल है कि आप 1 घंटे में एक टाइम तो एक 2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना।
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता
0: और
1: है।
0: दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो एलईडी है, पहले एलसीडी थे,
1: जी
0: कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक एलसीडी स्क्रीन्स थे, अभी एलईडी स्क्रीन्स आए हैं, और एलईडी स्क्रीन्स जो हैं उनमें हम ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं।
1: वो
0: जब
1: ज्यादा
0: जब
1: चमकीली होती है
0: ज़्यादा चमकीली रहती हैं तो उसका
1: जी
0: जो ब्राइटनेस रहता है, तो ग्लेयर जो आता है, उसके वजह से तकलीफ़ ज़्यादा होती है।
1: जी

0: आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं?
1: सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर दर्द
0: जी,
1: क्योंकि आप एक आसान चीज है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है, अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है, जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो थक जाते हैं और वो थकने के बाद फिर वो सरदर्द देने चालू होते हैं। सो सरदर्द भी एक है, और हमारे पास पेशेंट आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सरदर्द के लिए।
0: अच्छा।
1: और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है, हम अभी काफ़ी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं कंप्यूटर्स के लिए भी,
0: जी,
1: बच्चों
0: जी।
1: में भी देते हैं जिससे आँख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं।
0: जी
1: तो यही है कि हेडेक्स जो है वो बहुत कॉमन है, इरिटेशन आँख में, खुजली आते रहती है आँख में, क्योंकि आँख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग ये हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज़्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे जिनको इसके वजह से तकलीफ है, बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है? क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं।
0: ओके।
1: अब समझिए, जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, आप शुरुआत तो कर लेंगे, आराम से चलते जाएंगे, लेकिन
0: सस्टेन करना मुश्किल
1: होता है। तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक जाती
0: वो भी थक जाती हैं।
1: जी,
0: क्या बात है। तो ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना मुश्किल है, हमें ये मान लेना चाहिए कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं होगा। तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आँख के स्ट्रेन होती है, सिरदर्द होता है, ये कुछ चीज़ें आई। एक चीज़ जो मैंने कुछ लोगों में देखी है वो आंखों में कोई प्रेशर होता है, जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है?
1: नहीं नहीं आंखों में, सभी के आंख में प्रेशर है।
0: जी जी।
1: अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाएं तो यू विल फील, जो शेप जो रहता है
0: जी,
1: वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं, बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं।
0: जी जी।
1: वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है, वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है, जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजुअली 80-120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12-18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम BP मेजर करते हैं वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है जिसको ग्लॉकोमा कहते हैं।
0: जी जी।
1: ग्लॉकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है, काफ़ी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है।
0: अच्छा।
1: हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन के वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है।
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: एक अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज़्यादातर माँ बाप से आती है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं उनका शेप साइज उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज़ वगैरह उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज़्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट, ऐसे नहीं है

0: बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है, लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज़्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आँख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे अब आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका बीपी भी चेक करेंगे, अब हमारे पास आइए आपका आँख का प्रेशर हम चेक करेंगे।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उस बीमारी में, वो आँख में सबसे खतरनाक बीमारी है
1: जी,
0: ग्लोकोमा जो है। मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूँ आपके सवाल से, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ग्लोकोमा जो बीमारी है वो आँख में सबसे खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आँख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए। आँख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती है।
1: ओ गॉड
0: तो
1: जी,
0: क्योंकि आँख का जो एक सिंपल चीज़ है, जो अपनी जो नस है वो आँख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आँख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहाँ पे लाइट पड़ती है, वहाँ से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो ख़त्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है कि
1: ओके,
0: आँख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है,
1: सूख जाती है।
0: सूख जाती है, और उसका कोई इलाज नहीं है।
1: ओहो,
0: अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है।
1: तो रोशनी गई।
0: रोशनी गई
1: एक उम्र के बाद,
0: जी,
1: चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे
0: जी
1: हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए।
0: अगर एक चीज़ है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है, तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराएं,
1: उसका
0: और
1: फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए?
0: साल में एक टाइम
1: जी
0: बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं, जैसे अगर आप, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज़ है तो आप चेक करवाएंगे ना,
1: जी बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल,
0: सेम चीज़ है,
1: कॉमन सेंस ये
0: कॉमन
1: आप
0: सेंस
1: लोगों
0: है।
1: के, तो ये
0: चालीस
1: हमें दिमाग में बिठा लेना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में ये हो ही जाता है,
1: जी
0: लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है कोई तो आपको आनी ही है।
1: हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं।
0: संभावना 50% है माता के साइड से या पिता के साइड से,
1: जी,
0: सेम डायबिटीज़ में है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज़ है तो ऐसे ही नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहाँ पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता। हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज़ नहीं, मुझे कहाँ से आ गया, जेनेटिक्स भगवान जाने कहाँ से आ गया,
1: सही
0: कहीं
1: बात है,
0: मामा मामी दादा दादी नाना नानी
1: कहीं
0: कहीं
1: से
0: से भी आ
1: भी,
0: सकते हैं।
1: पूरे फैमिली
0: तो
1: ट्री में।
0: बीमारियां जो हैं वो जो जेनेटिकली आती हैं हमको, विरासत में बीमारियां तो ज़्यादातर आती हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से ही अगर पता चले कि पेशेंट है, ज़िंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीज़ में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लोकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, 6 महीने 1 साल उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक 2 घंटे निकालिए, सिंपल।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं, और जिनको नहीं है वो भी
0: वो भी
1: एक उम्र
0: जांच
1: के
0: कराए
1: बाद
0: जी
1: ज़रूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आँखों का
0: जी
1: प्रेशर
0: जी
1: वगैरह, जब भी आप अपने आँखों का नंबर चेक कराने जाते हैं।
0: जी
1: यहाँ
0: सही
1: एक
0: है।
1: दिलचस्प बात यह है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मज़ेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आँखें चेक करता है?
0: बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा।
1: जी
0: देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया।
1: जी
0: डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे
1: हाँ
0: जनरेशन में, तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूड़ी में पेशेंट को हम लोग देते थे, अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शंस आ गए हैं।
1: जी
0: तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है,
1: जी
0: लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहाँ पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए।
1: जी
0: अभी काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को
1: जी,
0: पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहाँ पे गया चश्मे वाले की दुकान में, कहा हम मुफ्त का आपके आँख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, अभी मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है?
1: पेशेंट की, बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है।
0: एक बात, मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछना हूँ कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ये गलत है, मैं आपको दूसरी देता हूँ, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से?
1: नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे।
0: Exactly.
1: कि ये दे रहा है, मैं लूं कि नहीं लूं।
0: Exactly. तो अगर ये ऐसे है तो आँख के बारे में भी वही है, आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं
1: जी,
0: मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफी वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन
1: डॉक्टर नहीं है।
0: डॉक्टर नहीं है जी, ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है। हाँ, वो पैरामेडिकल कोर्स है, आई एम नॉट बिलिटलिंग इट, वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है, मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफ़ी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आपके आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आँख की पूरी जाँच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जाँच होती है, चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है
1: जी।
0: लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था, लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये है। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहाँ पे आप काम करते हैं उनको भी होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मेरे हिसाब से तो आँख का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, वो परफेक्ट होने चाहिए।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, ये सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं
0: जी।
1: ये जो है ये मुसीबत की जड़ है
0: जी,
1: इससे
0: जी,
1: बचना चाहिए।
0: नहीं, टू ईच देयर ओन, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीज़ें तो ऑफकोर्स, बाकी कोई भी आँख की समस्या हो तो आँख के डॉक्टर के पास तो ज़रूरी आना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब भी आँखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता
0: जी,
1: और दूसरी तरह की भी जांच होती है, वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: वो बिठाया जाता है बहुत देर।
0: देखिए, ये एक साइंस है
1: जी,
0: जो आँख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि आप, और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना, ज़्यादातर लोग आते थे दूर का चश्मा नहीं है या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप काम क्या करते हैं, कोई भी हो, बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफ़ी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6x6 या 20x20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या?
1: नहीं।
0: शहर में किसको 20x20 परफेक्ट विजन चाहिए, आप बताइए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का या 50 साल पहले का कंसेप्ट है
1: जी, जी जी,
0: लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम, हम चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं
1: जी,
0: उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफ़ी टाइम पूछा जाते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज़ कहते हैं हम पे घर पे हैं, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूँ घर पे करते क्या हैं। काफ़ी लेडीज़ घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो यू नो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत
1: जिम्मेदारी
0: और काम रहते हैं उनका भी। तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे नहीं बोल सकते कि आप घर बैठ रहे तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बातें आंखों की हो रही हैं तो गाने भी आंखों के होने चाहिए।
0: अच्छा,
1: तो यहाँ गाना सुनते हैं।
0: ओके, जरूर,
1: है ना।
0: थैंक यू।
1: आंखों में क्या जी फिल्म का नाम? 9-2-11।
0: 9-2-11, बहुत बढ़िया।

0: डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम आजकल बच्चों को काफ़ी आंख के प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी पकड़ रहे हैं, बिकॉज एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है पेरेंट्स
0: जी,
1: में
0: जी। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: उसके वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गांव में भी इट इज़ वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और चश्मा नहीं दे रहे हैं. लेकिन एक सीधी चीज़ है, देखिए, देखने के लिए अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नज़दीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके भाई, तो लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नज़दीक लेके पढ़ रहा है, तो ये एक चीज़ होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज़्यादा नज़दीक ले रहा है. ये दूसरी चीज़ है, टीवी के नज़दीक जाना या तो बहुत नज़दीक से लेके पढ़ना. तीसरी चीज़ है, काफ़ी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फ़र्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए. तो अगर दोनों आंख में नंबर का फ़र्क हो तो जो दिमाग है उसको वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है, तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है वो एक आंख को अंदर ले लेता है, तो जो हम आंख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है. और अगर नंबर बहुत ज़्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है इस आंख से देखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो आंख बाहर निकल जाती है. आपने दोनों देखा रहेगा, बच्चों में एक आंख अंदर आते हुए या एक आंख बाहर जाते हुए.
1: जी,
0: तो ये जो है, अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है.
1: और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नजर रखना चाहिए, पैदाइशी कोई दिक्कत है?
0: पैदाइशी दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है
1: जी
0: मैटरनिटी के बाद, लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा, या तो बच्चे की जो प्यूपल रहती है जो कि बीच की किकी रहती है उसमें कोई सफ़ेदी वगैरह उनको दिखाई दे, तो पता चले कि आँख में कोई ज़रूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए.
1: जी कई बार तिरछी आंखें होती हैं, तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
0: वही कह रहा हूँ, तिरछी आंखें जो है जिसको स्क्विंट कहते हैं, जो आपको मैं कह रहा था,
1: जी
0: तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है ज़्यादातर, कमज़ोरी के वजह से भी होती है, अगर दोनों आंख में से किसी आंख के मसल्स कमज़ोर हो तो वो आंख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं. शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है, अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है, अगर नंबर से भी उसके साथ भी आजकल काफ़ी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं जिसके वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि गेम्स की तरह रहते हैं लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं, अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आँख को सीधी की जा सकती है,
1: जी
0: जो स्क्विंट सर्जरी कहते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हमने ये तो देखा कि आंखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना चाहिए, और वो तमाम चीजें हैं, पर पोषण से जुड़ी चीजें कौन सी हैं जो खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम अडल्ट्स की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आंखों की सेहत बेहतर है?
0: मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है. मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ,
1: जी
0: वरना हर रोज खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता. एक नॉर्मल पोषण बहुत ज़रूरी है जो हम
1: जी
0: करते हैं, और अगर हम देखें अपने देश में किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है, जिसको
1: जी
0: संतुलित आहार कहते हैं.
1: बिल्कुल
0: आप कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है,
1: बिल्कुल
0: जिसके
1: बिल्कुल
0: अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है. अभी आपके लिए, इसके लिए आपको डायटिशियन या साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है.
1: जी
0: तो टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल नहीं होता, और दूसरी बात है पानी पीना बहुत ज़रूरी है. आज देख रहे हैं कि वापस उसकी वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, सभी बाहर जाइए बम्बई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है. पानी के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा, बढ़िया है, आपका उतना ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है, आजकल मैं देख रहा हूँ क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल। आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे PhDs आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे
1: विद्वान और लोग हैं।
0: बहुत ही हमसे बड़े PhD हैं सारे
1: जी।
0: अब बीच में ही मैंने कहाँ पे एक पोस्ट देखी थी जहाँ पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियाँ ऐसे रगड़ो तो आपके आँख का नंबर चले जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा
1: ओके
0: डॉक्टर साहब अगर हम आपकी ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे मतलब कर लगे रहो बोला कितना टाइम मतलब लगे रहो आप ही आप मुझे आके बताओ तो मजाक की बात हुई लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आर लो तो ये होगा, ये ना लो तो वो होगा। एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है कि वेस्ट का ही जो है वही सही है, यही डाइट सही है, GM डाइट हो या ये डाइट हो, नहीं अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है
1: बिल्कुल,
0: उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, आपको और कोई डाइट की ज़रूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा कचौरी खाएं, बड़ा पाव खाएं, पाव भाजी खाएं, जलेबी खाएं, तकलीफ तो होनी इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले प्रॉब्लम तो होना ही है आंखों पे इतना ज्यादा। हाँ डायबिटिक्स में आप जो कहते हैं
1: जी,
0: जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो
1: उसके
0: तो
1: लिए अलग तरह की सावधानियां,
0: उसकी अलग तरह की सावधानियां
1: जी। डॉक्टर साहब चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल।
0: अच्छा इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूँ। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें?
1: कंफर्ट।
0: जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ लुक ज़रूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके, माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहाँ से।
1: जी जी,
0: देखिए जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया तो
1: जी,
0: पहले तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। ऐसे नहीं है, एक बात और गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के अब कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने कहा जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है
1: बिल्कुल।
0: दूसरी बात ऑल्सो जैसे मैंने कहा आजकल का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा काम करता है। और तीसरी बात है आँख का नंबर आँख के शेप और साइज के ऊपर आता है
1: जी।
0: वो आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह। अब आप मुझे बताइए अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था तो माँ बाप ने जाके वहाँ पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया?
1: हाँ बिल्कुल, तो फिर आप
0: तो
1: ये भी सवाल नहीं उठा सकते।
0: नहीं सवाल नहीं, समझना जरूरी है, सवाल तो जरूर उठाइए
1: जी जी।
0: हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं कौन सी है? जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूँ, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते।
1: ओके बिल्कुल बिल्कुल,
0: सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है लेकिन समझना जरूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं
1: जी।
0: और ये उल्टा साइंस है, जो आँख के नंबर कम पड़ रहा है हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है कोई भी इमेज हो
1: वो क्लियर बनेगी,
0: वो क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए
1: बिल्कुल
0: शेप और साइज में। ये हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, हम सब पढ़े हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स, दोबारा देख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये नहीं है। और फिर पूछते हैं इनका नंबर कितना बढ़ेगा, मेरा दूसरा सवाल होता है इनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सवाल नंबर अलग चीज़ है, नज़र अलग चीज़ है
1: जी।
0: जब मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई पेशेंट आता है मेरा ध्यान सिर्फ नज़र पे है, नंबर पे नहीं है। समझ लीजिए सिर्फ अंधे को नंबर नहीं है, अच्छी तरह से समझ लीजिए सिर्फ अंधे जो है बेचारे उनको नंबर नहीं है, हमको और आपको सबको नंबर है इसलिए दिखा जाता है
1: जी जी।
0: ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम है
1: जी जी जी,
0: जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स की। तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा
1: बिल्कुल।
0: उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है, पहले अगर दूर का नंबर हो 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आँख के अंदर के मसल्स में लेंस में सब में चेंज आते हैं, ये सारे उम्र के वजह से होने वाले बदलाव हैं। इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफ़ी टाइम होता है माँ बाप बोलते हैं, आजकल बहुत कम हो रहा है बिकॉज लोग काफ़ी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है। और ये मुझे 15-20 साल पहले ज़्यादा दिखाई देता था। अच्छा किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। देखते क्या है, बच्चे को दिख नहीं रहे, देखते क्या है? बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो
1: बिल्कुल।
0: मैं तो ऑलवेज कह रहा हूँ इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, सुबह लगाओगे रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और क्या चाहिए दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज।

0: दृष्टि,
1: बिल्कुल
0: अगर दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आया तो फौरन उसे चश्मा बनवा कर देना
0: और 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि बच्चों के आंख की शेप और साइज बदली होते रहता है। लड़कों में ज्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है
1: जी,
0: ये ग्रोथ, जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है
1: जी।
0: और जो भी नंबर हो वो नंबर मत देखिए, आंख बच्चे की नजर देखिए।
1: बिल्कुल।

0: बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, बड़े नंबर वाले चश्मे लग जाते हैं
1: जी,
0: वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेजर के जरिए जो हम सुनते हैं कि चश्मा हटाया जा सकता
1: जी,
0: है
1: जी। तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है
0: जी।
1: काफी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया ने माइनस नंबर जो रहता है
0: जी,
1: उनके एक मिलीमीटर में 3 नंबर का फर्क पड़ता है। अगर आपका -3 है तो आपके जो लेंथ है आंख की 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। इन बच्चों में काफी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं, कोई और कमजोरी हो, कोई और बीमारी हो उसके वजह से। उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक। क्योंकि जब तक के आंख का नंबर 2 साल तक स्टडी ना हो, लेजर या लेजिक करना सही नहीं है। सपोज कोई बच्चा आया हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की या 20 18 की और उसके बाद उसके आंख का साइज चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया, दोबारा तो नहीं कर सकते ना? क्योंकि लेजिक क्या है या लेजर जो क्या है, उसके अंदर जो आंख का जो नंबर आंख की गुलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गुलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गुलाई कम करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेजर से जो सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है।
0: अच्छा,
1: उसका एक कैलकुलेशन है और उसके वजह से फिर जो है, जैसे दोबारा मैं आता हूँ 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स से, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है तो नंबर कम हो जाता है या निकल जाता है। तो एक सरल भाषा में ये लेजिक्स या लेजर है। दूसरी बात है, इसके लिए भी काफी जांच पड़ताल करना जरूरी है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा 2 साल तक नंबर स्टडी रहना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अगर आपका लेजर कर रहे हैं किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अगर सामने की कांच पतली हो
0: तो
1: और लेजर हो जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है और वो भयानक चीज है, आगे आपकी दृष्टि में परिणाम आ सकता है।
0: ओहो,
1: आप समझे कि नहीं? देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए वो जो आपने कहा आंसू वगैरह उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो,
0: करेक्ट।
1: तो वो भी जांच करना जरूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं। ये सब चीजें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेजर के लिए कहते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है। एक उम्र के साथ आपके आंख में बदलाव आएगा ही, 45 के बाद नजदीक का नंबर आएगा तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हों, अगर 20 पे आपने करवा लिया तो
0: जी।
1: लेकिन 45-50 तक आपको रीडिंग ग्लासेस आएंगे। काफ़ी टाइम लेजर होने के बाद कोई पेशेंट में हमने रिग्रेशन भी देखा है, यानी नंबर दोबारा आता है। ह्यूमन बॉडी है, 100% गारंटी कोई चीज़ की नहीं है, ये भी हमने देखा हुआ है। फिर चश्मा पहनना जरूरी होता है, कई लोगों का पूरा नंबर नहीं निकलता, अगर ज़्यादा नंबर हो काफ़ी कम हो जाता है लेकिन थोड़ा नंबर चलता है
0: जी।
1: और जो भी उम्र के वजह से या कोई और कारणवश आंख की बीमारियां होनी है वो तो होनी है, भले वो ग्लोकोमा हो, कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या और कोई चीज हो, वो तो आप लेजर से, हम बायोनिक आए तो नहीं बिठा रहे वहां पे।
0: जी जी,
1: आंख जो है तो वही है
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है,
1: उसका सिर्फ सामने का कांच का शेप चेंज हो रहा है
0: जी।
1: उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, उसका जो इमेज है उसको शिफ्ट करने के लिए।
0: पर ये हमेशा के लिए किया गया उपाय नहीं है
1: जी, नहीं, ये हमेशा के लिए हो ही नहीं सकता।
0: कई बार बुजुर्ग लोग भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं।
1: वो देखिए, अभी एक नई चीज आई है पिछले 7-8 साल में, जिनके बहुत ज्यादा नंबर है, बुजुर्ग लोग है, और ज्यादातर मोतिया होने के बाद ही ऑपरेशंस किए जाते हैं
0: जी जी।
1: लेकिन काफी पेशेंट में आजकल जो एडवांस लेंसेज आए हैं, जिनको हम ट्राइफोकल लेंसेज या स्पाइरल लेंसेज जो आए हैं, वो ऑपरेट करके जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कि जिसमें मोतिया नहीं है, लेकिन उसको निकाल के वो आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है जिसकी वजह से उनका चश्मा जो है वो हट जाता है
0: जी जी।
1: तो वो परमानेंट रहता है, लेकिन वो जिंदगी भर तक फिर बाद में वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है। उसके पहले काफ़ी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप सूटेबल इसके लिए हो या नहीं
0: जी।
1: पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत, जैसे लेजिक में करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी करना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको मोतिया नहीं है तो भी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम तो हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आप समझे कि नहीं? ये ऑपरेशन है
0: जी,
1: तो आप अपनी तरफ

0: से आप समझ के जा रहे हैं कि ऑपरेशन है, इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट की आंख में गड़बड़ ना हो, भगवान ना करे कि किसी के भी दृष्टि में प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझे कि अगर ये ऐसे ही नहीं है कि आप आओ करो, आँख के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, दैट इज़ माय बॉटम लाइन टू एवरीबडी। जब ज़रूरत हो तो ज़रूर कीजिए, लेकिन जितना हो आप सोच समझ के कीजिए। काफ़ी टाइम हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड ने किया सर, तो मैंने करवा लिया।
1: जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है।
0: हाँ, और सबकी आंखें सेम नहीं है, एक आंख से दूसरी आंख भी सेम नहीं है।
1: जी,
0: और हम कितनी भी कोशिश करें तो जैसे मैंने कहा, अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस में, इतने सर्जरीज हो गए, लाखों पेशेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर एक पेशेंट का आंख आज ऑपरेट हो, उसका दूसरा आंख अगले हफ्ते ऑपरेट हो, तो भी एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि इसमें चार आना यहाँ वहाँ है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है।
1: बिल्कुल,
0: पेशेंट को दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जानते हैं
1: जी,
0: बिकॉज इट इज़ नॉट, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इतनी स्पेशलाइज सिस्टम है आँख की, कोई डुप्लीकेट करने जाए तो भी ह्यूमन बॉडी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, छोड़िए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: तो आँख तो, और आँख को तो सबसे इम्पोर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, और दिमाग को दिखेगा ऐसे, आँखों के थ्रू ही दिखेगा।
1: परफेक्ट बात है। यहाँ एक गाना सुनते हैं
0: जरूर,
1: और वो गाना है आँखों में हमने आपकी,
0: अरे वाह।

0: दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: सेहतनामा।
2: अभी एक छोटा सा अंतराल।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: श्री बिरला ने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2000

0: बिस पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माले बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एसआईटी को जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Lok Sabha was adjourned till 5 p.m. amid opposition protests over alleged police action against students during the protest on the NEET issue. Earlier, the House was adjourned several times amid repeated disruptions as Minister of State Dr. Jitendra Singh introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill proposes stricter penalties including imprisonment of up to 10 years, fines up to 10 crore rupees, confiscation of properties of convicted offenders, special fast-track courts, completion of investigations within 2 months and trials within 3 months of filing the charge sheet. Speaker Om Birla and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged members to allow discussion on the bill, saying 6 hours had been allotted and 91 amendments had been received.
3: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. We have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt the debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
2: News just in, Lok Sabha has been adjourned for the day. The Rajya Sabha was also adjourned several times till 5:15 p.m. amid protests over the same issue. Earlier, Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved to the prevention of insults to national

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अनूप जलोटा के गाई इस भक्ति रचना से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गैर फिल्मी भजन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं लखवीर सिंह लखा का गाया ये भजन।

लखवीर सिंह लखा के गाए इस भक्ति रचना के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका और हमारे तमाम श्रोताओं का भी आज के इस कार्यक्रम युवा मंच में। जी हाँ, आज के इस अंक में मैं हूँ आपके रेडियो दोस्त

के हाथों में है। डॉक्टर कलाम कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका यह संदेश आज भी हर विद्यार्थी, हर युवा और हर सपने देखने वाले इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम ने हमेशा 5 बातें अपनाने की सलाह दी थी युवा दोस्तों। मेहनत और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाइए। असफलता से मत डरिए, उससे सीखिए। विज्ञान, तकनीक और नवाचार को अपनाइए। अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग देश की सेवा के लिए कीजिए। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब डॉक्टर कलाम का विकसित भारत का सपना हमारे लिए प्रेरणा बनकर सामने खड़ा है। यदि हर युवा ईमानदारी, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उनकी पुण्यतिथि पर हम संकल्प लें कि हम अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान देंगे। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी युवा दोस्तों।

0: युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत है हमारे तमाम श्रोताओं का, हमारे युवा दोस्तों का। जी हाँ, आपके साथ करेंगे बातें मिलकर कुछ आज खास। जी हाँ, नई उड़ान सपनों की हो या आसमान की बुलंदियों को छूने की, जरूरी है उसमें वो जुनून होना जो देता है हर सपने को नया आयाम। जरूरी है उसमें वो जज्बा जो रुकने नहीं देता हमें, और हमें तब तक जब तक हम उसे पाना लें। तो कुछ ही सफ़र रहता है ऐसा हमारे सपनों की उड़ान का भी, जो हर दिन कुछ नया हमें सिखा कर जाता है, हर गलती के रूप में नया अनुभव कराता है, हर असफलता कभी तोड़ती है हिम्मत तो कभी जोड़ती है फिर से टूटे सपनों को। तो आज के इस सेगमेंट नई उड़ान में हमने इनवाइट किया है एक बहुत ही संगीत में रुचि रखने वाली आपकी ही युवा दोस्त ऋषु को। जी हाँ, तो सबसे पहले आकाशवाणी के श्रोताओं की ओर से, युवा दोस्तों की ओर से ऋषु आपका हार्दिक स्वागत। तो बताइए आप अपने बारे में कुछ।
1: सादर प्रणाम सभी को। मेरा नाम ऋषु है और मैंने अपनी संगीत की शिक्षा धर्मशाला कॉलेज से प्राप्त करी है। उसके पश्चात मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ PGGC 11 गर्ल्स कॉलेज से मास्टर्स करी है और अभी भी मैं सीख ही रही हूँ संगीत।
0: बहुत ही अच्छी ये जानकारी रहेगी हमारे युवा दोस्तों को के लिए। तो ऋषु, आप ये बताइए कि संगीत की दुनिया में आने की, बहुत ही अच्छी जानकारी रहेगी ये हमारे युवा दोस्तों के लिए। तो ऋषु, ये बताइए कि आपको संगीत के बारे में सबसे पहले आपने ये शुरुआत कैसे करी और कहाँ से करी?
1: बचपन से ही गाना गाने का शौक था मुझे। उसके पश्चात अपनी मम्मी को भी काफ़ी सुनते, गाना गाते सुनता
0: जी।
1: तो उसके पश्चात जैसे शादी विवाह में जो विवाह के जो लोकगीत होते हैं वो सुना, और फिर जैसे जैसे बड़ी हुई उसके बाद जो हमारा यहाँ का ग्रुप है कांगड़ा लोक कला मंच धर्मशाला, शिवानी नेगी जो मैम है जो इस ग्रुप का संचालन करती है, तो उन मैम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लोकगीतों के बारे में नॉलेज मिली।
0: जी जी, जो यहाँ के हमारे फोक सॉन्ग्स होते हैं।
1: हाँ जी।
0: उनमें ठीक है, तो जब आप मम्मा के साथ जाती थी वहाँ सुनती थी तो बहुत अच्छा लगता था
1: बहुत।
0: तो फिर आप घर में आकर रियाज करती थी?
1: हाँ जी।
0: तो
1: मम्मी से पूछती थी, मम्मी ये क्या क्या गाना है कैसा, फिर मम्मी समझाती थी मुझे गा के सुनाती थी।
0: अच्छा, उसका मीनिंग भी आपको बताया जाता था कि क्या मीनिंग है, फिर आप भी कोशिश पूरी करती थी। तो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे कि क्या थे वो?
1: हाँ जी
0: जी जी।

0: क्या बात है ऋषु, सच्ची में सरस्वती है बिल्कुल, आपकी तो इतनी मधुर मीठी सी आवाज़ है, मन कर रहा है कि इसको कंटिन्यू ही रखें और सुनते रहें। जी, हमारे युवा दोस्तों को भी बहुत ही और हमारे श्रोताओं को भी ज़रूर पसंद आया होगा ये गाना। तो आपको फिर ऐसा था कि परिवार में माहौल था आपके संगीत का जैसे?
1: परिवार में माहौल तो नहीं था, पर ऐसा है कि शादियों में सीखा है। मम्मी तो गाते थे मेरे,
0: जी,
1: मम्मी से सुना है काफी।
0: तो प्रेरणा आपको मम्मा
1: हाँ
0: से
1: जी
0: मिली अपने की? हाँ, अपने मतलब बहुत ही अच्छी बात है ना। देखो, संस्कृति को भी हमें जिंदा रखना है, कहीं ना कहीं आगे तक लेकर जाना है। अगर सीखेंगे नहीं तो फिर आगे आने वाले पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, है ना? तो बहुत अच्छी बात है, ये आपने सीख रहे हैं और रियाज कर रहे हैं अपने फोक।

0: भी। तो आपने बताया कि संगीत की शिक्षा आपने कहाँ, यहीं कॉलेज धर्मशाला से ली, उसके बाद फिर आपने मास्टर्स करी, कहाँ से करी आपने?
1: पंजाब यूनिवर्सिटी।
0: अच्छा, ठीक है। तो आप बताएंगे कि आपका पसंदीदा गायक या गायिका कौन है?
1: हाँ जी, लता मंगेशकर जी मेरी सबसे पसंदीदा गायिका है, जिनको मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ और उन्हीं से ही मुझे प्रेरणा मिली है, जो बॉलीवुड के जो पुराने गाने हैं उनको सुनने की।
0: हाँ हाँ, क्या बात है, स्वर कोकिला का दर्जा दिया गया है उनको। तो क्या कोई उनका गाना आप गुनगुनाएंगे आज हमारे दोस्तों के लिए? हाँ।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने चुना है। ये अनपढ़ फिल्म से गीत है और हम अपने श्रोताओं को, अपने युवा दोस्तों को भी आपकी पसंद का यही गीत आज सुनवाना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए।

0: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बरियारे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरियारे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.

0: त्वरिशुभ कार्यक्रम युवा मंच में हम फिर से लौट आए हैं। तो आप हमारे युवा दोस्तों को बताइए कि क्या रियाज आज भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा है? यदि हाँ है तो कितने समय तक आप रियाज करती हैं?
1: जी, रियाज तो संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है रियाज का। कहते हैं ना कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा।
0: जी जी बिल्कुल,
1: रियाज तो पूरी जिंदगी भी हम करेंगे तो कम नहीं है।
0: हाँ,
1: एक संगीतकार के लिए रियाज सबसे ज़रूरी है। हम पूरी ज़िंदगी भी लगा देंगे संगीत को समर्पण के लिए, पर वो भी कम है हमारे लिए। रियाज तो पूरी ज़िंदगी ही चलता रहेगा।
0: हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही कि सीखते रहना चाहिए। तो अच्छा, ये बताइए कि आपने रियाज शुरू किया फोक से, मतलब यहाँ के जो लोकल ट्रेडिशनल हमारे गाने होते थे उनसे, तो और भी कोई ऐसा गाना है जो आप गाकर सुनाएंगी हमें?
1: हाँ जी, एक जो गाना है जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे, मैं बहुत बार गाती हूँ मैक्सिमम टाइम वो गाना।
0: जी जी
1: हाँ जी,

0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, कोई शब्द नहीं है, निशब्द कर दिया है आज आपने तो। अच्छा, और भी जैसे गाने हैं या गज़ल्स वगैरह, उनकी भी आप प्रैक्टिस करती होंगी,
1: हाँ
0: रियाज करती
1: जी,
0: होंगी,
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: ना? तो गज़ल अगर कोई आपके सुनाना चाहें तो ज़रूर, हमारे युवा दोस्तों के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए
1: जी।
0: जी।

0: जी बहुत ही प्यारी सी गज़ल है ये, है ना। आजकल तो लेटेस्ट अरिजीत सिंह ने भी गाई है, और अगर पुराने उसमें देखें हम तो फीमेल सिंगर हमारी जो हैं फरीदा खानम, उनकी आवाज़ में भी बहुत ही दिल से गाया है उन्होंने इसको, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ बोल सकते हैं। तो आप आज हमें ये बताइए कि आने वाले टाइम में आप कोई एल्बम्स, प्रोजेक्ट या कोई प्रस्तुतियाँ अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कर रहे हैं?
1: हाँ जी, अभी तो मैं यह सोच रही हूँ कि मैं खुद से गाना लिखूँ, खुद से कंपोज करूँ उसको, और खुद से ही उसे
0: क्या बात है,
1: हिमाचली
0: बहुत
1: लोकगीत पे
0: ही
1: मैं पहले काम कर रही हूँ। अभी मैं चाहती हूँ पहले हिमाचल का कोई अच्छा सा गाना।
0: अच्छा। तो ये बताइए कि हमारे जो युवा दोस्त हैं, है ना, तो उनको आप क्या आज के इस कार्यक्रम में संदेश देना चाहती हैं? नई उड़ान हमारा सेगमेंट है, आपने भी अपना करियर अपनी पसंद के साथ चुना है, उसमें आगे बढ़ी हैं आप और इतने अच्छे से कर रही हैं उसमें, आप रियाज कर रही हैं, है ना। तो उनके लिए भी ज़रूरी है ना कि देखो जो भी आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे उस फील्ड को चुनेंगे तो नेचुरल सी बात है वो बहुत ही उभर कर आपके सामने आएगा। तो क्या कहना चाहती हैं आप भी हमारे युवा दोस्तों को?
1: रियाज़ की बात करें तो संगीत में तो रियाज़ है ही,
0: बिल्कुल
1: हर एक फील्ड है उसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिस जैसे मेरा जो है, मैं ज़्यादा संगीत में ज़्यादा रुचि रखती हूँ। जैसे हर एक इंसान हर अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से
0: जी
1: रुचि रखता है,
0: हाँ
1: तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो अपने अंदर एक आत्मविश्वास और एक जो दृढ़ संकल्प रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं उस चीज़ को लेके।
0: जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया हमारे युवा दोस्तों को कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आज ऋषु आपसे बात करके, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे युवा दोस्तों को दी। तो कार्यक्रम में शामिल करते हैं चलते चलते एक और म्यूजिकल ट्रैक, उम्मीद है आपको भी ये सॉन्ग जो है वो पसंद आएगा।

0: तो ऋषु, घड़ी की सुइयां जो हमें इजाज़त नहीं दे रही हैं, चलते चलते म्यूजिकल ट्रैक के साथ साथ आप युवा दोस्तों से कुछ कहना चाहेंगी?
1: धन्यवाद, आप सभी ने मुझे इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त किया करवाया। मैं आकाशवाणी धर्मशाला जी की बहुत आभारी हूँ और आप जो सब श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद।
0: चलो, बहुत अच्छा लगा। यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए

चलते चलते हम बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला बिपिन कुमार से। अब अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया को दीजिए अनुमति। युवा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 और 47 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर कार्यक्रम मुझा ग्राई दियाँ सुनवाया जाएगा। विषय रहेगा अटल भूजल योजना। शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। इसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, मौसम की जानकारी, मंडी भाव और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत।

रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। रात्रि 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनिएगा। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम में एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा संगीतकार रोशन के संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की लेकर। रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह 7:40 पर एक और भक्तिमय रचना आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी और सुनो सखी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:23 पर। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ

मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: अपना इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा की है। आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए के बजाय 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा घर के बर्तन, फर्नीचर और बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रभावित परिवारों को कुल 8.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश के लगभग 23,000 मकान पूर्ण या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे और महंगाई को देखते हुए राहत राशि में 50,000 रुपए की वृद्धि की गई है।
2: मैंने मकान बनाने के लिए 7.5 लाख रुपया, घर के बर्तन, पलंग, बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा 8.5 लाख रुपया दिया। जब से हमारी सरकार आई है 2023-24 में 23,000 घर या तो पूर्णतया नष्ट हो गए थे या आंशिक रूप से नष्ट हुए थे। तब से मैंने 7 लाख रुपया रखा था, तो 2 साल में महंगाई भी बढ़ी है, तो इसलिए 50,000 रुपया और बढ़ाया। हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़ी है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार व पेपर लीक मामले पर श्वेत पत्र लाएगी और उसे जनता के सामने रखा जाएगा।
2: भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक श्वेत पत्र लाने जा रहे हैं, एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, जो 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के समय भ्रष्टाचार हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, वो सब हम जनता की अदालत में रखने जा रहे हैं।
1: भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्राकृतिक आपदा की गंभीर मार झेल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार VIP प्रबंधन में व्यस्त है। धर्मशाला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि शाहपुर क्षेत्र की बोह घाटी और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित परिवार आज भी राहत, पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। त्रिलोक कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले बोह में वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए, शाहपुर और रैत के विश्राम गृहों में VIP दौरे के अनुसार पूरी व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि अगर यही सरकारी संसाधन व धनराशि आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता में खर्च की जाती तो अनेक जरूरतमंद परिवारों को तत्काल राहत मिल सकती थी। त्रिलोक कपूर ने आरोप लगाया कि सरकार जन भावनाओं को समझने में पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय रहने से राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश इलाकों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। वर्षा से कई स्थानों पर जहां सड़क मार्ग बाधित हैं, वहीं कई पेज

0: परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। हालांकि इन सुविधाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के मुताबिक कल 28 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। उन्होंने बताया कि आज दो जिलों व सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि कल 28 जुलाई को बिलासपुर और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय रहेगा और इसी दौरान लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ये जो रेनफॉल एक्टिविटी देखी कल 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, इसमें इंटेंसिटी वाइज काफी सक्रिय रहेगा और इसके चलते हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हैवी रेनफॉल के साथ वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। 28 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है और 29 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है और वेदर एक्टिविटी देखिए 30 और 31 जुलाई काफी सक्रिय रहेगा।
0: मौसम विभाग ने भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में बीज आलू उत्पादन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय दक्षता विकास कार्यक्रम आज शुरू हुआ। 29 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर में स्थित संस्थान के ब्रीडर सीड उत्पादन केंद्रों के वैज्ञानिक व तकनीकी कर्मचारी भाग ले रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ, और ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज़ में, और ये गीत हमने लिया है मिस्टर एक्स इन मुंबई।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं जमाने को दिखाना है, इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। संगीत दिया है राहुल देव वर्मन ने और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
3: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.

ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। ज़मीन आसमान फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

सुरमई सांझ ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जमीन आसमान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी। स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सांवरिया रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ। माइलेज का हीरो, स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
0: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
4: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
0: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
4: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।

तो ये थी सुरमई सांझ की अंतिम प्रस्तुति हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से. आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, और धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने. तो इसी गीत के साथ अपनी रेडियो दोस्त रेनु मनकोटिया को दीजिए अनुमति. ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है. शाम के 6:30 हुए हैं. लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंडियां.

0: कार्यक्रम मौजां करांदियां सुनने वाले सारे किसान कन्नै बागवान भाइयों जो जोधा राम दी राम राम कन्नै भाई अज मेरे कन्नै टियाले विच ने
1: केसरो ता किसान वाणी जेड़ी कार्यक्रम है सुनने वाले सारे किसान भाई बहना जो भी केसरो दी दोआ जोड़ी के राम राम कन्नै तुहानू जो भी राम राम।
0: हां जी बिल्कुल जी कन्नै दिखा बरखा लगी है बरसात दा मौसम है बरखा तां लगनी है ना
1: जी बिल्कुल
0: ना बरखा विच जेड़ा भी सै रौनक लगदियां ने क्योंकि रौनक जेड़ा सै ऐसा ना कि असा तोहां लोग ही जेड़ा सै लगांदे ने
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: रौनका दिखा अजकल जेड़ा सै धारा पर बड़ियां लगियां है ना जी,
1: जी
0: धारा पर पाइए इतनी रौनक लगी है कि तुम्हें क्या दसी है कि जरा धार्मिक यात्रा ने तो वास्ता भी लोग जा करते हैं ना जी,
1: जी कने
0: जरा जे अपने गुआलू है ना अपने डंगरे जो लेकर इतु जा करते हैं ना जी कने उपर धारा बच्चे जरा सा रौनक लगी है कने बरसाती तो लगी रहनी है कने हरी हरी घास जरा सा आते पशुधन जरा सत्ते तो खाने जो मिलती है
1: बिल्कुल अजकल प्रकृति जी दिखने बड़ी सुंदर लगती है और जी कि तुम बोला दे कि धारा पास भी लोग जाते हैं और इतु के नज़ारे जड़े सह दिखते हैं कने सोगी दिखा हूँ जो अजकल मोबाइल फोन जो चली पे हो तो इस पर भी जो फोटो पाई करी खिंजी करी जो पाते हैं ना तो इन्हें जो भी हाँ दिखी करी मतलब समझी सकते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर लगा करती
0: हाँ,
1: है।
0: हाँ बिल्कुल जी कने दिखा जी कि कार्यक्रम हमारा शुरू होंगे ना तीन जरा से जानकारी देंदे ने किसी योजना के बारे में ताकि हाँ किसान भाई किसी योजना का फायदा लेकर ही जरा अपना भला करना ना जी,
1: जी।
0: आज की जरा जानकारी देनी है अटल भूजल योजना जी जी कि ना ये पता लगा था कि भूजल योजना यानी कि जमीन के थले के पानी का जरा इस्तेमाल किया करना है।
1: बिल्कुल तो दिखा किसान भाइयों इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरा है भू जल का संरक्षण करना वर्षा जल का बेहतर उपयोग करना कने भू जल के स्तर जो सुधारना है।
0: हाँ जी
1: इस तहत दिखा ग्राएं च लोकां दी भागीदारी ते जल संरक्षण दी योजना बनाई जांदी है कने किसाना जो भी घट पानी वाली फसलां सूक्ष्म सिंचाई जियां कि ड्रिप होई या स्प्रिंकल होई कने इस कने पानी दे विवेकपूर्ण उपयोग दे वास्ते प्रोत्साहित भी कीता जांदा है।
0: बिल्कुल जी कने दिखा किसान साथी इस योजना की शुरुआत जरा 25 दिसंबर 2019 जो की गई थी
1: जी
0: कने 1 अप्रैल 2020 जरा सा हाल तक योजना चली हुई है इस योजना बिच जरा सा बजट हर साल जरा सा बनाया जाता है ना जी,
1: जी।
0: कने इस बिच अहां दे किसान साथी जरा सा जियां कि तुसीं दस्सिया कि भूजल योजना च क्या हुंदा कि जरा जहां दा पानी है धरती दा ते च बड़ी ज्यादा गिरावट आई है ना जी वर्षा जल दा अधिक ते अधिक संचयन करना कने जरा जे जमीन दा पानी है ना तो रोकना क्योंकि दिखा अहाँ किसान किसान की जरा जे किसान का जरा कम है ना सर कि चलता चलो कि हाँ कोई बी बना है
1: जी
0: तो मिट्टी च नमी होना चाहिए मिट्टी च नमी तो होगी चलो कि अहाँ दे जरा जे भूमि होनी ना जिससे जल स्तर अच्छा होगा अगर जल स्तर ही गिरी जाएगा तो अहाँ दे जरा बीज होना तो जरा सा नमी नहीं मिलनी
1: कहीं
0: हाँ फसल भी जरा अच्छी नहीं होंगी कहीं पानी का सही कने घट उपयोग जरा सा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कने किसान जो घट पानी वाली फसलों की अधिक सिंचाई करने वास्ते प्रेरित करना कने ग्राम स्तर पर जरा सा जल सुरक्षा योजना बनाना है ना जी कदिखा योजना जरा सा गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्य

0: प्रदेश महाराज जी तो दस्सिया है, ये सारे च चली हुए है ना जी।
1: बिल्कुल जी,
0: कहने
1: बिल्कुल
0: दिखा असा लोगों के भी जरा ऐसा है कुछ फर्ज जरा ऐसा बनता
1: बिल्कुल
0: है ना जी।
1: जी। हर काम जो ऐसे सरकार दा ही नहीं होंगे, सानू भी दिखना चाहिए। अजकल बरसात लगी हो तो जरा बरखा बरा दी है, तो इस पानी जो भी अगर हम बचाई लेंगे तो आने वाले समय से सानू कोई परेशानी नहीं होनी है।
0: बिल्कुल जी सही गल है। कहने देखा पानी बचाना सही गल है, अगर हम पर्यावरण बचाएंगे, पर्यावरण जो हरा भरा रखे है ना जी, तो पानी मिट्टी भी सही रहनी है ना जी। सारी चीज़ें जरा से एक दूसरे जुड़ी होनी है।
1: बिल्कुल
0: कहना पानी का घट इस्तेमाल करना, जरा प्राकृतिक जल स्रोत ने तिना दा असा जरा ऐसा पानी जितों इकट्ठा कर सकते हैं ना जी।
1: जी
0: बरखा का पानी जरा इकट्ठा कर सकते, खासकर उन्होंने इलाकों में जितों की पूरी खेती जरा सा बरखा पर ही निर्भर करती है, तो
1: बिल्कुल
0: जितों जरा सा पानी है जो भंडारित करना, कहना पानी की सुरक्षा करना, कहना पानी है जो स्वच्छ रखना, जरा सा असा लोगों का ही जरा सा कम
1: बिल्कुल
0: है ना जी।
1: बिल्कुल
0: कहना इस वास्ते जरा सा अह सारे लोग मिलकर जरा सा कम कार कर सकते, पानी है जो स्वच्छ रखना। देखा कुदरत सानू पानी तो दिया करती है,
1: जी
0: लेकिन इस पानी है जो स्वच्छ रखना जरा सा हमारा ही कम है। पानी है
1: बिल्कुल
0: जो स्वच्छ असा कि रखी सकते कि पानी च कोई भी कूड़ा करकट जरा सा इस नहीं पाना। कहना अच्छा अह देखते कि पानी बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगे जरा घुली जाए ना जी।
1: बिल्कुल
0: अह कोई भी घरे का कूड़ा करकट हों बोलते खड्डा सटी देते, पानी सटी देते है ना जी, तो खड्डा च जाकर असर कुल्ला आंता कहना फिर अहम घर दोबारा सा मिली जाता। तो
1: जी
0: असं जो चाहिए कि प्लास्टिक का घट से घट इस्तेमाल करना, कहना प्लास्टिक खासकर जरा ऐसा असा नदियों से नहीं फेंकना
1: जी
0: है ना
1: बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल
0: बाकी चीज़ें जरा होंगे ना सर, कुड़ियाँ नहीं है, गलियां नहीं है, तो हाँ अगर घरे का और कूड़ा करकट फेंका देता सर गली जाता है ना जी,
1: जी
0: लेकिन प्लास्टिक जरा ऐसा कई बार जरा सा
1: बड़े
0: जो
1: साल लगते थे ना जो
0: हाँ
1: गलने, जो कने जगह जगह जेड़ा ऐसा है प्लास्टिक कने बड़ा भारी नुकसान हुंदा है।
0: हाँ जी। कहना ऐसा है कि प्लास्टिक की गल करिए तो कोई पशु अगर पानी पीता ना, तो पशु पानी पीने से भी जरा प्लास्टिक कई बार जरा सा गले से चली जाता।
1: चलिए अंदर। जी जी
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल
0: तो किसान साथी दिखा ऐसा जानकारी दे बाद असा सुनना एक लोकगीत।
1: जी
0: कहना दिखा अजकल जरा ऐसा है बरखा भी हो कर दी है ना जी,
1: बिल्कुल
0: है ना
1: जी
0: जी। कहना चंबे च मिंजरा जो मेला भी लगे है
1: बिल्कुल
0: ना
1: चंबा
0: जी।
1: मिंजर मेला लग गया जी,
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: रौनक
0: जी,
1: लगी हैं
0: बिल्कुल जी। कहना असा सुनना ये मिंजरा के मेले का ही एक लोकगीत।
1: बिल्कुल।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: तो इस लोकगीते दे बाद फिर तो जिहड़ा सा अहां दे किसान साथियों का स्वागत है। कह के दिखा गल है कि अहां चंबा दे मिंजर दी गल कर रहे हैं।
6: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
5: तो केसरी जी तुहानी गए इस वारी?
6: मैं सोचा था बड़ा जोदा राम जी, पर पता क्या होया, घरे वाले भेजदे नहीं कछु, कि एक ता अंबर जड़ा सा नहीं टिकदा कंदुआ, क्या कि अजकल बोलदे रस्ते बड़े खराब। तो जी फोन पर जलो दिखा दी ना मैं, तो भाई मैं जो दिल करा था कि मैं कालू पुजी यहां ते थू रौनका दिखी गए।
5: दिखा चंबा मिंजर दा एक ऐतिहासिक मेला, थोड़ी जानकारी यहां देंगे।
6: हां जी, हां जी, बिल्कुल।
5: कि हिमाचल प्रदेश दे चंबा शहर विच सारे ते प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक मेला है। कने ये हर साल जरा सा श्रावण मास विच जरा सा, यानी कि जुलाई कने अगस्त महीने दे जरा सा मनाया जांदा, कने 7 दिन वास्ते मनाया जांदा
6: जी।
5: 7 दिन इस ते हुंदे ना। कने इस वजह से क्या होंदा कि इस विच कुछ दो प्रमुख मान्यता, यानी कि कई मनाया जांदा है मेला। मिंजर जरा सा मक्के कने धान दी बालियां दा एक प्रतीक है,
6: बिल्कुल
5: जी। कने अच्छी फसल कने समृद्धि वास्ते भगवान दा धन्यवाद करने कने अच्छी पैदावार दी प्रार्थना के रूप में यह मेला जिहड़ा सा मनाया जाता है।
6: बिल्कुल।
5: कने इस दिन जिहड़ा ऐसा है मनाया जाता कि चंबा के राजा साहिल वर्मन ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जिहड़ा सा कोई विजय प्राप्त की ही। कने उस अवसर पर लोगों ने उन्होंने जो मक्के दी बालियां कने मिंजर जिहड़ा सा मक्के दी बालियां जिसे मिंजर बोलते सब भेंट की गई, कने तालू ते परंपरा जिहड़ा सा शुरू हुई है।
6: बिल्कुल। कने जो राम जी दिखा इतों का एक होर एक रिवाज है मिंजर बोलते भैन जड़ियाँ सह भाई जो मिंजर जी सह रिवाज है।
5: इस तरीके ने जो दिखा इस विच भी होंगे कि भगवान रघुवीर जी की एक भव्य शोभा यात्रा जरा सा इस विच निकलती है। कने चंबा के चौगान मैदान विच सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य कने लोक संगीत जरा सा आयोजित होंगे है।
6: बिल्कुल।
5: कने हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद कने खान पान दुकाना जरा सा उतो लगदिया ने। कने अंतिम दिन जलू के लास्ट

0: दिन होंदा ना मिंजर दा, तां
1: जी
0: लोक रावी नदिया विच जाई करी नारियल फल कन्नै मिंजर अर्पित करके सुख समृद्धि दी जिहड़ा सा सारे लोग कामना करदे ने। यह मेला धार्मिक आस्था कन्नै, कृषि परंपरा से जुड़िया, कन्नै चंबा दी सांस्कृतिक है, कन्नै पहचान है।
1: बिल्कुल। तां अपने किसान भाइयों जो गलाना चाहेंगे कि चलो मौसम दिखी लिया कने अगर तुहां जो लगदा है कि तुहां जाई सकदे हैं तां जरूर जाना चाहिए है कने रौनक मेला
0: हाँ
1: दिखना चाहिए है।
0: बिल्कुल जी, क्योंकि यहाँ दी ऐतिहासिक चीज़ें ने,
1: जी
0: आपू भी जा के ना अगर तो हो सके तो अपने आने वाले जरा यहाँ दी नई पीढ़ी है ना बच्चे,
1: बच्चे
0: तो जो
1: जी
0: दसना बड़ा जरूरी होंगे, कई
1: बिल्कुल
0: अजकल भुला दे है ना जी,
1: जी जी
0: कने
1: जी
0: कुछ फोन के चक्कर भुला दे है ना जी, कने कुछ बाहर का माहौल भी ऐसा है अजकल, कने
1: बिल्कुल
0: असा दे बुजुर्गों जी सू दसा था ना, इस
1: जी
0: तरीके ने जरा ऐसा है असा जरा ऐसा अपने बच्चे का दसी सकते
1: बिल्कुल
0: है ना जी। तो इस ते बाद जरा असा फिर ही अच्छ चंबे की गल कर दे, तो फिर ते असा सुन दे एक चंबे का ही लोकगीत।
1: जी।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: केसरो जी दिखा असा सुनिया ये लोग गीत ना कने दिखा हुन गल है कि बरसाती दा मौसम है ना
3: कने जी
4: कने गड़कदा भी चमकदा भी धारा धारा च बरखा लगी रहिंदी अजकल क्या हुंदा बरसाती दे मौसम विच कि थल्ले थल्ले धुप भी लगी हुंदी ना कने धारा च लगी जांदी पहाड़ा च बरखा
3: कने
4: उपरे ते कई वारी खड्ड नालू जिहड़ा ऐसा अचानक ते आ जांदे कने हुन जिहड़ा ऐसा आहां दे कुछ आखे विखे दे क्षेत्रां ते भी इलाकें ते संजू जिहड़ा ऐसा खबरां करदियां कि मतलब कुछ बदल फट जांदा कुछ नुकसान हो जांदा है ना जी। तो पहले तो असां जो ये चाहिदा कि जदों असां अपना घर बना देना तो सानू ये दिखना चाहिए कि यह घर हाँ खुद ही बना दे मारे घर उपर कोई नाला तो नहीं है। अगर छोटा मोटा नाला भी है तो पता नहीं होता बरसाती के मौसम कुत्थों दी आ जिहड़ा सा पानी आई जाना। तो सानू जिहड़ा सा घर बनाने के पहले भी जिहड़ा सा कई बार सोचना चाहिए पहाड़ी इलाकों जिहड़ा सा घर बनाना हो कुत्थों दी बनाना कियां बनाना सही ढंग ने सोची समझ करी जिहड़ा सा फैसला लेना चाहिए। दूसरी गल है कि इन खड्डा नालों मते ना अजकल सानू दूर ही रहना चाहिए
3: जी जी
4: है ना जी। कने कि पता नहीं होता कल पैर फिसले अजकल तो चिट्टा पत्थर भी तुम्हें पैर रखा था भी फिसलता होंगे है ना जी। बरसाती तो ऐसी गल होंगी तो खड्डा नालों में जाना नहीं अखे वखे
3: जी। कने जो लोकल लोग होंगे ना जो राम जी ना सब कुछ पता होंगे कैसा पत्थर है कि यहाँ खड्ड लंघनी है या कि यहाँ अपना बचाव करना है लेकिन कई बार जो ऐसे बाहर के लोग आते हैं घूमना

0: फिरना, तो हरियाली दिखी के, नदी नाले दिखी के चली आते हैं। ना जो पता नहीं होंगे जी, तुम बोला देखी पहाड़ा च बरखा हुआ कर दी होंगी है, पानी का बहाव एकदम तेज हो जाता है, तो इन्होंने
1: जी
0: गलों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए।
1: सही गल है, कन्नै ध्यान रखना, कन्नै दूसरी गल ये है कि पौधा रोपण जिहड़ा सा जितना ज़्यादा हो सके है करना, क्योंकि ये पौधे ही जिहड़ा ने ये पेड़ पौधे जिहड़ा सा मिट्टी जो पकड़ी के रखते हैं, कन्नै भूमि कटाव जो जिहड़ा सा रोकते हैं, है ना जी।
0: बिल्कुल
1: तो सानू इस बरसाती पौधा रोपण भी करना है, कन्नै इस बाद जिहड़ा सा कि सुर जिस समय हुई है कि लोक गीत का तो आओ सुन दे लोक गीत।
0: जी।

0: किसान साथियों, इस गीत कने ही हुण कार्यक्रम मौजा ग्रहदी दा समय जिहड़ा से इत्थों ही संपन्न होआ करदा है। जाने ते पहले तुहानूं दस दईए कि अज सानूं तकनीकी सहयोग दित्ता विपिन कुमार ने और प्रस्तुत करदा डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह
1: जी। ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੈ ਹਿੰਦ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजां ग्राइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार
1: के साथ मैं वैष्णवी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर तचंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सेंडर पालिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्य जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा

मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे किसान कने बागवान भाई बहना जो केसरो दी दुआ जोड़ी करी फिर ते राम राम।
1: जी कने किसान साथियों जो राम भी थोड़े कन्ने इतों ही है
0: बिल्कुल
1: त्याले विच कने दिखा असं बाहर दिखा दे हल्की हल्की जड़ा सा बरखा लगी हुआ है पहाड़ी इलाके में लगी रहती
0: जी
1: लेकिन हमें त्याले विच झमाझम बरखा जड़ा थोड़ी देर पहले हुई कने असं इस वक्त त्याले के थले बैठे हो कने ऊपरे ते जड़ा सा हल्की हल्की बुछारा जड़ा सा पत्ते ते चूड़ी करी जड़ा सा थले पो कर दी है ना।
0: बिल्कुल जी
1: हाँ हाँ हाँ
0: बिल्कुल
1: हाँ कने ये दिखा सारे पर तो पौधी है कि नहीं जरा उपरे ते गले हल पो कर दी पिट्ठी देना थले चली जा दी
0: ठंड लगा
1: पूरा
0: दी
1: शरीर
0: हुई।
1: ठंडा हो जाता
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: ये जरा बोलते ना कि हाँ सियाने गलाई जो बोलते जल उभरे तालू सीत है ना
0: बिल्कुल जी
1: तो पहाड़ी
0: बिल्कुल
1: इलाके में एक आप तो जरा ऐसा भी दिखा बोलते ना कि सियाने दिया गले है ना आंबड़े तो खाधे बोले बाद स्वाद दिता है ना जिनकी
0: जी
1: बाद
0: जी
1: याद होता तो अच्छे सियाने गप याद होंगी कि जल उभरे तालू सीत तां असां
0: बिल्कुल
1: जो जरा सा जलू भी बरखा होंदी है ना तां इसका जरा सा पूरी सावधानी असां जो पहले रखना पौंदी है।
0: बिल्कुल दिखा अहाँ भी तो हूँ टियाले आए तो बरखा का आसार थे तो हाँ छतरू जोड़ा से सोगी लिया हाँ जो छतरू ना होए तो हाँ टियाले पर बैठना ही है जो तो राम जी क्योंकि बरखा लगी पौगी तो जो ये छतरी ताने के बहना पौना।
1: हाँ पर माड़ी मोटी बरखा का फर्क नहीं पौंदा क्योंकि असां दा जिहड़ा टियाला है ना ये
0: जी
1: बड़ा बरीकण है कने इस वजह यह है कि माड़ी मोटी बरखा की जरा सा प्रभाव नहीं भी करते कने
0: जी
1: अब थले पौंदी भी नहीं है ना जी
0: बिल्कुल
1: लेकिन जरा सा दिखा आस्ते आस्ते मारा टियाला भी जरा सा हूँ थोड़ा जहा बधिया हुई है पहले तो है ना जी
0: जी जी
1: कने अगर अस अपने ग्राएं की गल करिए तो ग्राएं भी जरा सा जनजीवन काफ़ी बदली चुके हैं ना जी
0: जी
1: पहले अस दिखते हैं कि हाँ के अपने घर भी रहने वाले कच्चे होंगे कने कराला भी जरा सा बिल्कुल कच्चिया होंगे थी
0: जी
1: अजकल दिखा हाँ कराला भी थोड़ी पक्या कर लिया कने घर भी असा थोड़े अच्छे हुई है तो बरखा से माड़ा मोटा फर्क नहीं पौंदा है ना जी
0: बिल्कुल
1: कने पूरी असं जरा सावधानी कने सुरक्षा जरा सा रखी होंगी फिर भी बरसाती के मौसम बिच पशुओं कन्ने जरा सा थोड़ी बहुत सावधानियां सानू रखना पौंदियां ना जी इसके
0: बिल्कुल
1: बारे में भी असं गल करनी है लेकिन सारे से पहले असं गल कर लेंगे कि बरसात के मौसम बिच असा बेलदार सब्जियां की खेती कियां करनी कने क्या क्या असं उस बिच करी सकते हैं तो केसरो जी दिखा बरसात का मौसम बेलदार सब्जियां की खेती वास्ते बड़ा ही अच्छा मनिया जाता है
0: जी
1: कने इस मौसम बिच जड़ा है सह पर्याप्त नमी कने अनुकूल तापमान जरा चाहिए सह रहा है कने इस दे कारण ही पौधे बिच जरा सह अच्छी वृद्धि जरा सह असं जो देखने जो मिलती है
0: बिल्कुल
1: इस बिच क्या है कि दिखा जियाँ बेलदार सब्जियां की गल करिए तो कौन कौन होनी है लौंकी हुई तुरई हुई करेला हुई है जियाँ जी खीरा हुई है कद्दू टिंडा है ना जी कने कुंदरू कुंदरू जिसे बोलते हैं सह हुई है
0: जी
1: कने कुछ मतलब जियाँ कद्दू वर्गी सब्जियां हुई हैं कने परवल हुई है तो इन्हों की जरा से असा खेतीबाड़ी करी सकते कने
0: बिल्कुल
1: इन्हों का बुआई की गल करिए असा कि बाहनी गलू
0: जी
1: तो दिखा ये जरा सा मानसून शुरू होने पर ही जरा सा बाई सकते अली भी तो बाई सकते
0: बिल्कुल
1: जुलाई बिच भी कने मिट्टी जरा सा अच्छी जल निकासी वाली दोमट कने बलुई मिट्टी जरा सा इस बिच रहती है कने
0: बिल्कुल
1: मिली आए तो बड़ी अच्छी गल
0: जी
1: कने खेत की तैयारी कियां करनी कि खेत जो असा अच्छी तरह जोती करी गोबर की गली चढ़ी खाद जरा सा उस बिच मिलानी है
0: जी
1: कने बीज जो असा 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना है कने पौधे के बिच की दूरी जरा सा है बिल्कुल सही कने बराबर बराबर रखनी है
0: बिल्कुल
1: कहे कि बराबर बराबर अगर असा दूरी रखे तो बोलते कि बराबर पानी कने बराबर खाद कने बराबर हवा सब कुछ जरा सा बराबर मिलना है तो खेतीबाड़ी कने उत्पादन भी जरा सा बराबर ही होंगे।
0: बिल्कुल।

0: ना जी,
1: बिल्कुल
0: नहीं तो अगर ते ना जो असा समान अधूरी नहीं रखे तो कोई पौधा बड़ा हो जाना, कोई छोटा हो जाना, है ना जी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इस तरीके ने ये बड़ी जरूरी चीज़ होंगी। इस ते बाद जरा सा सिंचाई, बरसा जरा सा होंगी रह दी, अगर बरखा घट हो गई तो सिंचाई भी जरा सा करना पौती है ना जी।
1: जी
0: कई बार क्या होंगे कि बरसाती भी कई बार 3-4 दिन ऐसे लंघ जाते कि बरखा नहीं होंगी, है ना जी।
1: बिल्कुल
0: तो जलू असा खेत बच्चे पानी जमा जरा सा बिल्कुल भी नहीं होना देना, क्योंकि ज़्यादा पानी भी जरा सा नुकसानदायक होंगे। तो इस विच गल करिए कि बेलों के उपर चढ़ाने वास्ते असा मचान या जाली भी जरा सा लगाई सकते हैं, जिस
1: जी
0: विच फल साफ कने अच्छी गुणवत्ता वाले समझो मिली जाते। जाली भी
1: बिल्कुल
0: चढ़ाई देने तो क्या होंगे कि जमीन अच्छा जलू अगर कोई फल चुगता है तो जमीन पर भी जरा सा बड़ी सारी जरा सा सड़न रोग जरा सा लगी जाते, जाली अगर असा लाई लैन तो बड़ी अच्छी गल रही है ना जी।
1: बिल्कुल
0: कने रोग कने कीटा का नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है, टाइमे टाइमे पर दिखना, कने जरूरत के अनुसार जरा सा उचित जैविक जरा सा खाद जरा सा देनी है।
1: जी
0: कने जैविक खाद खाद ने अगर असा सब्जियां उगांगे तो सह सब्जियां तो जो पता है कि इसकी गुणवत्ता भी सही रहती है।
1: बिल्कुल स्वास्थ्य
0: जी
1: वास्ते भी अच्छी रहती है कने। और तुम बिल्कुल ठीक गल लाई जी कि हूँ दिखा बेलदार सब्जियां कई लगाई भी हैं कने कुछ लगाई भी सकते हैं अजकल, तो फिर अजकल बरखा बड़ी होवा दी कने जल बेल साड़ी तैयार होने लग पौंदी है, तो कई बार यहाँ तीस सहारा नहीं लगाते जी है ना, तो फिर से बेलना जी इन सब थले पई जाती जमीन पर कने जल बड़ी बरखा होंगी कने पानी ज़्यादा हो जाता तो असर सड़ना लगी पौंदियाँ, तो इस गल का खास ख्याल रखना कि जल थोड़ा पौधा बढ़ाना लगी पौंदा तो इसके अगे अखे बखे जरा थोड़ा जहा चले नालियाँ बनाई देना चाहिए।
0: बिल्कुल जी, कन्नै दिक्खा इस तरीके ने गल असा काम करगे तो घट समय में अच्छी पैदावार होनी, बाजार में अच्छी मांग होने पर अच्छा लाभ मिलना, कन्नै परिवार जो भी साढ़े ताज़ी सब्जियां कन्नै पौष्टिक सब्जियां जैसे मिलनियां ने।
1: बिल्कुल जो राम जी तो
0: तो
1: हूँ
0: हाँ
1: बस
0: बिल्कुल
1: करते
0: जी,
1: कने गीत जरा ऐसे सुनी लेंदे एक लोक जानकार भी
0: बिल्कुल जी,
1: चाहिए
0: तो
1: है।
0: सुन दे लोकगीत।

0: 3 किलो तो ऊपर नहीं चल रहा।
1: अच्छा कितनी बारी निकल जाएगा ना ये?
0: मतलब लगातार करी करी कोई मतलब पहले तो दबारी मतलब शुरुआत से तो ठीक तादाद च निकलता
1: हाँ।
0: फिर आस्ता आस्ता कट जाता कोई 1.5 महीना डेढ़ पौने 2 महीने चली रहते जाए।
1: अच्छा इसके बाद क्या फिर बैग है खाली कुछ नहीं?
0: जल बैग होता तो इसकी खाद बनाए दे हम प्लांट बनाए होंगे नहीं कैंचुआ खाद प्लांट बनाए बनाया प्लांट करने।
1: अच्छा अच्छा
0: तो इन बैगों की खाद हाँ इस प्लांट च पाई दे
1: हाँ जी
0: फिर 5-7 महीने के बाद दूई खाद भी पाते कन्नै गोबर वगैरह
1: हाँ जी
0: तो फिर साढ़े खीरी कन्नै आ जाए।
1: अच्छा अच्छा जी तुम दसिया ना कि तुम घर जड़े सह तेरिया पौधे ने इतू जड़ा सह तुह क्या जमीन मुल लेके बनाया?
0: हाँ जी ये 2008 च 9 च 10 च
1: हाँ जी
0: ये मैं 3 साल च दबारी सताई के नाल प्लाट खरीदिया।
1: अच्छा
0: जी
1: कन देखा ये जड़ी खड्ड है कौन है खड्ड बक्का
0: ये मांझी खड्ड
1: मांझी देखा पानी दी तो कोई कमी नहीं है ना?
0: हां जी कोई कमी नहीं मैं मोटर भी लाइयो इंजन भी रखे 2 इंजन रखे मोटर लाइयो टुल्लू पंप लाइयो
1: हां जी
0: ऊपरे ते पुल भी बनाई ही जाई काले पर पिछली वाली फ्लड जल्ला फ्लड देना खुल डाई थी सारी।
1: अच्छा अच्छा जी जल तो हां ये शुरू किता है ना मशरूम दा काम?
0: जी जी जी
1: इस ते पहले तो हां कोठी सिखलाई ले ही?
0: हां जी हां मैं ट्रेनिंग की थी 2 बारी मतलब 16 की थी ट्रेनिंग जी।
1: हां जी
0: मतलब मशरूम प्लांट बारी जेड़ा की देना प्लांट है बड़ा।
1: हां जी
0: एक बारी पालनपुर भी लीयो मैं मतलब।
1: अच्छा
0: 6 बारी ट्रेनिंग की थी मैं।
1: अच्छा इस ताई जी कोई अनुदान वगैरह भी मिलला विभाग ते?
0: 8 लाख रुपया सब्सिडी सांजे देंदा विभाग जी।
1: अच्छा
0: ये हम मतलब 1,88,000 रुपया औसत बैद मतलब इदा टोटल अमाउंट था दबारी मतलब प्लांट
1: हाँ जी
0: अच्छा तो इस बीच ये ऐसा दबारी 8 लाख रुपया गवर्नमेंट का होंगे शायद 3 साल के बाद पाते हल दिता नहीं है।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: अच्छा इसके बाद तुम्हारा तो उत्पादन तैयार हो गया
0: जी जी
1: फिर ये कुतू बेचना कुतू हो जाएगी?
0: इंया होंगे कि दबारी के भी तो मंडी वगैरह ले जाते
1: हाँ।
0: मैं मंडी नहीं लेता।
1: अच्छा
0: मैं करता कि दबारी मैं सुबह राती तोड़ने मतलब राती तोड़ साफ कर रखने भ्यागा तड़के मतलब पैकिंग करने के तोली लेने के मैं दुकाना दुकाना बेची लगा जो नहीं बिकन
1: हाँ।
0: दुकाना दुकाना जो फालतू जल हो जाते तो मैं मोटरसाइकिल पर चक्कर भी लगा इन्हें मैं लोगों से बेची लगा।
1: अच्छा नजदीक कौन बाजार पाँगा तो हाँ जो
0: नजदीक गगल वगैरह ही।
1: अच्छा बिकी जाता भी है ना?
0: हाँ जी बिकी जाता दुकाना दुकाना वाले दे दें
1: हाँ जी
0: बाकी फालतू ज्यादा हो जाता तो हम ग्रां भी चक्कर ला दें मोटरसाइकिल।
1: इसके बाद गल करते थे तो हाँ शुरू जिक्र किया कि मछली पालन का भी जोड़ा था तो हाँ काम करते हैं
0: जी जी
1: ता जड़ा ये तालाब मैं दिखा करता है
0: हाँ जी
1: ये कितने बाई कितने तालाब है
0: ये जी मतलब टोटली 5,000 स्क्वायर मीटर दे टैंक बनाए ही मैं।
1: अच्छा
0: मतलब गवर्नमेंट दे थ्रू बनाए
1: हाँ।
0: 1.5 लाख रुपया इस बीच गवर्नमेंट दी सब्सिडी भी मिली ही नहीं जी मतलब मेरे तो अपना खर्चा कम से कम 7-8 लाख रुपया आई है हरी पैर
1: हाँ जी
0: तदों तो लेके दीवारी मतलब ये चले
1: हाँ
0: एक बारी फ्लड पे भी थला एक बड़ा टैंक जे इसते भी बड़ा टैंक था सर मतलब दरिया साफ हो गया।
1: अच्छा। नहीं तो ये यानी कि कच्चा है आखे वक्त की दीवारा कच्चियां दी दियां ना
0: दीवारा कच्चियां रखना इरी वास्ती पौंदी
1: हां जी
0: कि मछली जे है खुद फीड तैयार कर लंदी कुछ।
1: अच्छा।
0: कच्चा होता
1: अच्छा।
0: कच्चे पक्का होता दोबारा फीड टोटली फीड ही पाना पौंदी ते
1: हां जी तो इस टाइम तालाब च मछलियां है निश्चय
0: इस तालाब च हां जी इस च भी हां थल्ले वाले के थल्ले बनाया तालाब।
1: अच्छा
0: ये दो तालाब ठीक ने बाकी त्रीए तालाब रुई गया।
1: अच्छा दरिया ही होना ना खड्डा ना
0: दरिया जदों फ्लड पिया हद बाई 2009 मतलब 21 च ना
1: हां जी हां जी
0: हां 21 की 22 च
1: तदा बीच ते मछलियां भी रुड़ी हियां होनियां
0: मछलियां मेरी कम से कम 250 क्विंटल रुड़ी गई सी।
1: अच्छा
0: इस जी भी रेता पई यह मछली इस दी भी तलाई भी चली गई
1: हां चलो पानी उछड़ी ही होना ता मछलियां ता निकल ही जाना है ना
0: रेता पर हुई है रेता कम से कम पानी ते भी 3 फुट आई दा।
1: अच्छा तलाई जेड़ा पानी है ये जमीन दा निकलया की दरिया दा?
0: ये सब कुडान पानी है।
1: अच्छा
0: इस तलाई ची निकले ताई में मछली टैंक बनाए।
1: अच्छा
0: नीचे भी मतलब टैंक मतलब जमीन च ही निकलिया ये भी जमीन च निकलिया
1: हाँ जी
0: नीचे बनाया हाँ उस बीच भी जमीन च निकलिया।
1: अच्छा
0: सारे पानी को डानी था सारा।
1: अच्छा तो बीज साले साल पांदे की एक बारी पाया टैंक की सही है
0: एक बारी पाई की भी दबारी मतलब चले जाता फिर साले साल दबारी मतलब इस तरीके ना होंगे कि दबारी बीज तैयार होंगे फिर इस बीच सैटिंग करना पौंदी इहदी कि जियां कि दबारी समय के मुताबिक जलो सीजन आई जाना गर्मी का अप्रैल महीने
1: हाँ जी
0: तह नर मादा अलग अलग करी दी मतलब।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो इन्हों की पहचान कि करनी
0: पहचान इं करते हाँ कि मछली लैनी इसके पिछे तो दबारी हाँ इसी कहीं प्रेस कर दे जिस खून निकला इस बिच ये मादा कहीं जिस किस मतलब सफेद पान बीरे टाइप निकलना
1: हाँ
0: सै हाँ नर सै अलग कर देने नहीं तो दबारी मतलब नर मादा कट्ठे हो तो बच्चे खाई जाते भी दूजे।
1: अच्छा तो इस ताइए तो बड़ी जड़ी सह मेहनत करना पौंदी
0: नहीं जाले सेट करना
1: पौंदा। अच्छा कि तालाब खाली करना पौंदा
0: ना तालाब नहीं खाली करना पौंदा
1: थोड़ा पानी घटाना पौंदा होना ना
0: घटाना नहीं साइड जाले

0: आ निकाल देगी, रोज ही निकाल दे, चलो मांग आई है तभी निकाल इन दे।
1: इन नहीं निकाल दे दीवारी, मतलब हाँ ज्यादा कोशिश कर दे कि दीवारी मतलब जिन्हें भी मतलब डैम बंद हो कुछ टाइम निकालनी है तो सारा रेट ये है ठीक मिली जाता।
0: अच्छा बरसाती
1: हाँ, बरसाती
0: हाँ जी मतलब
1: रेट ठीक मिली जाता
0: हाँ जी,
1: कने बिकी जाती है।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ जी।
0: अच्छा तो कुछ पता है कि कौन किस्म की मछली है तो हाँ भाई टैंक चे?
1: हाँ मतलब जेड़े पहले पाई थे दीवारी कॉक फिश पाई।
0: अच्छा
1: कने और भी के भी माँ शेर भी पाई दे बाकी और भी पाई दे रंगीन भी पाई दे।
0: इन्हें जी या कुछ दाना भी पाते?
1: दाना तो ये कच्चे तलाए से आहा तो नहीं पाए अज तक जी, मतलब सच्ची गल है क्लियर। इं जो पहले गोबर वगैरह जो पाया कने चोकर वगैरह जो पहली बारी है पाई हुआ
0: हाँ जी
1: उस टाइम ही है पाई है इसके बाद कच्चे तलाए से अपने आप ही मतलब फिर तैयार कर लेंगे मतलब।
0: अच्छा अच्छा जी हाँ कितना टाइम हुआ तो हाँ जो इसे तालाब बनाए हो?
1: इन्हें हुई है चौथा साल चले।
0: चौथा साल कुछ ऐसा दसा कि तो हाँ जल मछियां पकड़ियां था कितने जिन्हें की बड़ी से बड़ी मच्छी कितनी इस
1: पाँच पाँच छः छः किलो दी दी।
0: अच्छा 6 किलो तक पकड़ी तो हाँ ना देखा कहीं चलो इतनी बड़ी मछली तो हाँ पकड़ी होनी ना तो हाँ दे चेहरे पर भी जड़ी सा रौनक आई होनी की नहीं है ना। इससे सौगी चीज तो हाँ दसिया कि बगीचा भी तो हाँ लगाया क्या क्या लगाए बगीचे?
1: बगीचा मेरे अखरोट चले जी।
0: अच्छा
1: जापानी फल भी चले हो?
0: हाँ जी
1: नींबू चले हो, पलम चले हो, आड़ू चले हो, 50-60 अमरूद भी हैं। उसके बाद मैं 243 अनार थे।
0: अच्छा
1: पर अनार अनार मैं उखाड़ी ते किए कि अनार की संभाल सारे ते नहीं हुई। मैं सही ढंग ने किए कि किसी दिवारी फुल पाने बाद कने स्प्रे जे है हर 15 दिन ते बाद स्प्रे करना ही पौंदा।
0: हाँ जी
1: जे स्प्रे ना करिए ते बरखा पेगी तो दुमे दिन फिर स्प्रे करना पौंदा। जे ना करिए ते कीड़ी जे है तिसी डंगी जांदी ना मतलब अंदर अनार जे खराब हो जांदा।
0: हाँ अच्छा तकरीबन तो हाँ लगभग सारे फलां दे पौधे जेड़े से लगाए हुए ने?
1: हाँ काफी ज्यादा लगाई गई।
0: अच्छा
1: दूसरी गल है कि दिवाली मतलब इतनी मैं ये प्लांट जो ऑर्गेनिक रखे मैं इस केमिकल वगैरह बिल्कुल नहीं पाता।
0: अच्छा
1: घा वगैरह जो है मैं लेडीज लगा इतनी दिवाली तिने घा कटाई लेंदा जिन्हें उन्हें सब्जी लगाई तो घा जो है मैं हाथों कढ़ना।
0: अच्छा
1: ये नहीं करते कि दिवाली मतलब दवाई पाई थी पहले छली पाई छली घा हाँ हाथों ही टालना।
0: अच्छा
1: मतलब ये नहीं करना कि दिवाली हाँ छलिए दवाई पाई थी फिर गुडाई नहीं होनी फैलाना नहीं मतलब हाँ छुट ले गई जिस टाइम ही मैं पलाव लिया है।
0: हाँ जी
1: उस टाइम के ले की गाल दब्बड़ था।
0: हाँ जी
1: खड किस्म ले थी।
0: हाँ जी
1: फिर मैं जेसीबी ने काफी कम से कम कुछ 40-42 लाख रुपया खत्म की तेरी बार।
0: अच्छा
1: मिली तो सस्ता गया पर
0: हाँ जी
1: जिस टाइम लिया था मैं कोई 28-30 हजार रुपया परक नाल ले लिया है।
0: हाँ जी
1: कने उसके बाद दुबारी फिर मैं यही पर मतलब साइया के नाल ही पर मतलब ज्यादा नहीं था दुबारी कोई 42-43 लाख रुपया और खर्चिया
0: बराबर करनी है
1: पहले बराबर की खड्डे पारे तिस्ते जो टोला है पत्थर इतने मैं पत्थर बेच दिता मिस्त्री लगाए बनाने वाले पत्थर बनाने वाले इन्होंने खाडू बनाए की बेचते रहे।
0: हाँ जी
1: तहन 8-10 साल खाडू भी बनाए की बेचते रहे पत्थर भी बेचते रहे फिर जमीन प्लेन करी थी हूं तो नजर मारा जमीन ये बनी क्या कागजा बिच भी बन रही बगीचा बनी
0: बिल्कुल। हाँ जी तो जी हम सब्जी वहां चलते हैं।
1: हाँ जी
0: क्या क्या लगाया इस टाइम सब्जी?
1: इस टाइम मैं बैंगन लगाए जी।
0: हाँ जी
1: टमाटर लगाए हो टमाटर कन्ने दुबारी मिर्च है उसके बाद करेला था इस पहा लगाया।
0: अच्छा
1: खीरा लगाया डानियां लगाइया बाकी मैं एक ऑर्गेनिक तलड़ी जरा मैं निकालता दबारी पूरी है बारिश करने दबारी ये लगाई अगे देख नजर मारने तो हाँ ये तलड़ी निकली जाती नहीं जल 5-6-7-7-8-8 क्विंटल निकली जी।
0: अच्छा
1: साड़ी 150 रुपया पर किलो बिकी जाती।
0: अच्छा अच्छा
1: ये भी हाँ ऑर्गेनिक ये लौंकुएं बेली लगाइया ये भी ऑलरेडी ऑर्गेनिक होंगी ये इसी यूरिया इं भी सड़ी है तो यूरिया जो है तुआ करी जाता इसी सुखी जाता मसकाई जाता बेली जेड़ा भी कम करा ऑर्गेनिक ही करा दे बारी मतलब हाँ इसी केमिकल वगैरह
0: बिल्कुल
1: वगैरह कभी नहीं करा।
0: राम सिंह जी तो हाँ जो कुदू ते प्रेरणा मिली कि ऑर्गेनिक करना प्राकृतिक तरीके करना जेड़ा सा सब्जी तैयार की जाए
1: गल के हाँ महा विश्वविद्यालय दबारी पालमपुर भी सांजो सदे भी रहते
0: हाँ।
1: अहम भी जाते रहते के बी के आले सांजो ले जाते।
0: हाँ जी
1: के बड़ी हर जगह दबारी जायका आले नींदे रहे सांजो।
0: हाँ जी
1: मतलब कई जगह दबारी जल कोई मिनिस्टर का प्रोग्राम हो तभी नींदे रहे।
0: हाँ जी
1: के बड़ी दबारी मतलब जिन्हें की और कोई इतू साढ़े आल ज्यादा नहीं तो मैं साले दे 2-3 प्रोग्राम दबारी एग्रीकल्चर आले कदी जायका आले कदी एग्रीकल्चर आते रहते इतू अफगानिस्तान की टीम भी एक बड़ी मेरे आले इतू आई चुकी।
0: अच्छा
1: चीफ सैकटरी भी आई हो दबारी मतलब जेड़े की सारे दबारी मतलब डिपार्टमेंटा दे होंगे दबारी शिमला बैठे हो एज ए सीएम ही बोलते थे नहीं।
0: हाँ जी
1: सब इतू आई की बैठी ही दबारी मतलब
0: बिल्कुल देखा बड़ी खुशी की गल है देखा चलो अहां दे किसान इतने बड़े स्तर पर चलो खेती करते हैं ना। अच्छा तो चलो तो हाँ जी सब्जी तो हाँ बिल्कुल प्राकृतिक तरीके तैयार करनी है
1: जी जी जी
0: जी जलू ये बेचनी है तो उसी रेट

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत के नए कार्यक्रम खेतीबाड़ी तो संपन्न होता जाने से पहले दस दी के कार्यक्रम बीच तकनीकी सहयोग रहा विपिन कुमार के नए कार्यक्रम प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह कने उन्होंने अपने किसान साथी जोधा राम कने
1: कने के सोचो दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM एंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 और 30 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें अधिकार जाने,
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्य सरकार की आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा, अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण को मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाएगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ने संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक किया पेश, सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर कसेगा शिकंजा। सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल की राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की चर्चा, और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, कल से और रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा की है। आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की बजाय 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा घर के बर्तन, फर्नीचर और बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रभावित परिवारों को कुल 8.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी।
1: मैंने मकान बनाने के लिए 7.5 लाख रुपया, घर के बर्तन, पलंग, बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा 8.5 लाख रुपया दिया। जब से हमारी सरकार आई है 2023-24 में 23,000 घर या तो पूर्णतया नष्ट हो गए थे या आंशिक रूप से नष्ट हुए थे। तब से मैंने 7 लाख रुपया रखा था, तो 2 साल में महंगाई भी बढ़ी है, तो इसलिए 50,000 रुपया और बढ़ाया। हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़ी है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार व पेपर लीक मामले पर श्वेत पत्र लाएगी और उसे जनता के सामने रखा जाएगा।
1: भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक श्वेत पत्र लाने जा रहे हैं, एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, जो 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के समय भ्रष्टाचार हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, वो सब हम जनता की अदालत में रखने जा रहे हैं।
0: इस बीच मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवा में आयोजित बाल मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवा में मॉडल पुलिस स्टेशन व पुलिस आवास, ओल्ड एज होम और ऑडिटोरियम की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर स्थानीय विधायक व राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल लाकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस संशोधन में पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने और 3 महीने के अंदर ट्रायल समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके विपरीत हिमाचल में पेपर लीक मामलों में गंभीर आरोप सामने आने और जांच की संस्तुति होने के बावजूद सुक्खू सरकार ने दोषी अधिकारियों को पदोन्नति देकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी हितैषी होने का दावा करने वाली सुक्खू सरकार के समय में प्रदेश भर में कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर संघर्षरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन के कथेड़ में निर्माणाधीन अत्याधुनिक बहुदेशीय अस्पताल में स्थापित होने वाले आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने अस्पताल में स्थापित की जाने वाली 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित करने के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बाद में उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और जनसमस्याएं भी सुनी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज भटियात विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने भारी वर्षा के कारण बाधित सड़क मार्गों की तुरंत बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली की सराहना की। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोहो पंचायत का दौरा कर हाल ही में आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करने का विश्वास दिलाया। विक्रमादित्य सिंह ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने और राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने बोहो की सड़क के लिए विभाग के माध्यम से 1 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। विक्रमादित्य सिंह ने चंबी खड्ड पर क्षतिग्रस्त पुल की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से पुनर्निर्माण की प्रगति व प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी ली। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने नई दिल्ली संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की। हर्ष महाजन ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न हालात, वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में आई रुकावट और आपदा प्रबंधन की स्थिति से केंद्रीय गृह मंत्री को विस्तार से अवगत कराया। हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से वित्तीय अनुशासन पूरी तरह समाप्त हो गया है और सरकार ने बिना किसी दूरदृष्टि के प्रदेश को भारी कर्ज के बोझ तले धकेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, लेकिन राज्य सरकार उस राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से करने में असफल रही। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर बाईपास के समीप प्राचीन बावड़ी व टियाला के सौंदर्यीकरण और नाले की चैनलाइजेशन का लोकार्पण किया। बाद में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 12 लाख रुपए की लागत से करवाए गए इन कार्यों से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि आने वाले समय में बाईपास के आसपास एक सुंदर पार्क विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर को नगर निगम का दर्जा देने के साथ साथ कई बड़ी परियोजनाएं मंजूर की हैं। इस दौरान सुनील शर्मा बिट्टू ने लोगों को विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे भी वितरित किए। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय रहने से राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश इलाकों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। वर्षा से प्रदेश में 108 सड़क मार्ग और 38 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि इन सुविधाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के मुताबिक कल 28 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। उन्होंने बताया कि आज 2 जिलों सोलन व सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि कल 28 जुलाई को बिलासपुर और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: आज 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय रहेगा और इसी दौरान लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ये जो रेनफॉल एक्टिविटी देखी कल 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, इसमें इंटेंसिटी वाइज काफी सक्रिय रहेगा और इसके चलते हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हैवी रेनफॉल के साथ वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। 28 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है और 29 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है और ये वेदर एक्टिविटी देखिए 30 और 31 जुलाई काफी सक्रिय रहेगा।
0: मौसम विभाग ने भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। हिमाचल के युवाओं और उद्योगों को स्वदेशी तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से शिमला सचिवालय में आत्मनिर्भर यात्रा क्षेत्रीय आउटरीच सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स, उद्योगों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन का शुभारंभ पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंगला ने किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य एमएसएमई और अनुसंधान संस्थानों को टीडीबी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, हिमाचल के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों से जोड़ना और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण से औद्योगिक विकास को गति देना है।
3: आत्मनिर्भर बनना हमको है, तो चाहे रिसर्च हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारी जो वर्कशॉप है उसी दिशा में एक कदम, रिसर्च के मामले में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते, तो इसलिए हम इसका आज रोडमैप भी बनाएंगे।
0: केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में बीज आलू उत्पादन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय दक्षता विकास कार्यक्रम आज शुरू हुआ। 29 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर में स्थित संस्थान के ब्रीडर सीड उत्पादन केंद्रों के वैज्ञानिक व तकनीकी कर्मचारी भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा, अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण को मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाएगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ने संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक किया पेश, सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर कसेगा शिकंजा। सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल की राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की चर्चा, और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, कल से और रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
5: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
6: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना बसंतपुर सुनी जिला शिमला के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार से है, उक्त पदों हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र है। अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र की फीडर एरिया के निवासी हो व उसका परिवार संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज परिवारों की सूची में शामिल हो तथा परिवार में उसका नाम भी दर्ज हो। प्रार्थी का नाम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम तिथि के दिन 18 से 35 वर्ष से अधिक न हो। अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसका आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यदि कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन करती है तो उसके परिवार की वार्षिक आय में गणना में उसे सहायिका के रूप में मिलने वाले मानदेय की गणना से छूट मिलेगी। आवेदक सादे कागज पर सभी प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 4/8/2026 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी बसंतपुर स्थित सुनी कार्यालय में अपना आवेदन जमा करा सकती है। इन पदों के लिए कार्यालय में सुबह 11 बजे उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता में 13 अगस्त 2026 को साक्षात्कार लिए जाएंगे। रोजगार समाचार समाप्त हुए।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा रिले की जाएगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्य

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा

0: कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। चार बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आएं और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुख सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे, जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ...103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम। सब

कार्यक्रम सबरस सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं हरभजन मान के गाए इस पंजाबी गीत के साथ।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं इला अरुण और लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज 8:09 रिले किए जाएंगे।
1: घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन।

0: ऑपरेशन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है।

0: यूकेपीएनपी ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक CRPF कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both houses of parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over knee tissue. Uttar Pradesh government sets up 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador, lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Orissa. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver medal in women's 53 kilogram category. And now the news in detail. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
3: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House.
4: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. You have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt the debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress Party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
3: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in Parliament. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: The Uttar Pradesh government today informed the Supreme Court that it has set up a 4-member Special Investigation Team or SIT headed by Inspector General of Police for the Lucknow Range, Kiran S., to probe the alleged embezzlement of the donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police and an additional SP. The top court asked the state government to include a forensic auditor as the 5th member of the SIT, which will submit its first status report within 2 weeks. The bench was hearing a batch of petitions seeking a CBI investigation into the allegations of embezzlement of donations and audit of the Temple Trust finances. Meanwhile, a special court in Uttar Pradesh today extended the judicial custody of all 8 accused in the alleged Ram Temple donation theft case by 14 days. The Bombay High Court today granted permission to Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari to file a civil suit against Meta Platforms, X-Corp, Google LLC and other unidentified persons over the alleged circulation of defamatory deepfake and AI-generated content online. Mr. Gadkari has alleged that the AI-generated post falsely linked him and his family to financial gains from the ethanol blended fuel program, describing the claims as malicious and defamatory. Union Minister of Panchayati Raj, Rajiv Ranjan Singh, today launched the Atmanirbhar Panchayat program and the Samarth Panchayat portal in New Delhi. Mr. Singh said that these initiatives mark a significant step towards building financially empowered, technologically enabled and self-reliant panchayats in line with the vision of Viksit Bharat 2047. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador, Dr. Alexander Polishuk, following the attack on commercial vessel MV Amorafi, in which an international was killed. The ministry conveyed its serious concern over the incident and condemned in strongest terms such attacks on commercial shipping and highlighted their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation, and international commerce. The External Affairs Ministry said in a statement that the ambassador was requested to convey to the Ukrainian authorities India's strong concerns over the targeting of commercial vessels. The ministry reiterated that such actions that endanger the lives of innocent civilian seafarers are unacceptable and must be avoided. Saudi Arabia today said that it has shot down drones fired by Iran-backed militias in Iraq. The statement posted on social media today by the Saudi Defense Ministry came as the United States and Iran paused their attacks over the weekend after weeks of escalation. The statement said the drones targeted petroleum facilities in eastern Saudi Arabia and the capital Riyadh. Thousands of people gathered in Rawalkot in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, today to march towards Muzaffarabad after talks between the Joint Awami Action Committee, JAAC, and the Pakistani authorities failed to address the demands put forward by the committee. The march comes amid a 52-day-long protest movement, with demonstrators continuing to press for the release of detainees, withdrawal of cases registered against protesters, and acceptance of their wider demands. The developments coincided with the first phase of Legislative Assembly polling in 13 constituencies of the Mirpur division. Meanwhile, the Legislative Assembly elections in POJK have been postponed until the 10th of next month in the two districts of Sudhnoti and Rawalkot due to the ongoing protest sit-in organized by the Public Action Committee. Foreign Secretary Vikram Misri began his China visit today with a meeting with CPC International Department Vice Minister Song Haiya. They discussed ways to advance bilateral ties through leader-level guidance, priority issues, and greater political, people-to-people, academic, and think-tank exchanges. Back home in Odisha, the annual Niladri Bijay, the concluding ritual of the world-famous Rath Yatra, is being observed at the Sri Jagannath Temple in Puri today. The sacred ceremony marks the ceremonial return of Lord Jagannath, Lord Balbhadra, and Devi Subhadra to the Ratna Singhasan inside the Sanctum Sanctorum. Our correspondent reports millions of devotees have gathered in Puri to witness the divine homecoming.

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर की जब बात होती है तो जिन महान संगीतकारों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है उनमें संगीतकार रोशन का नाम प्रमुख है। मधुर धुनों, शास्त्रीय संगीत की गहराई और दिल को छू लेने वाली रचनाओं के कारण उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। रोशन का पूरा नाम रोशनलाल नागरथ था। उनका जन्म 14 जुलाई 1917 को तत्कालीन पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। बचपन में ही संगीत के प्रति उनका विशेष लगाव था। उन्होंने प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित S.N. रतनजंकर से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो में भी कार्य किया। यहीं से उनके संगीत सफर को नई दिशा मिली।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
0: अंतराल के बाद शामिल कर रहे हैं ताजमहल फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी का गाया हुआ।

फिल्मी दुनिया में रोशन ने 1940 के दशक के अंत में कदम रखा। शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रतिभा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी धुनों ने में भारतीय शास्त्रीय संगीत, सूफी रंग और मधुरता का अनूठा संगम देखने को मिलता है।

रोशन है बरसात की रात, ताजमहल दिल ही तो है ममता, चित्रलेखा, भीगी रात और बहु बेगम जैसे अनेक सफल फिल्मों में यादगार संगीत दिया। उनके संगीत से सजे गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने समय में थे।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र राम का गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं बंसी भारद्वाज, लेख राम पाल और मदन गौतम की मिलीजुली आवाजों में ये लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे मरीना जम्बाल और सुप्रिया के मिली जुली आवाजों में ये लोकगीत। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति वर्षा कटोच की आवाज में।

धोबी की धोबन बहुत खूबसूरत थी। धोबी ने धोबन से कहा कि वो घाट पर पानी लाने न जाए, क्योंकि वहां पर राजा शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। धोबी के लाख मना करने पर भी धोबन नहीं मानती और घाट पर पानी लेने चली जाती है।

0: ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति वर्षा कटोच की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं, इंतज़ार ख़त्म हुआ, कार्यक्रम है पसंद आपके गीत हमारे। जी हाँ, सजीव फोन इन कार्यक्रम है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे में। जी हाँ, खूबसूरत सा ये
1: प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
0: कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया के साथ। कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लगता है जब आप सब श्रोता हम संग सजीव जुड़ते हैं, बातें भी होती हैं और साथ ही आपके बारे में हम जानते हैं और आपका मनोरंजन करवाते हैं खूबसूरत से गीतों के साथ, जिन्हें आप चुनते हैं हमारे द्वारा चयनित की गई फिल्मों से। तो आज भी हमारे पास कई फिल्में हैं, लेकिन फ़ोन नंबर वही है जिसे आपको मिलाना है और बात हमसे करनी है। नंबर है 01892224391। जी हाँ, 01892224391।

0: वन। और बता देते हैं जल्दी से कि किन किन फिल्मों के गीत आज आप सुन सकते हैं। फिल्में हैं अमर प्रेम, मेरा साया, स्वामी, साहिवान, दोस्तों, दोस्ती, एक फूल दो माली, चित चोर, ब्रह्मचारी, घर, गूंज उठी शहनाई, होटल, जीने की राह, काजल, शगुन, पराया धन। जी हाँ, एक बार हम फिर से बता देते हैं, फिल्में हैं अमर प्रेम, मेरा साया, स्वामी, साहिबान, दोस्ती, एक फूल दो माली, चित चोर, ब्रह्मचारी, घर, गूंज उठी शहनाई, होटल, जीने की राह, काजल, शगुन और पराया धन। और पहले कॉलर हम संग आ जुड़े हैं, देखते हैं कौन और कहां से बोल रहे हैं। हेलो।
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी योगेश जी, आप हैं हमारे पहले कॉलर, बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर से श्रोता हम संग जुड़ते हैं, बातें करते हैं और अपनी पसंद के गीत भी सुनते हैं। जल्दी से बताइए कौन सी फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे।
1: फिल्म मेरा साया से सुनवा देंगे।
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कोई सा भी गीत
0: जी, अब करिए बात आप, क्योंकि नेटवर्क का पता नहीं ना होता, बरसात का मौसम है, कब जैसे कॉल कट जाए, तो फिल्मों के नाम आप पहले बता दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
1: जी, अभी तो बारिश हमारे यहाँ अभी जारी है।
0: जी अभी भी हो रही है इस टाइम?
1: हाँ जी
0: जी, तो चलिए भेज रहे हैं हम, बता दीजिए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे, मतलब मेरा साया में कौन सा गीत सुनेंगे, कोई खास?
1: नहीं, ऐसा कोई नहीं है, जो गीत सबसे ज्यादा अच्छे होंगे उसी को सुना देंगे।
0: चलिए फिर हम ये गीत आपके लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: शुक्रिया जी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो रेणु जी, नमस्कार
0: जी। कार्यक्रम है आपके पसंदीदा हमारे, नमस्कार। और कैसे हैं राणा जी?
1: बहुत बढ़िया है जी, बहुत भगवान की बड़ी कृपा है
0: जी। जी बताइए।
1: गाने के बोल सुना देता हूँ, उसके बाद फिर बातें करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, ये गाना है एक फूल दो माली फिल्म का।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सा गीत आपने चुना है, तो सुनवाएंगे। और बताइए, कुछ बरसात का मौसम है, कैसा है आजकल?
1: बरसात का मौसम तो है, लेकिन कल से बारिश बंद है। कल से इतनी गर्मी है, धूप इतनी तेज है ना
0: जी, जी
1: बाहर निकलना भी मुश्किल दुभर हो रहा है।
0: ओ, अच्छा।
1: और आज भी इतनी तेज गर्मी थी कि पूछो मत, इतना पसीना आता है, चिपचिपाहट होती है शरीर में
0: जी जी,
1: और दुर्गंध आती है शरीर से
0: जी। तो यहाँ तो बारिश हो रही है, जरूर भेजेंगे हम आपके शहर में भी कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया जी।

0: दुनिया में प्राणी क्या।
1: हेलो
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: जय बजरंग रेडियो श्रोता तंग बस ट्रेन मंडा विले से लक्ष्मण देखो चाय वाले बात कर रहे। दीदी चाय पी लो।
1: बिल्कुल जरूरत है अभी चाय की। नाम क्या बताया आपने अपना?
2: लक्ष्मण रेकवार, बंडा वैली, जिला सागर, मध्य प्रदेश,
1: एमपी से। अच्छा, मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे?
2: आज अपने हमें सुनना था मेरा साया कमरा, वो तो कट गया है, दूसरा कोई भी सुनवा देना सर।
1: नहीं बताइए आप, अमर प्रेम स्वामी साहिबान जी।
2: अमर प्रेम का सुनवा दो।
1: कौन सा गीत सुनेंगे?
2: इसका कोई भी सुनवा देना
1: जी। और कुछ बताएंगे आपके मध्य प्रदेश की कोई बात, कैसा मौसम है?
2: अभी मौसम तो बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल बरसात नहीं हो रही है।
1: जी जी,
2: बरसात हो जाएगी तो ठंडक हो जाएगी, दो चार दिन लगातार तो पानी गिरेगा जब ठंडक आएगी।
1: जी बिल्कुल।
2: और देखने लायक तो मुख्य स्थान है मध्य प्रदेश में।
1: जी जी
2: हाँ,
1: चलिए कार्यक्रम में आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए।
2: ठीक है दीदी, नमस्कार।
1: शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: आपके पसंद गीत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: सुरेश गगनेजा, जलालाबाद, वेस्ट पंजाब से जी। सुरेश
0: जी कौन?
1: गगनेजा।
0: सुरेश गगनेजा जी, बहुत अच्छा लगता है जब श्रोता हम संग जुड़ते हैं। बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
1: मुझे मूवी बता देंगे?
0: जी, स्वामी साहिबान, दोस्ती, चित चोर, ब्रह्मचारी, घर, गूंज उठी शहनाई, शगुन प्रायाधन, जीने की राह, काजल, होटल।
1: फिल्में तो सभी बहुत अच्छी हैं, एक से बढ़कर एक।
0: चलिए जी, बताइए
1: लेकिन
0: कौन स...
1: मैं दोस्ती फिल्म का गीत सुना दें जी।
0: जी कौन सा
1: जाने
0: गीत?
1: वालों जरा,
0: जी
1: अगर ये गीत सुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे ये गीत। और बताइए कुछ अपने बारे में।
1: जी, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ जी।
0: जी बहुत अच्छी बात है। कौन सा बताया आपने? जाने वालों।
1: जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे।
0: जी बहुत ही अच्छा सा गाना आपने, पसंद आपकी बहुत अच्छी है। चलिए सुनिए, कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया।
1: जी
0: सुरेश जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से सजीव फोन इन कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे। यदि आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391 01892224391। उम्मीद है कुछ नए श्रोता भी हम संग जरूर जुड़ेंगे।

0: स्वागत है आपका आज के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं डिंपल कुमार बोला मैम, सरा से।
0: जी डिंपल जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम जी, ठीक है
0: जी। आप भी हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, मैं लेट किया फोन ऑन तो मैंने
0: जी
1: मंडे है वहाँ।
0: जी जी बहुत अच्छा किया आपने, सुनते रहा करो। और जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी तो होता रहता है ना जी। डिंपल जी बताइए, कौन से मूवी का गीत सुनेंगे आज? जी फिल्में हैं स्वामी, साहिबान, चितचोर, ब्रह्मचारी, घर, गूंज उठी शहनाई। जी घर का, घर फिल्म से आप गीत सुनेंगे, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे? चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनिए अपनी पसंद का गीत कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया।

0: जी हाँ, घर फिल्म से ये गीत था और इस गीत को गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और बोल थे गुलजार के। बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार जी,
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। आज फिल्में कौन कौन सी हैं
0: जी? सतीश जी, फिल्में हमारे पास अभी भी हैं।

0: जल प्रायाधन होटल।
1: हाँ तो ब्रह्मचारी का सुनवा दीजिए, उसमें
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गाना कोई सा प्ले कर दीजिए, अच्छा सा हो।
0: नहीं फिर भी आप बताइए ना कौन सा सुनेंगे।
1: मुझे फिल्म में गाना इस पता नहीं, इसमें पुरानी फिल्म है इसलिए मुझे जाने ध्यान नहीं है, लेकिन जो आपको अच्छा गाने बोल बता सकती हो मुझे।
0: दिल के झरोखे में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे,
1: हाँ वो हमारी दिल के झरोखे में,
0: जी और बताइए कुछ।
1: और मेरे इधर बारिश हो रही है, मौसम गर्मी वाला उमस वाला है, तो बारिश हो रही है, धानों की खेती हो रही थी, धान गड़ गए हैं तो खेतों में। यूपी
0: जी
1: में यूपी इसी बात कर रहा हूँ, कानपुर से, कानपुर से जिला पड़ता है तो उस बात कर रहा हूँ कानपुर से। हाँ
0: बिल्कुल, खेती बाड़ी करते हैं आप।
1: मैं खेती बाड़ी करते
0: धान
1: हैं
0: के
1: आप
0: साथ
1: पे।
0: साथ और क्या आजकल उगाया जाता है?
1: अभी तो धान में मैडम जी मैं कहना चाहता हूँ, बारिश के मौसम में तो अभी धाने उगाए जाते हैं, धान है एक, मूंगफली वगैरह है वो भी बोई जाती है,
0: जी।
1: और हाँ तो मक्का चौमासी वाली मक्का होती तो वो भी चल रही है, और जैसे ढेंचा है और ये फसलें जो होती हैं, तो बारिश के मौसम ज़्यादा, बारिश के मौसम में ज़्यादा उसकी कोई फसलें करते हैं तो नुकसानदायक है, उसे ज़्यादातर बारिश के मौसम में धान ही होते हैं, वो सर्दी में तो फिर गेहूँ होंगे, बाजरा होगा और सरसों होगी और ये चना वगैरह ये बार टाइम होते हैं तो सारी फसल होती है, आलू वगैरह होता है, फिर गन्ना भी होता है, इतनी
0: जी
1: फसलें होती हैं, और फिर सब्जियाँ होती हैं, बैंगन है, ये जितनी सब्जियाँ होती हैं, टमाटर वमाटर तुरई उरई भिंडी इंडी ये चीज सब्जी होती है।
0: जी बाजार में भी आप लेकर जाते होंगे।
1: हाँ बाजार में क्या जैसे मंडी में ले जाते हैं सुबह सुबह, जैसे मंडी होती है तो मेरे मंडी लगती है तो मंडी में
0: जी
1: वहीं बेच देते हैं, मंडी
0: तो
1: में ले
0: कितनी
1: जाते हैं।
0: क्वांटिटी, मतलब कितनी मात्रा में निकलती हैं ये सब्जियां?
1: सब्जियाँ काम पे तो ऐसा है जैसे रेट मिल जाए 20 रुपए, जैसे 20 रुपया किलो निकल जाए कोई चीज भिंडी है, बीस
0: चलो इतनी
1: रुपया
0: मेहनत
1: पंद्रह
0: करते
1: रुपया
0: हैं तो सही
1: ऐसे।
0: रेट मिलना
1: हाँ
0: जरूरी है ना।
1: हाँ सही रेट किसान आदमी को,
0: मूल
1: तो उसका जैसे किसान आदमी मेहनत करता है उतना उतना सही
0: बिल्कुल
1: रेट सही मिल
0: बिल्कुल
1: पाता है कि नहीं
0: मेहनत की
1: जाए।
0: के। हाँ जी बिल्कुल।
1: हाँ
0: चलिए
1: तो ऐसा
0: सुनिए,
1: ही
0: आप
1: होता है।
0: अपनी पसंद का
1: और
0: गीत कार्यक्रम
1: आपके
0: में
1: आपके
0: कहिए।
1: धर्मशाला का हालचाल बताइए, कैसा
0: बहुत
1: मौसम
0: अच्छा
1: है
0: है,
1: क्या।
0: बरसात का मौसम है, अभी भी बरसात हो रही है यहाँ पे।
1: हाँ
0: जी जुड़े
1: और
0: रहिए यूं
1: पहाड़ी
0: ही।
1: पहाड़ी इलाका है तो वहाँ आपके इधर सेब सेब की खेती होगी, होती होगी, होती होगी तो।
0: जी, धर्मशाला में तो नहीं पर आसपास, मैं मतलब जैसे आप शिमला चले जाओ, कुल्लू मनाली वगैरह चले जाओ तो वहाँ पे होती है ये ना। जी
1: अच्छा
0: जी
1: अच्छा नहीं शिमला आपके धर्मशाला से कितनी दूर है, कई किलोमीटर है।
0: हाँ दूर है यहाँ से, शिमला काफ़ी दूर है यहाँ से।
1: अच्छा आपका
0: जी
1: 300 किलोमीटर होगा यहाँ से,
0: जी
1: 300 किलोमीटर होगा
0: नहीं नहीं
1: यानी।
0: नहीं जी, 150-200 किलोमीटर काफ़ी दूर है यहाँ से ना।
1: अच्छा अच्छा 150 सौ
0: जी,
1: किलोमीटर
0: चलिए कार्यक्रम
1: तो
0: में
1: आप
0: कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, यूं ही जुड़े रहिए।
1: जी धन्यवाद।
0: शुक्रिया।

कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे ये आप सुन रहे हैं अभी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी हाँ श्रोता, आप भी आप जुड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं और सुन सकते हैं। फिल्में हैं स्वामी, साहिबान, चित चोर, गूंज उठी शहनाई, होटल जीने की राह, काजल, शगुन, पराया धन। जी हाँ, ये फिल्में हैं जिनके गीत आप सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर वही है 01892224391।

कट रही है, चलिए सुनवाते हैं हम तब तक अपनी ही पसंद का ये गीत शगुन फिल्म से। उम्मीद है आपको भी ज़रूर पसंद आएगा।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम है आपके पसंद गीत हमारे। कौन और कहां से बात किससे हो रही है?
1: ये भाई साहब ने फोन लगवाया था, इनसे बात कर लो।
0: जी हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। कौन बोल रहे हैं
1: मैं माजिद बोल रहा हूँ जी,
0: जी?
1: माजिद अली।
0: जी बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
1: मैं कौन सी फिल्म का गीत सुनूंगा
0: जी
1: मैडम, आप सुना दीजिए मुझे।
0: फिल्में हैं हमारे पास, स्वामी, साहिबान, चित
1: अच्छा
0: चोर, गूल झूठ हुई, शहनाई, होटल, जीने की राह, काजल, पराया धन।
1: काजल फिल्म का गाना सुना दो। मैं वो
0: जी कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जो हैगा, मैं नाम भूल गया उसका गाने का। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: साजन नहीं, काजल। काजल फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे? पुराने वाली फिल्म है ये काजल, उस फिल्म से।
1: साजन का नहीं है आपके पास?
0: साजन फिल्म से सुनेंगे आप?
1: जी,
0: आज तो हमने साजन फिल्म नहीं रखी।
1: तो आप अपनी पसंद का सुना दीजिए।
0: काजल फिल्म से सुना रहे हैं हम आपको।
1: सुना दो मैं। ठीक
0: जी कार्यक्रम में कॉल किया, धन्यवाद।
1: है।

जी हाँ, कार्यक्रम है आपके पसंद गीत हमारे, और हमारे स्टूडियो का नंबर वही है 01892224391, 01892224391। कॉल कट जा रही है, बरसात का मौसम है, कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी है, कॉल करते रहना है। और अब जो हमारे पास फिल्में हैं स्वामी साहिबान चित चोर, गूंज उठी शहनाई, होटल जीने की राह, पराया धन। जी ये कुछ फिल्में हैं। जब तक कोई और कॉलर हम संग जुड़ते हैं, हम सुनवाते हैं आपको एक और अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका
1: जी। धन्यवाद आपका
0: जी। कोटखाई से
1: जी। कोटखाई से मैं राकेश बात कर रहा हूँ
0: जी। राकेश जी, बताइए
1: जी।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
1: आज मैंने फिल्में तो सुनी थी, अभी जो बज गई हैं तो अभी जो बज बज जो अभी है फिल्में, उनका नाम बता दो एक बार।
0: साहिबान, चित चोर, गूंज उठी शहनाई, होटल, जीने की राह, प्रायाधन,
1: प्रायाधन का सुना दो,
0: कौन सा सुनेंगे
1: इसका कोई भी गाना सुना दो।
0: जी? चलिए, इस गाने के बाद हम तुरंत शामिल करेंगे आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में कॉल किया, धन्यवाद जी।
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। कौन और कहां से बात हो रही है, किससे? जी
1: संजीव बोल रहा हूँ जी। मैं
0: कहां से?
1: ये रक्कड़ से बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: मर्द फिल्म का जी।
0: फिल्में हैं साहिबान, चितचोर, गूंज उठी शहनाई, होटल, जीने की राह।
1: जी
0: सिनाई, गूंज उठी शहनाई।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया। इसके बाद आपकी फरमाइश को हम शामिल करेंगे।
1: धन्यवाद जी।

0: जम्मू से केशव शर्मा जी।
1: जी केशव जी, आप हैं हमारे आखिरी कॉलर, बहुत अच्छा लगा जब नए श्रोता हम संग जुड़ते हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनवाए हम आपको?
0: फोटो फिल्म का गाना सुना दीजिए, प्यार करते हैं हम तुम्हें।
1: जी बिल्कुल, कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया। यूं ही जुड़े रहिए।
0: मेरी श्रीमती सुषमा रानी है, बच्ची है मेरी अंशु शर्मा है, साक्षी शर्मा है, भाई सतपाल शर्मा है, और कुछ दोस्त हैं मेरे यूपी से विजय पांडे जी हैं।
1: जी जी।
0: और डोडा से हैं पुष्कर नाथ शर्मा जी, पंछी राम शर्मा और रिंकू दीदी।
1: जी बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम में यूं ही जुड़ते रहिए, सुनते रहिए, शुक्रिया।
0: वो भी कोई रिकॉर्डिंग वाला प्रोग्राम भी जरूर रखिए, रिकॉर्डिंग वाला आप नहीं रखते हैं, वो होना चाहिए प्रोग्राम।
1: जी हम अपने अधिकारियों से गुजारिश करेंगे।
0: हाँ मैडम, जरूर जरूर कोशिश करेंगे आप भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: काफी श्रोताओं की मतलब चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए रिकॉर्डिंग वाला।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बात करेंगे।

0: तो ये थे हमारे आखिरी कॉलर जिन्होंने ये फरमाइश की थी। बहुत ही बढ़िया इनकी फरमाइश थी। आशा भोसले और मनहर उदास की मिलीजुली आवाज़ों में होटल फिल्म से ये गीत था। बहुत सारी कॉल्स हमें अभी भी आ रही हैं। हम वादा करते हैं कि अगले कार्यक्रम में आपके कॉल ज़रूर शामिल करेंगे। चलते चलते बता दें कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला विपिन कुमार से। आप अपने रेडियो दोस्त रेनू मनकोटिया को दीजिए अनुमति। रात्रि के 11 बजने को हैं अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 और राज्यसभा की कार्यवाही 5 स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन

0: वंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमरीकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House.
3: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. We have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt the debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
2: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday.